पुष्पा झुकेगा नहीं और फनेजिया रुकेगा नहीं। नॉन स्टॉप बॉलीवुड, नॉन स्टॉप स्वैग।

104.9 FM Fun Asia Radio, Fun Asia Radio, non-stop entertainment.

डालस की जनता, क्या हाल है आप सभी लोगों के? यस, दिस इज इपी दहवी इन द हाउस एंड आई होप आपने मुझे मिस तो नहीं किया ना ज्यादा, क्योंकि भाई मैंने तो आपको काफी मिस किया. आई नो थोड़ा सा लेट हो गया, 5-10 मिनट ही हुआ यार. आई मीन इट्स ओके, समटाइम्स यू गेट ट्रैफिक, राइट? तो गाइस, इट इज वेंसडे, वी आर हाफ वे थ्रू द वीक एंड यू आर लिसनिंग टू इपी द हिपी ओनली ऑन फन एशिया रेडियो 104.9 FM एंड दिस इज माई शो An evening in Dallas. So without further ado, let's get this show on the road because we've got some amazing music, lots of fun conversations, chit chat, baatein shaatein, and lots more masti. So, yep, I'll see you after the song.

गाइस, अगर आप अपना घर लेने की सोच रहे हैं, सपनों का घर बनाने की सोच रहे हैं, डैलस में मार्केट काफ़ी अच्छा है. एक्चुअली इट्स अ बायर्स मार्केट बिकॉज हाउसिंग प्राइसेस आर एक्चुअली गोइंग डाउन बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल कांट अफोर्ड हाउसेस एनी मोर एंड दे आर एक्चुअली लीविंग द मॉर्गेज हाफवे थ्रू एंड रनिंग बैक टू इंडिया और समथिंग लाइक दैट. सो इफ यू आर वन ऑफ दोज पीपल हु आर एक्चुअली स्टेइंग and thinking of investing into a property, then contact Dream Home Mortgage because since 1998 they have helped families across the country with personalized mortgage solution. Chahe aap khareed rahe hain to live in or just to refinance or just maybe like an investment property, call 972-245-5626 or visit dreamhomemortgage.com.

यार मेरे लिसनर्स में से किसी को चिनम्मा चिरगम्मा का मतलब पता है? मुझे तो नहीं पता भाई. मैं तो बड़ी मुझे गाना बड़ा पसंद है, बट आई हैव नो आइडिया व्हाट दिस सॉन्ग इज टॉकिंग अबाउट. सो इफ यू नो व्हाट चिनम्मा चिन चिरगम्मा व्हाट इट मीन्स, देन यू कैन कॉल मी एंड टेल मी एट 972-235-5555. गाइज आगे बढ़ते हुए, अगर आप एक्सीडेंट में फंस गए हैं एंड यू हैव फेस सम काइंड ऑफ एन इंजरी, देन प्लीज कॉन्टैक्ट ओमर ख्वाजा. दे आर पर्सनल इंजरी अटर्नीज. एंड या फिर आई मीन इट डजन हैव टू बी अ कार एक्सीडेंट, कैन बी अ स्लिप और फॉल इंसिडेंट वेयर यू आर नॉट एट फॉल्ट रियली. बेसिकली यू आर इन अ रेस्टोरेंट एंड यू स्लिप बिकॉज द फ्लोर इज वेट एंड देन यू नो यू कैन सू समवन. दिस इज अमेरिका राइट. सो लेट ओमर अटर्नी ओमर ख्वाजा हैंडल द केस फॉर यू एंड यू पे नथिंग अनलेस ही एक्चुअली wins. Call 469-300-5046 or visit attorneyomer.com. आप ये गाना enjoy करिए. I will see you in a bit.

0: इट्स ट्रू, हम अपनी सद्बुद्धि से बहुत सी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, बट समटाइम्स इवन द बेस्ट नीड अ लिटिल गाइडेंस. With over 400 years of family tradition, through his extensive knowledge of astrology and palm reading, Pandit Ishwar ji can help you with any difficulty in your personal or professional life, from relationship issues to negative energy removal. Call the most trusted astrologer, Pandit Ishwar ji, 945-527-0897, or visit astrologerishwar.com. It's the time to crack out.
1: And most importantly, it's time to turn up the flame. Introducing Flame Hour at Tandoori Flame, जहाँ तंदूर की स्मोकी खुशबू, सिजलिंग फ्लेवर्स और चटपटे एपेटाइजर्स मेक एन ऑर्डिनरी वीकडे फील लाइक अ डिलीशियस सेलिब्रेशन. एवरी मंडे थ्रू फ्राइडे फ्रॉम 5 to 8 PM, ऑर्डर एनी टू एंट्रीज एंड गेट वन एपेटाइजर एब्सोल्युटली फ्री. ब्रिंग योर फैमिली, फ्रेंड्स एंड योर एपेटाइट. विजिट तंदूरी फ्लेम इन गार्लैंड. टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई.
2: जिंदगी एक रंगमंच है
3: और प्रॉपर्टी ढूंढना बस इंटरवल. रियल क्लाइमैक्स वो है जब क्लोजिंग स्मूथ हो, पेपर वर्क क्लियर हो और आपके कीज हाथ में हो. दैट्स वेयर फर्स्ट यूनाइटेड टेक्सास टाइटल स्टेप्स इन. फ्रॉम टाइटल टू क्लोजिंग, एक्सपीरियंस अ स्मूथ, सिक्योर एंड सक्सेसफुल ट्रांजैक्शन. कॉल 972-897-1530 और कनेक्ट टू info@firstunitedtexastitle.com.
4: Same order again? Same pizza? Same taste? Same story? Time to upgrade your cravings, Dallas. Because Fun Pizza Kitchen just dropped a bold new Mexican-inspired menu. And trust us, this is not your regular slice. Fiesta Veggie, Pollo Loco, Sanao Cameron, different names, crazy flavors. Once you try these, your old order might just get ghosted. Fun Pizza Kitchen, new flavors, new obsession.
5: Breaking news, home loan या refinance अब और भी आसान. MyFamilyHomeLoan.com देता है transparent pricing, no hidden fees, no surprises. और हाँ, सबसे बड़ी खबर, उनका AI powered platform real time rates compare करता है ताकि आपको मिले better deals and faster approvals. 15,000 plus Google reviews, हजारों families का भरोसा. Visit MyFamilyHomeLoan.com और call 469-734-3338. 469-734-3338. MyFamilyHomeLoan.com is powered by Loan Factory, NMLS 2025289, licensed mortgage broker in Texas. All loans subject to credit approval. Equal housing lender.
6: When the unexpected becomes inevitable, the real story begins.
7: इस वन की काली शक्तियाँ, और अगर कोई रात को वन में प्रवेश करता है तो उसकी लाश भी नहीं मिलती.
8: Get ready for a brand new action packed experience full of emotion and suspense.
9: एक तरफ है वन देवी और एक तरफ है विकास.
8: The One, Force of the Forest,
10: a Hindi mythological folk thriller directed by Arunab Kumar and Deepak Kumar Mishra, sizzling the big screen for the first time together, Siddharth Malhotra and Tamanna Bhatia.
11: On 25th September in cinemas near you.

0: प्यार से लगता है। कुछ कुछ होता है तुम नहीं समझोगे,
1: बड़े बड़े विषयों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती है।
2: एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी तो मैं अपने आप की भी नहीं सुनता।

भाई अगर मैं कहूं कि फोर्ट वर्थ में बारिश हो रही है तो आप क्या कहोगे? वी आर ऑल तरसोइंग फॉर दिस थोड़ी सी चार बूंदे बारिश की, एंड आई नो इट्स रियली हॉट. दिस समर वॉज लाइक रिडिक्यूलसली लॉन्ग, और या फिर मुझे ज्यादा फील हो रहा है, आई डोंट नो. आप मुझे बताओ कि आपको नहीं लग रहा, क्योंकि नहीं तो फॉल में इस टाइम तक सितंबर में बारिश शुरू हो जाती है आई थिंक, है ना? एंड देन इट काइंड ऑफ रेन्स ऑल द वे थ्रू अक्टूबर अ लिटिल बिट हियर एंड देयर, फिर अप्रैल में बहुत बारिश होती है ना? दिस इज वॉट आई हैव नोटिस इन DFW. हाउएवर आई डोंट नो वॉट इज योर ऑब्जर्वेशन. अभी मेरे को थोड़ी देर पहले कॉल आई गुरमीत जी की, हु वॉज टेलिंग मी भाई फोर्ट वर्थ वाले एरिया में दबा के बारिश हो रही है, इतनी जोर से बारिश हो रही है कि विंडोज पे, और मतलब बूंदों की आवाज इतनी जोर से आ रही थी कि फोन में से भी आ रही थी. इट्स पोरिंग भाई इस साइड तो डैलस साइड, मकिनी साइड, नॉर्थ डैलस साइड तो बिल्कुल नहीं, कोई बारिश की बातें भी नहीं चल रही है. मिट्टी, कल थोड़ी सी बारिश हुई थी वैसे मेरे घर के आसपास, एंड आई लिव क्लोज टू लाइक एडिसन एंड स्टफ, सो आई डोंट नो. वी आर होपिंग थोड़ी सी बारिश यहाँ भी आ जाए, लेकिन गाइज हम लोग सारे मिलके मैनिफेस्ट करेंगे ना, तभी भगवान थोड़ी सी बारिश देगा. सो लेट्स ऑल प्रे कि भगवान प्लीज थोड़ी सी बारिश कर दो, थोड़ा ठंडा कर दो, DFW में बहुत गर्मी है. नहीं

भाई हमारे लिसनर्स, आप कॉल करके मुझे बता रहे कहीं तो महक आ रही है, मिट्टी की खुशबू आ रही है। बारिश होने से पहले वो मिट्टी की खुशबू नहीं आती, गीली मिट्टी की खुशबू, या फिर ऑलमोस्ट बारिश होने वाली होती है वैसे वाली खुशबू। अभी मुझे एक कॉलर की, आई जस्ट गॉट अ कॉल एंड ही वाज सेइंग ही इज ड्राइविंग फ्रॉम अर्विंग, और अर्विंग के आसपास वैसे महक आ रही है। मतलब मे बी द गॉड्स विल ब्लेस अस। तो चलो, ये उन्होंने ये रिक्वेस्ट किया, पानी थम थम गड़ा धागा ला। मुझे तो मराठी नहीं आती, लेकिन ये गाना बड़ा मजेदार है, तो लेट्स लिसन टू इट।

0: बंडा बंडा तुम लोग की तो जम्पर बगते पानी थेम थेम करते अरे पर हमें जम्पर बगे लगलो और पानी बादा बादा गले
1: पैसा

भाई बारिश तो आती रहेगी, लेकिन आप अपना ध्यान रख रहे हैं कि नहीं? और अगर नहीं रख पा रहे हैं बिकॉज यू कैन नॉट अफोर्ड हेल्थ इंश्योरेंस, देन यू नीड टू रीच आउट टू पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर बिकॉज दे हैव अ रियली अमेजिंग प्लान. इट इज ए प्लान, इट इज नॉट ए हेल्थ इंश्योरेंस. एलिजिबिलिटी रिस्ट्रिक्शंस हैं इसमें, लेकिन पर ये है बड़ा सस्ता. इट्स ओनली फॉर $85 अ मंथ, विच इंक्लूड्स प्राइमरी केयर, प्रिवेंटिव केयर, मेडिकेशन मैनेजमेंट, टेली हेल्थ एंड सो मच मोर. कॉल 4214-666-6259, 214-666-6259, और विजिट passionhealthphysicians.com. उनके इरविंग और फ्रिस्को लोकेशंस भी खुल चुके हैं एंड दे आर ओपन ऑन सैटरडेज एंड संडेज एज वेल. सो रिमेंबर, इवन इफ यू कांट अफोर्ड हेल्थ इंश्योरेंस, विच आई नो कैन बी प्रीटी एक्सपेंसिव इन अमेरिका, जस्ट रीच आउट टू पैशन हेल्थ. मे बी यू कैन गेट योर सेल्फ चेक आउट विद दिस पैशन हेल्थ डायरेक्ट.

0: And guys, we're about to go into a break in about a minute or something. तो अगर आप small business owner हैं या फिर any kind of business owner हैं and you need help with your taxes, bookkeeping, accounting, payroll and maybe it's getting too much to handle, then you need to reach out to AG Fintax because they help individuals and in businesses both. Call 469-942-9888 or visit agfintax.com today. Guys, हम अबाउट टू गो इन अ ब्रेक हम अबाउट टू गो इन अ ब्रेक ये कौन सी हिंदी इंग्लिश कोई भी ग्रामर चल रही है यहाँ पे तो बट आई विल सी यू आफ्टर 8 PM आफ्टर दीज शॉर्ट कमर्शियल्स सी यू सून बाय बाय और एक्चुअली अभी भी 10 सेकेंड है चलो लेट्स काउंट 10, 9, 8 नहीं आई एम किडिंग तो कम अराउंड एट 8 बिकॉज वी हैव आवर गिव अवे देन ओके एंड आई विल सी यू वेरी वेरी सून विद लॉट्स मोर म्यूजिक लॉट्स मोर मस्ती लॉट्स मोर फन. And let's see after these
1: This is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
2: Official tax and finance partner, AG Fintax.
1: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
2: In association with Passion Health Primary Care.
3: एक और लड्डू ले लो
4: थोड़ी और बिरयानी
3: अरे अमेरिका जाके थोड़ी मिलेगा
5: अब सिर्फ सूटकेसेस ही नहीं वेट कोलेस्ट्रॉल और शुगर भी एक्स्ट्रा बैगेज बन के साथ आ गए
6: इंडिया ट्रिप के बाद या कभी भी अपनी हेल्थ को गेस वर्क पर मत छोड़िए स्केड्यूल योर एनुअल हेल्थ चेकअप एट पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर अलॉन्ग विद ब्लड प्रेशर ब्लड शुगर कोलेस्ट्रॉल एंड वेट चेक्स दे आल्सो ऑफर डिप्रेशन एंड एंग्जायटी स्क्रीनिंग अल्कोहल हेल्थ असेसमेंट फाइब्रो स्कैन विटामिन B12 टेस्टिंग एंड मेनी अदर प्रिवेंटिव हेल्थ स्क्रीनिंग्स कॉल और टेक्स्ट 214-666-6259 पैशन
7: चीनी हुकम मेरे आका हम आज पार्टी के मूड में हैं एक ऐसी जगह बताओ जहां मेरी एंट्री ही रॉयल हो
8: मिराज लाउंज चलिए मेरे आका लग्जरी लिमोजीन राइड्स आपके इंतजार में हैं
7: मुझे ज्यादा क्राउड पसंद नहीं
8: नो प्रॉब्लम आका लग्जरी प्राइवेट स्पेस भी हाजिर है आपकी प्राइवेट पार्टी के लिए
7: और एंटरटेनमेंट
8: मूवी नाइट बेली डांसिंग नाइट्स प्रीमियम हुकर्स और अमेजिंग वाइब्स सब आपकी खिदमत में है
7: वाह जीनी ये जगह है या कोई जादू
8: जादू नहीं मिराज लाउंज एट मिकिनी रेंज पार्कवे मिरेकल्स हैपन इन मिराज
9: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं।
10: अरे सुन ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है
11: माँ रील्स पे सब लकी ही होते हैं जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं। तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो
12: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है पंडित राम तुलसी जहाँ एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है करियर हो स्टडीज शादी या फ्यूचर प्लानिंग हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट
11: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com
13: हुजूर आपको चुनना होगा हम या ये बिरयानी
8: बेगम मोहब्बत अपनी जगह लेकिन बिरिस्ता की हैदराबादी बिरयानी अपनी जगह
13: आखिर क्या है इस बिरयानी में
8: दम में नरमी मसालों में जादू और हर निवाले में नवाबी स्वाद
14: प्रेजेंटिंग बिरिस्ता हाउस बाय प्रिज्म बार एंड ग्रिल ऑथेंटिक हैदराबादी फ्लेवर्स एंड अ ट्रूली नवाबी एक्सपीरियंस नॉर्थ इंडियन फेवरेट्स डिलीशियस डेजर्ट्स एंड मेनी मोर टू एक्सप्लोर डेंटन्स फेमस बिरिस्ता हाउस इज नाउ इन फ्रिस्को 6377 Custer Road, Frisco, Texas.
15: Happy hours, Monday through Friday from 3 p.m. to 7 p.m.
14: Barista House, richness of biryani bliss.
16: अरे अरे अरे डैलस के आसमान में इतने सारे तारा नहीं बिजनेस ओनर्स के लिए तो सिर्फ एक ही तारा काफी है तारा कमर्शियल एनर्जी 2002 से टेक्सास के हजारों बिजनेसेस का ट्रस्टेड एनर्जी पार्टनर होटल्स गैस स्टेशंस वेयरहाउसेस मेडिकल फैसिलिटीज रिटेल स्टोर्स और ऑफिस बिल्डिंग्स कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग पर्सनलाइज्ड एनर्जी सॉल्यूशंस और एक्सेप्शनल कस्टमर सर्विस तारा कमर्शियल एनर्जी पावरिंग टेक्सास बिजनेसेस फॉर ओवर 2 decades कॉल 844-428-2808 और विजिट taraenergy.com टुडे तारा कमर्शियल एनर्जी जो आपके बिजनेस को रोशन रखे
17: पनीर मंचूरियन का नाम तो सुना होगा पर चिली पनीर बाओ कहानी में ट्विस्ट
18: चिकन टिक्का पुरानी मोहब्बत बट बुराडा चिकन टिक्का न्यू लव
17: एंड पिस्ताचियो लैम्प चॉप्स
18: फुल ऑन फ्लेवर का फ्यूजन
13: That's Fusion Republic Indian Kitchen and Bar. Familiar Indian flavors with a fusion twist. Already loved in Richardson, now the flavor story moves to Irving. Enjoy an everyday lunch buffet with 25 items. Chaats, tandoor, biryani, fusion favorites and plenty more to discover. Fusion Republic now at 8080 Walton Boulevard, Irving. Familiar flavors, fabulous fusion.
16: कुछ आवाजें सिर्फ एंटरटेन करती हैं और एक आवाज आपकी जिंदगी का साउंडट्रैक बन जाती है।
6: वही आवाज लेकर आ रही है एक रेवोल्यूशन।
16: 360 शोज ट्रू पेमेंट प्रेजेंट्स सोनू निगम लाइव इन डैलस।
4: तुमसे मिलके दिल का है।
6: सैटरडे सितंबर 26th 8:30 PM ऑनवर्ड्स एट द क्रेडिट यूनियन ऑफ टेक्सास इवेंट सेंटर एलन।
16: टिकट्स अवेलेबल एट टिकट मास्टर। फॉर मोर इन्फो कॉल 855-360-SHOWS। एक्सक्लूसिव मीडिया पार्टनर फन एशिया नेटवर्क।

0: एंटरटेनमेंट से कर दे मैट। डैलस में रेडियो का डैड फोनेशिया 104.9 FM।
1: Yeah, it's coming up. तन्नी, आज तू मुझे देख लेगा ना तो 100 times

guys, we are back. Yes, this is Ippy the Hippie, only on Funasia Radio 104.9 FM. अगर आपको मेरी आवाज आ रही है तो जरूर इस गिव अवे क्वेश्चन का आंसर दीजिए, क्योंकि अगर आप जीत जाते हैं देन आपको मिलेगा फन पिज्जा किचन की तरफ से एक $10 का गिफ्ट कार्ड. तो इस वीकेंड में खाने के प्लान्स यहीं पे बन गए यार. तो ठीक है, मैं एक क्वेश्चन बोलूंगी, आपको उस क्वेश्चन को आंसर करना है एंड इट्स वेरी वेरी इजी. ठीक है, लेकिन उसके पहले मैं ये तो बता दूं दैट बाय द वे फन पिज्जा किचन हैज न्यू फ्लेवर्स, मेक्सिकन इंस्पायर्ड पिज्जाज, फिएस्टा वेजी, फायरी पोयो लोको, सी फूड पैक्ड, सीनियर कैमारोन एंड सो मच मोर. तो इफ यू लाइक सम गुआक एंड सम कॉर्न एंड सम इलोते एंड ऑल ऑफ दैट स्टफ, दैट्स द प्लेस टू गो. मे बी दे हैव समथिंग amazing, okay, over there. So starting this weekend they will be open, by the way. Agar aap late night concerts dekh rahe hain ya fir you're out partying at another Dallas Bollywood club or something, and ya fir navratri shuru hone wale, agar aap late night garba kar rahe hain around town and you have the hunger pangs at like midnight and you're like yaar sab to band ho gaya midnight ab kahan jayenge, well then you need to go down to Fun Pizza Kitchen because they are open till 3 o'clock in the morning. So, make sure you go there for your late night cravings and new flavors. ठीक है, तो गाना नहीं, question थोड़ा tricky है because why not? यार हमेशा मैं आपको easy question देती रहती हूँ और सबको पता चल जाता है. तो ये question are especially for my millennial दोस्तों. You know what I'm talking about, right? My millennials, this one's for you guys. तो this song is very very popular. ठीक है, इसका वर्जन मैं गाना बजाऊंगी और उसका एक वर्जन है जो ओरिजिनल वर्जन है विच केम आउट इन 2004, लाइक एटलीस्ट 10 years अगो. लेकिन उसी गाने के ऊपर एक नया गाना भी बना हुआ है, एक न्यू वर्जन भी बना हुआ है एंड उसके ऊपर एक नई मूवी भी बनी हुई है. ठीक है, एंड इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, इट्स नॉट वेरी हार्ड. अगर आप मैं गाना बजाऊंगी तो आपको पता ही चल जाएगा, सेम ही गाना है. आई प्ले यू द सॉन्ग. वॉट यू हैव टू डू इज यू हैव टू टेल मी हु इज द ओरिजिनल सिंगर हु हैड रिलीज द सॉन्ग इन 2004. एंड द थिंग इज दिस इज एन इंडी सॉन्ग, सो इट इज ए नॉन बॉलीवुड, नॉन फिल्मी सॉन्ग. मतलब बॉलीवुड तो खैर अब बन ही चुका है क्योंकि मूवी बन चुकी है इस पर, लेकिन ओरिजिनली ये एक एल्बम का गाना है. ठीक है, तो चेक इट आउट एंड कॉल मी एंड टेल मी द नेम ऑफ द ओरिजिनल सॉन्ग और ओरिजिनल सिंगर. सॉरी, यस, ओरिजिनल सिंगर. दिस इज हाउ द सॉन्ग गोज.

0: see. Hi, can you hear me? Hello. Oh, call drop हो गई. कोई बात नहीं. आप गाना सुन लो. आ गया call दोबारा. Hi, can you hear me?
1: Hi, can you hear me?
0: Hello.
1: Oh, call drop हो गई. कोई बात नहीं. आप गाना सुन लो.
0: Hello.
1: आ गया.
0: Hi, can you hear me? Hello.
2: Hear me? Hello.
0: Hi, can you hear me?
2: Yes. Can you hear me?
0: Yeah, I can hear you. पहले तो अपना नाम बताइए, and then tell me the correct answer.
2: Sure, my name is Sagar.
0: Sagar, okay, Sagar, go for it. Tell me the correct answer.
2: I think it's Kishore Kumar.
0: नहीं, उतना पुराना नहीं है. 2004 में तो किशोर कुमार मतलब स्वर्ग सिधार गए थे, बट कोई बात नहीं.
2: थैंक यू.
0: कोई बात नहीं. गाइज द क्वेश्चन इज स्टिल ओपन. लेट्स टेक द नेक्स्ट कॉलर. हाय, कैन यू हियर मी?
2: यस.
0: ओके, पहले तो अपना नाम बताइए, देन टेल मी द नेम ऑफ द ओरिजिनल सिंगर ऑफ द सॉन्ग.
2: माय नेम इज मिहिर एंड आई थिंक दिस इज फ्रॉम बॉम्बे वाइकिंग्स.
0: Nay, very close, around that era, but very close. It's not
2: okay.
0: Bombay Vikings.
2: Okay.
0: Guys,
2: no
0: the question is still open. If you know the answer, then call me. Hi, can you hear me?
3: Yeah, hi.
0: Hi, pehle to apna naam bataiye, then tell me the answer.
3: Amit,
0: okay, Amit, go for it.
3: Raghav?
0: Yeah, and we have our winner, woohoo! अमित के लिए सब ताली बजाए. रुको, हम आपके लिए स्पेशल ताली बजा रहे हैं फनेशिया की तरफ से. ये देखो, बल्ले बल्ले के साथ तालियां भी बज गई यार, एकदम क्या शानदार प्रदर्शन. अमित, वेरी नाइस. ये थोड़ा रेयर था. आई नो अ लॉट ऑफ माई लिसनर्स हियर प्रोबेबली डोंट रिमेम्बर दिस, बट आई एम सो ग्लैड यू रिमेम्बर इट. क्योंकि भाई यार, मतलब साउंड तो नया इस बंदे ने ही लाया था, वो तो मूवी ने बाद में ले लिया, बट ओरिजिनल साउंड को तो क्रेडिट देना बनता है ना.
3: यप यप, वेरी डिफरेंट,
0: वेरी डिफरेंट. एग्जैक्टली, 2004 के लिए वेरी वेरी डिफरेंट. तो गाइज, आप ये ओरिजिनल गाना सुनिए, व्हिच इज बाय राघव. एंड अमित, यू स्टे ऑन द लाइन. आई एम गोइंग टू प्ले द सॉन्ग एंड देन आई विल टेक योर इन्फॉर्मेशन. ओके, सो डोंट हैंग अप.
3: ओके जी. ओके
0: ओके गाइज, आप ये गाना एंजॉय करिए तब तक.
3: मेरा

भाई वी आर बैक। जब 2005 की बात हम करेंगे तो क्यों नहीं करेंगे यार, ओरिजिनल। भाई हमारे मिलेनियल 2000s में तो कुछ भी चल रहा था, Y2K आ रहा था एंड ऑल ऑफ दैट। डेंजरसली लो जीन्स आ रही थी लड़कियों के फैशन के मामले में। तो गाइज, अब जब फैशन वापस आ रहा है, द सेम फैशन इज कमिंग बैक, यू नो, द डेंजरसली लो जीन्स एंड द क्रॉप टॉप्स, देन व्हाई शुडन्ट वी ब्रिंग बैक द सॉन्ग्स दैट वर एब्सोल्युटली अमेजिंग। रीमिक्स तो बन ही रहा है उसका, है ना। तो एक और चीज, 2000s, अर्ली 2000s में पता है सबसे अमेजिंग, अमेजिंग तो नहीं, आई डोंट नो, सम दीज वर लाइक हिट और मिस इन माई ओपिनियन। ओके, द ईरा ऑफ रीमिक्सेस, सारे पुराने गानों के सारे रीमिक्स बन रहे थे, वहीं से शुरू हुए थे 2000s, अर्ली 2000s से। नाउ सम ऑफ देम वर रियली रियली गुड एंड वेरी क्रिएटिव, एंड देन सम वर जस्ट अटर गार्बेज। बट यू नो वॉट, इट्स ओके, वी आर काइंड ऑफ गेटिंग नॉस्टैल्जिक एंड गोइंग बैक इन टू द 2000s। सो लेट्स लिसन टू दिस वन ट्रैक। आई एक्चुअली लाइक दिस बॉम्बे वाइकिंग्स का ट्रैक। जब हमारे कॉलर ने बोला बॉम्बे वाइकिंग्स का गाना था क्या वो वाला, मैंने कहा नहीं, तो मुझे बॉम्बे वाइकिंग की याद आ गई। एंड दिस वन इज अ ट्रैक रीमिक्स बाय बॉम्बे वाइकिंग्स, ऑफ कोर्स।

0: तो गाइस
1: कहाँ गया, कहाँ रखा था? सुनो ना, मेरा वो वाला सेट कहाँ है?
2: कौन सा?
1: अरे वो गोल वाला, थोड़ा ट्रेडिशनल, उसमें पोलकी भी है।
2: अरे सारे तो सेम है।
1: नहीं, वो श्री कृष्णा से जो लिया था ना हमने, ये देखो ये वाला।
2: ओ हाँ, ये तो अलग है।
3: अलग तो होगा ही, श्री कृष्णा ज्वेलर्स से जो है। From timeless gold and radiant diamonds to heritage polkis, discover Texas's largest handcrafted jewelry collection now at Main Street in Frisco. Shri Krishna Jewelers, crafted for moments that matter. Visit shrikrishna.com.
4: Hello, Weekend Lunch Emergency Helpline. How may I help you?
5: Hello, mere relatives aa rahe hain. Everyone's asking lunch mein kya hai?
4: Fikar not. We have the perfect solution.
3: The Flavor Lounge in Frisco brings you its all-new weekend lunch buffet. From flavorful Indian favorites to live counters and chef special, 25 plus dishes, welcome drink, chaat, appetizers, main course and dessert. Saturday to Sunday, 12 p.m. to 3 p.m. This weekend, let the Flavor Lounge do the cooking.
6: Yaar, festival season aa raha hai. Aur meri wife ne shopping list bhi de di hai.
7: Kitni lambi list hai?
6: Bas, 2 pages.
3: इंडियन ड्रेसेस, मिठाई, नमकीन और हाँ, एक पूजा मंदिर भी।
7: अरे तो सब कुछ इंडिया से ही मंगवा लो, SFL Worldwide है ना। इंडिया में आपके डोर स्टेप से सामान पिकअप करके यहाँ सीधा आपके घर डिलीवर करते हैं। पूजा मंदिर हो, झूला हो या फर्नीचर, सामान छोटा हो या बड़ा, ओशन फ्रेट के थ्रू सब शिप हो सकता है।
8: दिस फेस्टिव सीजन इंडिया को अपने और करीब लाएं विद SFL Worldwide, शिपिंग एंड मूविंग सर्विसेज फ्रॉम इंडिया टू द USA एंड वर्ल्ड वाइड। विजिट SFLWorldwide.com.
9: भूख लगी, जोरों की
10: भूख लगी है या बस कुछ एक्सेप्शनल खाना है?
11: स्ट्रीट स्टाइल चाट्स, रिच अवधी फ्लेवर्स एंड दैट क्लासिक बटर चिकन यू कीप गोइंग बैक टू, ऑल अंडर वन रूफ एट Page 3 Eatery. Honestly, ये सिर्फ खाना नहीं है, इट्स व्हाट योर मूड इज एक्चुअली क्रेविंग।
3: अ क्विक बाइट, अ परफेक्ट लंच एम्बियंस एंड एन इवनिंग दैट जस्ट फ्लोज इनटू द नाइट। यू डोंट गो जस्ट एनीवेयर, यू गो टू Page 3, हब 121 मैकिनी।
12: I am so stressed. Credit card bills, unsecured debts. What are we going to do?
13: Kuch bhi nahi. Oora Debt Relief will do it for us.
12: Kya matlab?
13: Oora can help us save up to 50% on our total debt and the rest we pay in easy monthly installments.
12: But what if it doesn't work? We cannot afford to lose more money. हम खुद ही मैनेज कर लेंगे।
13: Oora Debt Relief is one of the leading debt settlement companies. They don't charge a single penny until our debt is settled. And they have a 100% money back guarantee. Call to karo 888-888-9914.
12: अब तो करना ही पड़ेगा मैडम।
14: Don't let debt ruin your life. Visit Oora.org or call 888-888-9914 and take control of your financial future.
15: अजी सुनते हो, सोच रही थी बेटे की शादी इंडिया में करे।
7: इंडिया में? तो यहाँ जो फ्रेंड्स और रिलेटिव्स हैं, वो कैसे अटेंड करेंगे?
15: पर यहाँ सारे अरेंजमेंट्स मैनेज करना भी तो कितना मुश्किल होगा।
7: हेलो, तुम डैलस में हो, यहाँ कोई भी इवेंट करना सुपर इजी है, स्पेशली जब वैनेसा इवेंट्स का साथ हो।
15: सच में? सब संभालेंगे?
7: अरे सब कुछ, वेडिंग हो, हाउस वार्मिंग, ग्रेजुएशन, यू नेम इट, दे डिलीवर। वेन्यू, फोटोग्राफी, हॉस्पिटैलिटी, सब कुछ एक ही जगह। सिग्नेचर इवेंट्स का डेकोर और खाना बाय द रेनॉल्ड बसेरा ग्रैंड ओनली।
3: कॉल हरी बसेरा ऑन 469-442-8770. Vanessa Events, your celebration partner.
16: When the unexpected becomes inevitable, the real story begins.
17: इस वन की काली शक्तियाँ, और अगर कोई रात को वन में प्रवेश करता है तो उसकी लाश भी नहीं मिलती।
16: Get ready for a brand new action packed experience full of emotion and suspense.
18: एक तरफ है वन देवी और एक तरफ है विकास।
16: The One, Force of the Forest.
19: A Hindi mythological folk thriller. Directed by Arunab Kumar and Deepak Kumar Mishra. Sizzling the big screen for the first time together, Siddharth Malhotra and Tamanna Bhatia.
16: On 25th September in cinemas near you.
0: गाइज, ब्रेक में जाने से पहले मैं बोल रही थी, आपको पता है ना सैटरडे को सोनू निगम आने वाले हैं, तो अगर अभी तक आपने टिकट्स नहीं ली हैं तो जल्दी जल्दी ले लो, बिकॉज आई डोंट नो हाउ मेनी टिकट्स आर इवन देयर। मुझे तो अनाउंसमेंट करने को बोलते हैं तो मैं तो कर देती हूँ, लेकिन गाइज देर आर नॉट इनफ टिकट्स आउट देयर, आई नो फॉर अ फैक्ट। तो इसीलिए जल्दी जल्दी ले लो। सोनू निगम इज़ वन आर्टिस्ट यू डू नॉट वॉन्ट टू मिस। ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट मेल वोकलिस्ट्स out there in Bollywood today. Definitely don't miss out. It's going to be a phenomenal concert.

भाई क्या गाया, आई वॉज तो जैमिंग हियर स्टूडियो में बैठ के। मैं मतलब गाना सुन के क्या ट्रांस है। आपको नहीं लगता कुछ कुछ गाने ऐसे होते हैं ना दैट दे पुट यू इन सम काइंड ऑफ अ ट्रांस एंड यू आर लाइक यू आर जस्ट काइंड ऑफ इंजॉइंग द राइड। यू नो देर आर सम सॉन्ग्स दे ट्रांसेंडेंट, दे आर लाइक ट्रांसेंडेंटल, दे ट्रांसेंड यू टू दिस लाइक अ होल डिफरेंट यूनिवर्स। मुझे म्यूजिक के साथ तो वैसी वाली फीलिंग आती है, आपको नहीं आती? तो आगे बढ़ते हुए गाइस, येस्टरडे वी वर टॉकिंग अबाउट सो कॉल्ड कोट अनकोट मिडल लाइफ क्राइसिस। इफ यू आर फीलिंग द पुश, द रीजन आई एम टॉकिंग अबाउट दिस इज बिकॉज यू नो मेरे रील पे ना, मेरे फीड पे ना एक रील आई, उसमें बताया कि 2026, आई डोंट नो, समटाइम्स वी फॉरगेट हाउ फास्ट टाइम फ्लाइज। एंड अभी तो लग रहा था 2026 जस्ट शुरू ही हुआ था। आई मीन आई जस्ट गॉट यूज टू लाइक टाइपिंग 2026 फ्रॉम 2025, यू नो व्हेन यू गेट यूज टू राइटिंग वन पर्टिकुलर डेट एंड सडनली न्यू ईयर हो जाता है एंड देन यू हैव टू रीएडजस्ट इट, राइट? एंड आई फील लाइक आई जस्ट गॉट यूज टू टाइपिंग 2026, और अभी 2026 ख़त्म भी होने वाला है। सेप्टेम्बर इज़ अबाउट टू एंड इन एग्जैक्टली 1 वीक एंड देन यू हैव एग्जैक्टली 3 मंथ्स, एंड ये 3 मंथ्स ऐसे ही थैंक्स गिविंग, क्रिसमस, न्यू ईयर्स करते करते निकल जाएंगे, नवरात्र, दुर्गा पूजा, दिवाली में निकल जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। एंड यू नो यू विल बी लाइक ओ माई गॉश, 2026 इज़ ओवर, 2027 इज़ हैपनिंग नाउ, इट्स 7 years सिंस कोविड हैपन्ड एंड आई स्टिल हैवन्ट लॉस्ट द 30 pounds दैट आई हैड यू नो प्लान्ड ऑन लूजिंग राइट आफ्टर कोविड हैड एंडेड, बिकॉज यू नो एवरीबडी पुट ऑन वेट ड्यूरिंग कोविड। तो कोविड के बाद जो लोग गोलमटोल से हो गए एंड देन यू नो यू ऑल थॉट कि अरे यार मैंने तो वेट लूज ही नहीं किया, या फिर द वेट इज जस्ट एन एग्जाम्पल बाय द वे, वट एवर गोल यू हैड इन योर माइंड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। 2026 इज अबाउट टू एंड, 3 महीने हैं, जस्ट डायल डाउन, पुल अप दो सॉक्स एंड जस्ट गेट टू वर्क यू गाइज, बिकॉज आई बिलीव इन यू, यू कैन डू इट, यू कैन मेक ऑल योर ड्रीम्स कम ट्रू, यू जस्ट हैव टू डू इट, यू जस्ट हैव टू टेक द फर्स्ट स्टेप। ओके, अगर वैसे ही आप कोई इवेंट्स प्लान कर रहे हैं, यू नो यू आर प्लानिंग ऑन मेकिंग दैट फर्स्ट स्टेप टूवर्ड्स सम काइंड ऑफ अ ग्रैंड इवेंट लाइक शादी या फिर एंगेजमेंट या फिर ग्रेजुएशन या एनीथिंग लाइक दैट, देन यू नीड टू रीच आउट टू विनेसा इवेंट्स। विनेसा इवेंट्स इज लाइक एन इवेंट मैनेजमेंट कंपनी, दे आर रिलेटेड टू बसेरा ग्रैंड। So if you're planning on doing anything like special events like that, they do all the work for you. They do the decor, catering, venues, hospitality, everything. You just be the guest at your own party. That's the idea. You don't want to be like handling logistics at your event. No, give it to someone else. Delegate it. Call Hari Basera at 469-442-8770. एंड अभी एक गाना सुनते हैं एंड देन वी व्हेन वी कम बैक देन वी आर गोना टॉक अबाउट मोर ऑफ द थिंग्स दैट वी वर टॉकिंग अबाउट यस्टरडे, द सो कॉल्ड मिड लाइफ क्राइसिस, व्हाट यू कैन डू, एंड वी विल कंटिन्यू दैट डिस्कशन। ओके,

तो गाइज, इफ यू आर प्लानिंग ऑन ब्रिंगिंग सम चेंज इनटू योर लाइफ, इनटू योर करियर, इनटू एनीथिंग दैट यू आर डूइंग, एंड यू फीलिंग लाइक टाइम इज स्लिपिंग आउट ऑफ योर हैंड्स, हियर आर सम थिंग्स दैट यू मस्ट मस्ट मस्ट प्रायोरिटाइज 2027 खत्म होने से पहले. ओ, 2027 शुरू होने से पहले, नॉट खत्म, अभी तो शुरू ही नहीं हुआ. 2026 खत्म होने से पहले promise me that you're going to try these things, okay? And I can guarantee you're going to feel so much better, okay? I have incorporated a lot of these things. I prioritize these for my good health. And I don't know, if you think that I am this bundle of positive energy and positive light, agar aapko meri awaaz mein wo joy aur wo, you know, ray of light aa rahi hai, that's because I am very disciplined about when it comes to all of these things. I promise. I'm not perfect. But I try and do whatever I can, even if it's a chota step. So let's start with the basics. Sleep. पहली बात तो ये, 26 खत्म होने से पहले प्रॉमिस में आप अपनी पूरे 8 घंटे की नींद कंप्लीट करोगे. अगर वो 8 घंटे की नींद आपको 11 बजे सो के करनी पड़ेगी तो करो, या 9 बजे सोनी पड़ेगी तो करो, या फिर if you can sleep at 1 and wake up the next day at 9 o'clock, you know, if you have the luxury to do that. Totally, it doesn't matter, but complete those 8 hours of sleep, okay? Protect it just like an appointment, like a doctor's appointment, jo pure saal try karte karte finally jaake mil jata hai, okay? Protect it like that. Almost everything else, I promise you, jaise ki mood, patience, judgment, weight and willpower, ye sara apne aap theek ho jayega. Ye, agar aap apni neend theek kar loge na, baaki sab apne aap, you know, line se boxes mein baithti jaati hain. Number two. मूवमेंट. आपको पता है ना, फिजिकल एक्सरसाइज से बॉडी में एंडोर्फिन रिलीज होते हैं. एंडोर्फिन इज आर हैप्पी हार्मोन. आई मीन, मैं साइंस वगैरह के बारे में बहुत बात करती हूँ, बट दिस इज द ट्रूथ एक्चुअली. तो बॉडी में आप थोड़ा सा भी मूवमेंट करो, एंड इट डजंट हैव टू बी लाइक स्पेंडिंग एन आवर इन द जिम. गॉड नो, आई डिडंट स्टार्ट विद दैट. आई विल टेल यू फॉर अ फैक्ट, आई गो टू द जिम एवरी डे नाउ, बट व्हेन आई स्टार्टेड 2023 में, मैं सिर्फ लाइक 3 days a week jati thi, and I would literally just do 20 minutes either on the cardio or the elliptical. और इसी 20 मिनट में मैं कहती थी, अरे यार हो गया बहुत. तो धीरे धीरे करके वो आप अपना स्टेमिना बढ़ाते जाते हो, एंड देन इट बिकम्स अ हैबिट, एंड देन द डे दैट यू डोंट गो यू फील स्लगिश एंड यू फील रियली बैड. बट वो वहाँ तक आने के लिए यू हैव टू पुश योर सेल्फ टू डू एटलीस्ट 10 मिनट्स ऑफ मूवमेंट एवरी डे. जस्ट स्टार्ट विद 10 मिनट्स, ओके? एंड

दिस इज नॉट एन ऑब्सेशन बाय द वे, दिस इज जस्ट रेगुलर थिंग्स, क्योंकि हम लोग डेस्क पे बैठ के जॉब करते हैं, वी डोंट वॉक दैट मच, सो मेक दिस अ पास एज अ पार्ट ऑफ योर रूटीन, ओके. एंड यू, आई प्रोमिस यू, एज यू गेट ओल्डर, दिस इज गोइंग टू अफेक्ट एवरीथिंग इन योर बॉडी, चाहे वो हार्ट डिजीज हो या ऑल ऑफ द यू नो हेल्थ इश्यूज, जो गट में जो वो क्या बोलते हैं, गट इन्फ्लेमेशन होता है या बेली फैट होता है, ऑल ऑफ दैट यू नो जिसकी हम बात करते हैं इंडियंस स्पेशली, दिस विल टेक केयर ऑफ दैट, ओके. नंबर 3, ऑटोमेटिक मनी. ऑटोमेटिक मनी क्या है, आई विल टेल यू राइट आफ्टर द सॉन्ग, क्योंकि नहीं तो बहुत लंबा कॉन्वर्सेशन हो जाएगा. लेट्स टेक अ सॉन्ग ब्रेक एंड देन यू कम बैक एंड आई विल टेल यू व्हाट ऑटोमेटिक मनी इज इन माई ओपिनियन.

0: तो गाइस एक गिव अवे तो मैं भूल ही गई, आज जो था हमारा स्पेशल सेकंड गिव अवे इज फ्रॉम द वन एंड ओनली होको, और आप जीत सकते हैं एक प्लेट आलू टिक्की ओनली फ्रॉम होको। अगर आपने होको अभी तक ट्राई नहीं किया है तो यू शुड ट्राई इट, एंड मुझे भी बता देना कैसा है, बिकॉज मैंने भी कभी नहीं ट्राई किया है। अपेरेंटली इट्स रियली फेमस इन गुजरात, बट आई एम फ्रॉम दिल्ली, सो आई हैव नेवर ट्राइड देयर चना पुड़ी या सैंडविचेस या डिलिशियस करीज या फिर उनकी कोल्ड कोको तो नहीं ट्राई करी है। तो अगर आपने ट्राई करी है, आप ट्राई करके मुझे बताना। दे हैव ओपन द न्यू लोकेशन इन फ्रिस्को, और आपको 20% स्टूडेंट डिस्काउंट भी मिलेगा विद अ वैलिड स्टूडेंट आईडी एंड अ 20% डिस्काउंट फॉर एम्प्लॉयज अगर आप मंडे टू फ्राइडे लंच आवर में जाते हैं ड्यूरिंग ऑफिस आवर्स, विच इज 9 to 5 आई एम अज्यूमिंग, एंड यू गेट अ लंच पैक, सो देन इन्जॉय दैट 20% डिस्काउंट ऑल्सो। तो अभी जो गाना मैंने बजाया था, क्वेश्चन बड़ा सिंपल है, ठीक है। माई नंबर इज 9722355555। बहुत ही सिंपल गाना है ये। गाना पिक्चराइज किया गया था अनुष्का शर्मा एंड ऑफकोर्स रणवीर सिंह पे, द वन एंड ओनली रणवीर सिंह। एंड यू हैव टू टेल मी वॉट मूवी इज दिस फ्रॉम। इट इज सो सो सो सिंपल, इट इज नॉट इवन दैट हार्ड। Just give me a call and let me know, okay? And भाई इसके पहले जाने से पहले, come on guys, phone घुमाओ, हम wait कर रहे हैं आपका। पहली बार तुमको मैंने जब देखा था, नहीं आ गया call, let's see who it is. Hi, can you hear me? Hello.
1: Hey.
0: Hi, can you hear me?
1: I think the movie was Ladies vs Ricky Bell.
0: नहीं, वेरी क्लोज, वेरी क्लोज, नॉट लेडीज वर्सेस रिकी बेल दो, इट्स अनदर मूवी। थैंक्स फॉर ट्राइंग, बाय। एंड गाइस लेट्स गो फॉर द सेकंड कॉलर। हाय, कैन यू हियर मी?
2: यस।
0: ओके, अपना नाम
2: बैंड बाजा बारात?
0: नहीं, इट्स नॉट इवन बैंड बाजा बारात, बट वेरी क्लोज। देयर इज वन मोर मूवी विद अनुष्का शर्मा। ओके, आई विल गो फॉर द नेक्स्ट कॉलर। हाय, कैन यू हियर मी?
3: Hi, yes, I can hear you.
0: Okay, पहले तो अपना नाम बताइए and then tell me the answer.
3: My name is Kinjal and movie is I think Dil Dhadakne Do.
0: अरे शानदार प्रदर्शन किंजल। अच्छा, आपकी गाड़ी की ना हवा इतनी तेज आ रही है कि कॉल के अंदर वो हवा आ रही है। थैंक्स फॉर क्लोजिंग द विंडो। हाँ, तो गाइज किंजल के लिए जोरों शोरों से तालियां। Very nice, Kinjal. आपने बिल्कुल सही जवाब दिया। I'm going to play a quick song and you should stay on the line because I'll take your information and I'll tell you how to redeem your coupon, okay? Guys, आप ये गाना enjoy करिए तब तक, and Kinjal stay on the line.

0: point, guys, towards the end. Fifth point that you should do today and you should incorporate before the end of 2026. That is, din ke 10 minute, minimum 10 minute, reflect on something. Either abhi mere paas ek call aaye and they actually really loved what I was saying, giving advice and everything. To unhone bola ki bhai aap ye bhi bol do apne listeners ko 10 minute wo bhagwan ko yaad kare. Exactly, भाई आप अगर spiritual हैं, अगर आप religious हैं, तो बिल्कुल अपने भगवान को याद करिए, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो Jesus Christ हो, अल्लाह हो, कृष्णा हो, दुर्गा हो. In my case, I worship सरस्वती माता and दुर्गा माता. तो you know, whoever your God is, whoever that person is, just reflect on that person and also reflect on your last week or your last month. What drained you? ठीक है, आपको ऐसा क्या था जो आपकी पूरी मतलब एनर्जी निकाल दी उसने. ठीक है, क्या आप इस हफ्ते आप क्या नई चीज कर सकते हो टू मेक योर लाइफ बेटर, बिकॉज भगवान उन्हीं को हेल्प करता है जो खुद की हेल्प करते हैं. ये सारी सेइंग सारे रिलीजन में है, सिर्फ हमारे किसी एक रिलीजन में नहीं है, सारे रिलीजन में यही बोलते हैं कि अगर आप अपने आप की मदद करते हो देन भगवान भी आपको उसको डबल करके देता है. सो दैट्स द वे इट काइंड ऑफ हैपेंस. Then people who never stop to look at their lives. अगर जो लोग वैसे होते हैं जो हमेशा अपने life को analyze नहीं करते हैं, they don't ever look at their life saying that what did I do wrong and what, you know, they don't ask these kind of questions. They are the ones who wake up at 46, 47, 51, whatever your age is, and start thinking कि यार, how did I get here? This is not what I had planned for. So now think about this before you go to bed tonight and maybe start journaling. I have found journaling very, very helpful. I always ask these questions to myself. Aur main ek journal mein dalti hu. Agar aapko ye positive lagta hai, then you should do it. I will see you after this short break. Okay, see you soon.
1: मैं शादी करूंगी तो करीना वाला डिजाइनर लहंगा पहन के करूंगी, वरना दूल्हे को टाटा बाय बाय कर दूं.
2: अरे मैडम, करीना वाला लहंगा और आपका बजट मैच करेगा क्या?
3: अब करेगा, बिकॉज इंडियन अटायर फ्रिस्को समर सेल इज ऑन. स्टनिंग लहंगास, एलिगेंट साड़ीज, ब्राइडल ज्वेलरी, मेंस एंड किड्स वेयर.
4: इतना सब और प्राइस?
3: अप टू 25% ऑफ ऑन लहंगास एंड ब्राइडल कलेक्शन. समर सेल थ्रू द एंड ऑफ ऑगस्ट, ओनली एट इंडियन अटायर फ्रिस्को. ट्रेडिशनल हो या फ्यूजन, अब हर आउटफिट बोलेगा
5: मैं हीरो.
6: पनीर मंचूरियन का नाम तो सुना होगा, पर चिली पनीर बाओ कहानी में ट्विस्ट.
7: चिकन टिक्का पुरानी मोहब्बत, बट बुराडा चिकन टिक्का न्यू लव.
6: एंड पिस्ताचियो लैम्प चॉप्स,
7: फुल ऑन फ्लेवर का फ्यूजन.
8: That's Fusion Republic Indian Kitchen and Bar. Familiar Indian flavors with a fusion twist. Already loved in Richardson, now the flavor story moves to Irving. Enjoy an everyday lunch buffet with 25 items. Chaats, tandoor, biryani, fusion favorites and plenty more to discover. Fusion Republic now at 8080 Walton Boulevard, Irving. Familiar flavors, fabulous fusion.
9: Dallas, are you ready? Jago Times Group of Publications अब आ चुका है डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, कई मिलियन फॉलोअर्स के साथ, बोथ इन इंग्लिश एंड उर्दू. लेड बाय द फेस एंड फियरलेस जर्नलिस्ट राजा जाहिद अख्तर खानजादा, जिन्होंने अपनी कलम से सोशल इनजस्टिस और करप्ट प्रैक्टिसेस के खिलाफ भरपूर आवाज उठाई. डैलस और दुनिया भर की ताजा तरीन खबरों के लिए द जागो टाइम्स अवेलेबल है एक क्लिक पर, thejagotimes.com. फॉर मोर डिटेल्स एंड एडवर्टाइजमेंट कॉन्टैक्ट राजा जाहिद अख्तर खानजादा 6825516500. The Jago Times Commission. Jago bhi, jagao bhi. Exclusive media partner, Panacea.
10: Bindas bolo. बोलो बोलो बोलो बिंदास बोलो.
11: जब गाना बोले बिंदास तो शांति होगी बिंदास. जॉइन बंदा बिंदास मारविन दास मंडे से थर्सडे फ्रॉम 5 PM टू 7 PM फॉर म्यूजिक मस्ती और फुल ऑन एंटरटेनमेंट, पावर्ड बाय टेक्सास स्टार रिहैब एंड परफॉर्मेंस सेंटर और हिमालयन बाजार, सिर्फ वनीशा रेडियो पर.

भाई इस सेगमेंट का आपके लिए एक छोटा सा होमवर्क है मेरी तरफ से. आउट ऑफ द फोर थिंग्स और द फाइव थिंग्स दैट वी टॉक्ड अबाउट, व्हाट वर द फाइव थिंग्स? नंबर वन, स्लीप, स्लीप रेगुलेशन. नंबर टू, मूवमेंट. ओके, गॉट मूव योर बॉडी अ लिटिल बिट. नंबर थ्री, मनी हैबिट्स, ऑटोमेटिक सेविंग मनी, रिटायरमेंट, वट एवर इट इज यूर डूइंग. नंबर फोर, लर्निंग, स्पेंड 15 मिनट्स अ डे लर्निंग सम न्यू स्किल, वट एवर यू वॉन्ट, और इम्प्रूव अ स्किल दैट यू ऑलरेडी हैव. एंड नंबर फाइव इज रिफ्लेक्शन. ठीक है, तो आपके लिए होमवर्क ये है, इन पांच चीज़ों में से आप कोई भी तीन चीज़ चूज करिए एंड यू डिसाइड दैट इन द मंथ ऑफ अक्टूबर आई विल इम्प्रूव ऑन दीज थ्री थिंग्स. इट डजेंट हैव टू बी वेरी बिग, मतलब आप छोटी छोटी चीज़ें शुरू करिए, वट एवर फील्स द ईजीएस्ट फॉर यू. इट कैन बी एनी थ्री आउट ऑफ द फाइव थिंग्स दैट आई मैंशन. एंड देन आई वॉन्ट हियर फ्रॉम यू गाइज. You call me back around November because I will be here and tell me. हम लोग 1 November को check in करेंगे. Let's see. Let's make a goal for ourselves. Okay? We check with our each other on November 1st and then you call me and tell me, hi AP, I incorporated out of the five things that you had mentioned, I incorporated these three things and it changed my life so much. I'm sleeping so much better. I don't have brain fog. I'm moving better. I've lost 5 pounds. जो भी है, whatever it is, you tell me in November, 1 November को हम जब call करेंगे, then you tell me, okay? And then I also want to hear from you. What is that one habit that you wish you had started early? ठीक है? Now, एक गाना सुनते हैं, then we'll come back.

गाइज, वी आर अबाउट टू फिनिश आवर शो इन अबाउट 10 मिनट्स. तो अगर आप एक टेक्सास बिजनेस ओनर हैं एंड यू आर लुकिंग फॉर अ स्मार्टर कमर्शियल एनर्जी सोल्यूशन, ट्रस्ट तारा कमर्शियल एनर्जी बिकॉज दे आर प्राउडली सर्विंग टेक्सास बिजनेसेस सिंस 2002 विद कंपेटिटिव रेट्स, रिलायबल सर्विस एंड कस्टमाइज्ड एनर्जी प्लान्स. कॉल 844-428-2808 और विजिट ताराएनर्जी.com.

भाई पल रहे या ना रहे, लेकिन वीकेंड तो हर हफ्ते ही रहता है, और वीकेंड पे अगर आपके पास खाने के लिए कोई ऑप्शंस नहीं है एंड यू रन आउट ऑफ ऑल द सेम ओल्ड घिसा पिटा रेस्टोरेंट, देन यू नीड टू गो चेक आउट द फ्लेवर लाउंज इन फ्रिस्को, बिकॉज दे हैव एन ऑल न्यू वीकेंड लंच बफे विच हैज़ लाइव काउंटर, शेफ स्पेशल, और बहुत ही अमेजिंग अमेजिंग एवरीथिंग फॉर जस्ट 24.99. इन्जॉय द बफे ऑन सैटरडे एंड संडे From 12 p.m. to 3 p.m. they have their location at 5855 Preston Road, Frisco. So make it like a grand family affair. You guys take your friends, family, सबको लेके जाओ. गोरो को भी लेके जाओ. They love Indian buffets. I'm telling you, I have some white American friends and they absolutely dig it. So take your office colleagues or whoever it is.

0: The Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
1: In association with Passion Health Primary Care.
2: Are you seeking clarity in life? Wondering what destiny has in store for you?
3: हर समस्या का हल है एस्ट्रोलॉजर ईश्वर के पास. 400 साल की फैमिली विजडम के साथ वर्ल्ड फेमस एस्ट्रोलॉजर अब डैलस में.
2: That magic removal हो, love and relationship issues हो, get trusted solutions with 100% privacy.
3: Thousands की लाइफ बदली उनकी डिवाइन गाइडेंस से. Now it's your turn. समस्या का पक्का समाधान. एस्ट्रोलॉजर ईश्वर. Call now 9455270897 or visit astrologerishwar.com.
4: It's the time to clock out. It's the time to catch up.
5: And most importantly, it's time to turn up the flame. Introducing Flame Hour at Tandoori Flame. जहाँ तंदूर की स्मोकी खुशबू, सिजलिंग फ्लेवर्स और चटपटे एपेटाइजर्स मेक एन ऑर्डिनरी वीकडे फील लाइक अ डिलीशियस सेलिब्रेशन. एवरी मंडे थ्रू फ्राइडे फ्रॉम 5 to 8 PM. ऑर्डर एनी टू एंट्रीज एंड गेट वन एपेटाइजर एब्सोल्युटली फ्री. ब्रिंग योर फैमिली, फ्रेंड्स एंड योर एपेटाइट. विजिट तंदूरी फ्लेम इन गार्लैंड. टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई.
6: I am so stressed. Credit card bills, unsecured debts. What are we going to do?
7: Kuch bhi nahi. Oura Debt Relief will do it for us.
6: Kya matlab?
7: Oura can help us save up to 50% on our total debt and the rest we pay in easy monthly installments.
6: But what if it doesn't work? We cannot afford to lose more money. Hum khud hi manage kar lenge.
7: Oura Debt Relief is one of the leading debt settlement companies. They don't charge a single penny until our debt is settled. And they have a 100% money back guarantee. Call to karo 888-888-9914.
6: Ab to karna hi padega, madam.
8: Don't let debt ruin your life. Visit Oura.org or call 888-888-9914 and take control of your financial future.
9: Sadia. कुछ आवाजें सिर्फ एंटरटेन करती हैं और एक आवाज आपकी जिंदगी का साउंडट्रैक बन जाती है.
10: वही आवाज लेकर आ रही है एक रेवोल्यूशन.
11: 360 शोज ट्रू पेमेंट प्रेजेंट्स सोनू निगम लाइव इन डैलस.
12: तुमसे मिलके दिल का है.
10: सैटरडे सितंबर 26th 8:30 PM ऑनवर्ड्स एट द क्रेडिट यूनियन ऑफ टेक्सास इवेंट सेंटर एलन.
11: टिकट्स अवेलेबल एट टिकट मास्टर. फॉर मोर इन्फो कॉल 855-360 शोज. एक्सक्लूसिव मीडिया पार्टनर फन एशिया नेटवर्क.
13: Hi, this is Priyanka Chopra and you're listening to Fun Asia Radio.

0: जिंदगी के कई रंग फनीशा रेडियो के संग।
1: हम दिल के बुरे नहीं, बस एक खराबी है, आदत से नहीं।

0: अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है।
1: पनवेल हो या डेलस, सफर तभी मस्त। जब गाने हो जबरदस्त, ओनली ऑन फन एशिया रेडियो।

0: कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं ये?
1: जो बॉलीवुड का असली मजा जानते हैं, फन एशिया पर ही आते हैं।

0: रेस्ट अ व्हाइल एंड रन अ माइल।
1: जाओ पहले उस आदमी का साइन लेकर आओ जिसने मेरे हाथ पे ये लिख दिया था।
2: साइन मिलना मुश्किल है लेकिन प्लेनो में जबरदस्त खाना उसका सिग्नेचर मिल गया। सिग्नेचर क्विजिन इन प्लेनो, फेमस निहारी, सिजलिंग ग्रिल्स, क्रिस्पी फ्राइड चिकन और माउथ वाटरिंग पराठा रोल्स, और कोई भी सेलिब्रेशन हो तो बैंक्वेट सर्विसेज भी। लोकेटेड एट स्प्रिंग क्रीक एंड आलमा ईस्ट प्लेनो, विजिट signaturecuisine.net। सिग्नेचर क्विजिन, हर टेस्ट पर अपना सिग्नेचर।
3: Dallas, are you ready? Jabu Times Group of Publications अब आ चुका है डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कई मिलियन फॉलोअर्स के साथ, बोथ इन इंग्लिश एंड उर्दू, लेड बाय द फेमस एंड फियरलेस जर्नलिस्ट राजा जाहिद अख्तर खानजादा, जिन्होंने अपनी कलम से सोशल इनजस्टिस और करप्ट प्रैक्टिसेस के खिलाफ भरपूर आवाज उठाई। डैलस और दुनिया भर की ताजा तरीन खबरों के लिए द जागो टाइम्स अवेलेबल है एक क्लिक पर, thejagotimes.com। फॉर मोर डिटेल्स एंड एडवर्टाइजमेंट कॉन्टेक्ट राजा जाहिद अख्तर खानजादा 6825516500। The Jago Times Commission, Jago Bhi, Jagao Bhi. Exclusive media partner, Panacea.
4: Same order again? Same pizza, same taste, same story? Time to upgrade your cravings, Dallas. Because Fun Pizza Kitchen just dropped a bold new Mexican-inspired menu. And trust us, this is not your regular slice. Fiesta Veggie, Pollo Loco, Senor Cameron, different names, crazy flavors. Once you try these, your old order might just get ghosted. Fun Pizza Kitchen, new flavors, new obsession.
5: इस साल तो कमाल हो गया, हमारा रेवेन्यू डबल हो गया।
6: सर अच्छा है, लेकिन आपने टैक्स प्लानिंग किया?
5: नहीं।
6: बुक कीपिंग अपडेटेड है?
5: नहीं।
6: कैश फ्लो फोरकास्ट बनाया?
5: वो भी नहीं।
6: तो पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त।
7: रेवेन्यू देखकर खुश मत होइए। बिजनेस में तब ऑल इज वेल होगा जब हमारे नंबर्स भी स्ट्रांग हो। फॉर योर टैक्स प्लानिंग, बुक कीपिंग एंड CFO सर्विसेज, विजिट agfintax.com, कॉल 972-618-8555। AG Fintax, your growth, our strategy. AG Fintax, led by Forbes Finance Council member Anil Granthi.
8: Services are subject to individual eligibility and applicable laws. Terms and conditions apply.
9: Bindas bolo, bolo bolo bolo, bindas bolo.
2: Jab gaana bole bindas, to shaam bhi hogi bindas. Join Banda Bindas, Marvin Das, Monday se Thursday from 5 p.m. to 7 p.m. for music, musti, or full-on entertainment. Powered by Texas Star Rehab and Performance Center or Himalayan Bazaar. Sirf Anisha Radio par.

टोनी सॉप क्या बोल रहे सब लोग, एमवे बंटा है मालूम है ना, मचाएंगे जो नहीं नाचते उसको भी नचाएंगे, लेट्स डू इट ए।

0: कमरा।
1: वो बोले मुझे थोड़ा आगे चल।
2: डालस की धड़कन 104.9 FM फनीजिया रेडियो।

पुष्पा झुकेगा नहीं और फनेजिया रुकेगा नहीं। नॉन स्टॉप बॉलीवुड, नॉन स्टॉप स्वैग।

0: पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, पिक्चर अभी बाकी है।
1: और एंटरटेनमेंट भी। स्टे ट्यून्ड टू फन एशिया।

0: बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं।
1: पर डैलस में सिर्फ एक ही बात होती है, फन एशिया प्लेज द बेस्ट बॉलीवुड।

0: देसी स्वैग, देसी स्वैग, बॉलीवुड टैग फन एशिया, फन एशिया।
1: बिछड़ के तुझसे अब मुझे मरना है, ये तजुर्बा इसी जिंदगी में करना है।

0: खुदा करे जिंदगी में ये मकाम आए, तुझे भूलने की दुआ करूं और दुआ में तेरा नाम आए।
1: लाइट्स माइक बॉलीवुड फनेजिया।

0: Dallas, are you ready? Jago Times Group of Publications अब आ चुका है डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कई मिलियन फॉलोअर्स के साथ बोथ इन इंग्लिश एंड उर्दू लेड बाय द फेमस एंड फियरलेस जर्नलिस्ट राजा जाहिद अख्तर खानजादा जिन्होंने अपनी कलम से सोशल इनजस्टिस और करप्ट प्रैक्टिसेस के खिलाफ भरपूर आवाज उठाई डैलस और दुनिया भर की ताजा तरीन खबरों के लिए द जागो टाइम्स अवेलेबल है एक क्लिक पर jagotimes.com फॉर मोर डिटेल्स एंड एडवर्टाइजमेंट कॉन्टेक्ट राजा जाहिद अख्तर खानजादा 6825516500 The Jago Times Commission Jago bhi jagao bhi Exclusive media partner Panacea
1: Same order again? Same pizza, same taste, same story. Time to upgrade your cravings, Dallas. Because Fun Pizza Kitchen just dropped a bold new Mexican-inspired menu. And trust us, this is not your regular slice. Fiesta Veggie, Pollo Loco, Sanao Cameron, different names, crazy flavors. Once you try these, your old order might just get ghosted. Fun Pizza Kitchen, new flavors, new obsession.
2: एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी तो फिर सिर्फ फन एशिया ही सुनूंगा।

0: एंटरटेनमेंट से कर दे मैड। डैलस में रेडियो का डैड फोनेशिया 104.9 FM।
1: Yeah, it's coming up.

0: Bringing South Asia closer, more closer. Funasia, 104.
1: This is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
2: Official tax and finance partner, AG FinTax.
1: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
2: In association with Passion Health Primary Care.
3: Funasia 104.9 FM. Turn up the volume.
4: Beta, 95% aaye?
5: हाँ मम्मी.
4: Good. अब चलिए पापा, आप अपना रिपोर्ट कार्ड दिखाइए.
6: मेरा?
4: हाँ. प्रॉफिट मार्जिन, कैश फ्लो, टैक्स प्लानिंग, बिजनेस गोल्स, सारे अकाउंट्स अपडेटेड.
6: वो
7: स्कूल का रिपोर्ट कार्ड साल में एक बार आता है, बट बिजनेस का रिपोर्ट कार्ड हर महीने. AG FinTax helps you understand profitability, cash flow, tax planning, business growth through bookkeeping and CFO services. Visit agfintax.com. Call 972-618-8555. AG FinTax, led by Forbes Finance Council member Anil Grandhi. Services are subject to individual eligibility and applicable laws. Terms and conditions apply. Sathiya!
8: कुछ आवाजें सिर्फ एंटरटेन करती हैं और एक आवाज आपकी जिंदगी का साउंडट्रैक बन जाती है.
9: वही आवाज लेकर आ रही है एक रेवोल्यूशन.
10: 360 शोज ट्रू पेमेंट प्रेजेंट्स सोनू निगम लाइव इन डैलस.
11: तुमसे मिलके दिल का है.
9: सैटरडे सितंबर 26th 8:30 PM ऑनवर्ड्स एट द क्रेडिट यूनियन ऑफ टेक्सास इवेंट सेंटर एलन.
10: टिकट्स अवेलेबल एट टिकट मास्टर. फॉर मोर इन्फो कॉल 855-360-SHOWS. एक्सक्लूसिव मीडिया पार्टनर फन एशिया नेटवर्क.

तन्हाई में, अकेले में, महफिल में और मेले में, आपके साथ है फनीशिया।

0: Same order again? Same pizza, same taste, same story? Time to upgrade your cravings, Dallas. Because Fun Pizza Kitchen just dropped a bold new Mexican-inspired menu. And trust us, this is not your regular slice. Fiesta Veggie, Pollo Loco, Senor Cameron, different names, crazy flavors. Once you try these, your old order might just get coasted. Fun Pizza Kitchen, new flavors, new obsession.
1: Hi, this is Priyanka Chopra and you're listening to Fun Asia Radio.
2: दोस्तों, अगर आप अपनी लाइफ को सिंपल बनाना चाहते हैं तो एक गोल्डन ट्रिक याद रखें। डीक्लटर योर डेस्क, डीक्लटर योर माइंड। सफाई सिर्फ घर की नहीं बल्कि थॉट्स और दिमाग की भी जरूरी है। सो क्लीन स्पेस, क्लीन थॉट्स एंड क्लीन वाइब्स ओनली, यही है फन एशिया रेडियो का अंदाज। सुनते रहिए हमें और इस नेक्स्ट गाने को।

जिंदगी एक लंबी फिल्म है और हर दिन एक नया सीन। वो कहते हैं ना, जो होता है अच्छे के लिए होता है। सो जब भी मुश्किल हो, समझ लो कि डायरेक्टर ऊपर वाला है और स्क्रिप्ट उसकी सुपर हिट ही होती है। बस पॉपकॉर्न लेकर चिल करो, बिकॉज लाइफ इज वर्थ वॉचिंग, जस्ट लाइक वन एशिया रेडियो इज वर्थ लिसनिंग।

क्या आपको पता है कि आपकी हार्ट बीट सिंक हो सकती है म्यूजिक के साथ? अगर गाना फास्ट हो तो दिल की धड़कन तेज हो जाती है, और अगर गाना स्लो हो तो काम हो जाती है, हल्की हो जाती है। तो अगला गाना सुनते ही अपना दिल जरूर चेक कीजिए। फनी एशिया रेडियो, लिटरली प्लेइंग विद योर हार्ट बीट्स।

हेलो एवरीवन, एक सिंपल ट्रिक फॉर इंस्टेंट हैप्पीनेस। अपने आप को आईने में देखिए और 30 सेकंड्स के लिए मुस्कुराइए। अजीब तो लगेगा, फनी भी लगेगा, लेकिन आपके दिमाग को ये मैसेज जाएगा कि यू आर जेन्युइनली हैप्पी। वो कहते हैं ना, मुस्कुराहट सबसे खूबसूरत जेवर है, सो इस जेवर को पहने रखिए, स्माइल करिए और डैलस की ट्रैफिक को थोड़ा हल्के में लीजिए इस गाने के साथ।

0: नेकी कर दरिया में डाल, ये मशहूर जमाना कहावत तो आपने जरूर सुनी होगी, लेकिन आजकल का वर्जन कुछ अलग ही हो गया है। नेकी कर और ऑनलाइन पोस्ट कर दे, मगर आप ऐसा बिल्कुल मत कीजिए। कोई भी अच्छाई, कोई भी नेकी जो आप करते हैं, उसे अपने तक ही रखिए, क्योंकि काइंडनेस इज लाइक वाईफाई, सबको फील हो जाती है, पासवर्ड की जरूरत बिल्कुल नहीं पड़ती। इसी तरह फन एशिया रेडियो आपके दिलों में धड़कता है बगैर आप।
1: This is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
2: Official tax and finance partner, AG FinTax.
1: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
2: In association with Passion Health Primary Care.

0: And most importantly, it's time to turn up the flame. Introducing Flame Hour at Tandoori Flame, जहाँ तंदूर की स्मोकी खुशबू, सिजलिंग फ्लेवर्स और चटपटे एपेटाइजर्स मेक एन ऑर्डिनरी वीकडे फील लाइक अ डिलीशियस सेलिब्रेशन. एवरी मंडे थ्रू फ्राइडे फ्रॉम 5 टू 8 पीएम, ऑर्डर एनी टू एंट्रीज एंड गेट वन एपेटाइजर एब्सोल्युटली फ्री. ब्रिंग योर फैमिली, फ्रेंड्स एंड योर एपेटाइट. विजिट तंदूरी फ्लेम इन गार्लैंड. टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई.
1: Hi, this is Saleem Merchant from Saleem Suleiman, and you're listening to me on Fun Asia Radio.

रात गुजरते शायद थोड़ा वक्त लगे, हमें साथ रखिए। मंजिल तक पहुंचने में शायद वक्त लगे, हमें साथ रखिए। आपका साथी, आपका हमसफर, हर पहर। फन एशिया रेडियो 104.9 FM।

हेलो एवरीवन, यू ट्यून्ड इनटू 104.9 एफएम फनी शेयर रेडियो। क्या आपको पता है कि असल में चॉकलेट वंस यूज्ड टू बी अ करेंसी। जी हाँ, माया सिविलाइजेशन में चॉकलेट वाज मनी। इमेजिन आज के जमाने में अगर आपकी सैलरी चॉकलेट्स में मिलती हो तो क्या होगा। डालस में सब सारे के सारे जिम फुल हो जाएंगे। जी हाँ, लेकिन जिंदगी की मिठास तो जिंदगी की मिठास है। मजा लीजिए जिंदगी की मिठास का फन एशिया रेडियो के साथ।

0: दोस्तों, जिंदगी सचमुच एक हसीन इत्तेफाक है। अगर इत्तेफाक ना हो तो मोहब्बत ना हो, शायरी ना हो, संगीत ना हो। अभी जो गजल मैं आपके सामने पेश कर रहा था, कभी उसमें एक आवाज और भी शामिल थी। उस आवाज की मलिका नेहा आज इस वक्त हमारे बीच हैं। दोस्तों, मैं आप सब लोगों की तरफ से उन्हें गुजारिश करूंगा कि वो एक बार फिर मेरा साथ देकर इस अधूरी गजल को पूरी कर दें और शाम को अमर कर दें।
1: ये क्या कह रहे सागर?

नेगेटिव लोगों से, नेगेटिव वाइब्स से और नेगेटिव चीजों से बिल्कुल दूर रहिए, क्योंकि नेगेटिविटी ब्रीड्स नेगेटिविटी। वही नेगेटिविटी आप तक ट्रांसफर हो और आपके सुकून को बर्बाद कर दे, इससे बेहतर है कि पॉजिटिव थॉट्स की तरफ जाइए। और अगर कोई भी पॉजिटिव थॉट आपको नहीं मिल रही तो कोई बात नहीं, फाइनेंशियल रेडियो पे ट्यून इन कीजिए और सुनते रहिए हमारे साथ इन जबरदस्त गानों को। कीप एंजॉयिंग।

दोस्तों, नॉलेज इज द ओनली थिंग जो बांटने से कम नहीं होती बल्कि बढ़ती जाती है। नॉलेज इज दैट लाइट जो आपकी जिंदगी को रोशन करती है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, आज के जमाने में नॉलेज सिर्फ किताबों में नहीं, हर कॉन्वर्सेशन, हर सफर, हर गाने में मौजूद होती है। तो क्यूरोसिटी रखिए, सवाल कीजिए, क्योंकि जानने का जुनून ही बनाता है इंसान को बड़ा। नॉलेज ही पावर है, और पावर तो आपको फनी रेडियो भी देता है विद दिस नेक्स्ट सॉन्ग, फील द पावर।

क्या आप जानते हैं कि लाफ्टर इज लाइक अ 15 मिनट्स ऑफ एक्सरसाइज। जैसे वर्कआउट किया हो आपने, मतलब अगर आप हंसी हंसी में हमारा शो सुन रहे हैं तो समझ लीजिए कि आपकी कैलोरीज भी बर्न हो रही हैं। तो रेडियो सुनना अब हेल्दी भी है, तो सुनते रहिए फनी शो रेडियो।

0: इस साल तो कमाल हो गया, हमारा रेवेन्यू डबल हो गया।
1: सर अच्छा है, लेकिन आपने टैक्स प्लानिंग किया?
0: नहीं।
1: बुक कीपिंग अपडेटेड है?
0: नहीं।
1: कैश फ्लो फोरकास्ट बनाया?
0: वो भी नहीं।
1: तो पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त।
2: रेवेन्यू देखकर खुश मत होइए। बिजनेस में तब ऑल इज वेल होगा जब हमारे नंबर्स भी स्ट्रांग हो। फॉर योर टैक्स प्लानिंग, बुक कीपिंग एंड CFO सर्विसेज, विजिट agfintax.com, कॉल 972-618-8555। AG Fintax, your growth, our strategy. AG Fintax, led by Forbes Finance Council member Anil Granthi. Services are subject to individual eligibility and applicable laws. Terms and conditions apply. It's the time to clock out.
3: It's the time to catch up. And most importantly, it's time to turn up the flame. Introducing Flame Hour at Tandoori Flame, जहाँ तंदूर की स्मोकी खुशबू, सिजलिंग फ्लेवर्स और चटपटे एपेटाइजर्स मेक एन ऑर्डिनरी वीकडे फील लाइक अ डिलीशियस सेलिब्रेशन। एवरी मंडे थ्रू फ्राइडे फ्रॉम 5 to 8 PM, ऑर्डर एनी टू एंट्रीज एंड गेट वन एपेटाइजर एब्सोल्युटली फ्री। ब्रिंग योर फैमिली, फ्रेंड्स एंड योर एपेटाइट। विजिट तंदूरी फ्लेम इन गार्लैंड। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
4: Hi, this is Akshay Kumar and you're listening to Funasia Radio.

0: अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है।
1: पनवेल हो या डेलस, सफर तभी मस्त। जब गाने हो जबरदस्त, ओनली ऑन फन एशिया रेडियो।

0: कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं ये?
1: जो बॉलीवुड का असली मजा जानते हैं, फन एशिया पर ही आते हैं।

104.9 FM Fun Asia Radio. Fun Asia Radio. Pure Fact, they see.

0: यू आर माई स्पेशल फ्रेंड।
1: पुष्पा झुकेगा नहीं और फनेजिया रुकेगा नहीं। नॉन स्टॉप बॉलीवुड, नॉन स्टॉप स्वैग।

0: अच्छा, मैनिफेस्ट करने से पहले थोड़ा दोबारा सोच लो, क्योंकि अब डायमंड्स में मिल रहा है बाय टू गेट वन फ्री ऑफर। तन्मय ज्वेलर्स इन अर्विंग, डायमंड रिंग्स, पेंडेंट्स, इयररिंग्स और ब्राइडल ज्वेलरी पर बाय टू गेट वन फ्री, और वो भी सब कुछ होलसेल प्राइस पर। चाहे प्रपोजल हो, वेडिंग हो या बस अपनी स्पार्कल अपग्रेड करनी हो, अब शाइन डबल विद इन बजट। लग्जरी ब्रिलियंस सेलिब्रेशन, तन्मय ज्वेलर्स इन अर्विंग।
1: रुको जरा, सबर करो।
2: अगला गाना फुल वाइब बदलने वाला है। स्टे ट्यून्ड टू फनेशिया।

0: पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, पिक्चर अभी बाकी है
1: और एंटरटेनमेंट भी। स्टे ट्यून्ड टू फन एशिया।

0: बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं।
1: पर डैलस में सिर्फ एक ही बात होती है, फन एशिया प्लेज द बेस्ट बॉलीवुड।

0: एंटरटेनमेंट से कर दे मैट, टैलेंट में रेडियो का डैड, फनीशा 104.9 FM.
1: Yeah, it's coming up.

0: कभी सोचा है हमेशा जैक के साथ जिल ही क्यों जाती है हिल पे? जैक के साथ जॉनी भी तो जा सकता है।
1: इट्स अ यूनिसेक्स सॉन्ग।

आयुष्मान भव।

0: अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है।
1: पनवेल हो या डेलस, सफर तभी मस्त। जब गाने हो जबरदस्त, ओनली ऑन फन एशिया रेडियो।

0: कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं ये?
1: जो बॉलीवुड का असली मजा जानते हैं, फन एशिया पर ही आते हैं।

0: छाओ के जैसा।
1: अजी सुनते हो?
2: अजी नहीं, एजी सुनते हैं।
3: The OG of Tax Planning, AG Fintax. सुनेंगे आपके फाइनेंशियल कंसर्न्स, देंगे स्मार्ट सॉल्यूशंस। Every Friday 9:45 AM, only on Funasia Radio.
4: कुछ आवाजें सिर्फ एंटरटेन करती हैं और एक आवाज आपकी जिंदगी का साउंडट्रैक बन जाती है।
3: वही आवाज लेकर आ रही है एक रेवोल्यूशन।
4: 360 शोज ट्रू पेमेंट प्रेजेंट्स सोनू निगम लाइव इन डैलस।
5: तुमसे मिलके दिल का है।
3: सैटरडे सितंबर 26th 8:30 PM ऑनवर्ड्स एट द क्रेडिट यूनियन ऑफ टेक्सास इवेंट सेंटर एलन।
4: टिकट्स अवेलेबल एट टिकट मास्टर। फॉर मोर इन्फो कॉल 855-360-SHOWS। एक्सक्लूसिव मीडिया पार्टनर फन एशिया नेटवर्क।

पुष्पा झुकेगा नहीं और फनेजिया रुकेगा नहीं। नॉन स्टॉप बॉलीवुड, नॉन स्टॉप स्वैग,

0: is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
1: In association with Passion Health Primary Care.
2: Fun Asia 104.9 FM. Turn up the volume!
3: Beautiful home, Ravi. $1 million. Wow.
4: Thank you. Well, Sana and me just got lucky as Hussein Panjwani helped us with the purchase of our first home. He practically walked us through the entire process. Ever since, with his guidance and support, I've become a pretty savvy real estate investor myself. Unka radio show sunata, and then consulted with him for all my financing needs. Now my real estate portfolio has grown into many single family homes, apartment complexes, agricultural land, or up ye $1 million property bhi.
5: Hi, this is Hussein Panjwani. Dream Home will help you grow your real estate portfolio. Remember, we just don't promise, we deliver.
6: For details, visit dreamhomemortgage.com or call Dream Home Mortgage 972-245-5626 or email info@dreamhomemortgage.com.
7: Some restrictions apply. Equal housing lender, NMLS 334616, Division of Brazos National Bank.
8: Moments don't fade. They echo like a melody that never leaves you. And in those moments, what you wear becomes a part of that melody. One of the most trusted jewelers with over 40 stores in India is now in Dallas. PMJ Jewels. Timeless craftsmanship, unmatched elegance, and stunning bridal collections. Now in Main Street, Frisco. PMJ Jewels. India's finest, Dallas's newest.
9: Call 857-891-8942 today.
10: Hello? Accident claim? Okay. Name of the lawyer? Oh... उमर ख्वाजा।
11: जब इंश्योरेंस वाले सुनते हैं उमर ख्वाजा का नाम तो वो खुद आ जाते हैं टेंशन में, क्योंकि वो जानते हैं अगर लॉयर उमर है तो नेगोशिएशन का मतलब है कॉम्पनसेशन फुल एंड फाइनल। कॉल अटर्नी उमर ख्वाजा नाउ फॉर अ फ्री कंसल्टेशन एट 833-GET-UMAR और विजिट attorneyumar.com.
12: Same order again? Same pizza? Same taste? Same story? Time to upgrade your cravings, Dallas. Because Fun Pizza Kitchen just dropped a bold new Mexican-inspired menu. And trust us, this is not your regular slice. Fiesta Veggie, Pollo Loco, Senor Cameron, different names, crazy flavors. Once you try these, your old order might just get ghosted. Fun Pizza Kitchen, new flavors, new obsession.
13: Zindagi ek safar hai suhana, yahan kal kya ho, kisne jana.
14: Life ho ya health, kab kya ho jaye, pata nahi. 13 saal tak Texas Primary Care Clinic ne jeeta aapka trust. Aur ab wahi trusted care, urgent care services ke saath, naye Kaiserway location par. Lunoxy Medical, founded by Dr. Mandeep Acharya. Adults aur bachchon ke liye primary care, urgent care, x-ray, CT scan, heart testing aur med spa. Sab kuch ek hi roof ke niche. Lunoxy Medical Urgent Care. Open 7 days a week, 8 a.m. to 8 p.m. Walk in anytime. 9191 Kaiser Way, Suite 205, Frisco.
15: जाओ पहले उस आदमी का साइन लेकर आओ जिसने मेरे हाथ पे ये लिख दिया था।
16: साइन मिलना मुश्किल है, लेकिन प्लेनो में जबरदस्त खाना, उसका सिग्नेचर मिल गया। सिग्नेचर क्विजिन इन प्लेनो, फेमस निहारी, सिजलिंग ग्रिल्स, क्रिस्पी फ्राइड चिकन और माउथ वाटरिंग पराठा रोल्स। और कोई भी सेलिब्रेशन हो तो बैंक्वेट सर्विसेज भी। लोकेटेड एट स्प्रिंग क्रीक एंड आलमा ईस्ट प्लेनो। विजिट signaturecuisine.net. सिग्नेचर क्विजिन, हर टेस्ट पर अपना सिग्नेचर।
17: वीकेंड का प्लान अभी तक नहीं बना? बस 90 मिनट्स नॉर्थ ऑफ डालस चौकटाउ कैसीनो एंड रिसॉर्ट ड्यूरेंट में हर विजिट बन जाता है एक विनिंग एक्सपीरियंस। पोकर हो या ब्लैक जैक, एक्साइटिंग स्लॉट्स हो या फिर 20 अमेजिंग रेस्टोरेंट्स में जबरदस्त डाइनिंग, और अगर ब्रेक चाहिए तो लग्जूरियस स्काई टावर और रिलैक्सिंग स्पा आपका इंतजार कर रहे हैं। तो सिर्फ लकी फील मत कीजिए, लकी बन जाइए। चौकटाउ कैसीनो एंड रिसॉर्ट ड्यूरेंट, एंटरटेनमेंट, लग्जरी और एक्साइटमेंट सब एक ही डेस्टिनेशन में। Please play responsibly. Must be 21 years or older to game.
18: Bindas bolo. Bolo, bolo, bolo, bindas bolo.
19: Jab gaana bole bindas, to shanti hogi bindas. Join Banda Bindas, Marvin Das, Monday to Thursday from 5 p.m. to 7 p.m. for music, musti or full-on entertainment. Powered by Texas Star Rehab and Performance Center or Himalayan Bazaar. Sirf Anisha Radio par.
20: Sabse pehle, tareef us super wale ki, jisne duniya banayi. चांद सितारे बनाए, ज़मीन आसमान बनाए, इंसान के दिल में मोहब्बत का जज्बा पैदा किया, उसी ऊपर वाले की तारीफ है जिसने मुझको, आपको और ये सारी कायनात को इंसानियत को आगे बढ़ाने के लिए बनाया है। आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, याली मदद, एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एज वी गेट स्टार्टेड विद आवर प्रोग्राम ऑन दिस लवली थर्सडे मॉर्निंग। लेडीज एंड जेंटलमैन, इट्स द 24th ऑफ सितंबर टुडे।

0: That was Ali Zafar's new track on Your Request. The festival season is calling for desi outfits, mithai, namkeen and all your favorite goodies. You can bring them home with SFL Worldwide with the doorstep pickup as well as delivery, plus ocean shipping for larger items like puja mandirs, jewelers and furniture. For shipping and moving within the United States from India to India and worldwide, you can visit sflworldwide.com or you can even call them 800-691-2335. I'll repeat that number, 800-691-2335. SFL Worldwide, bringing festivities closer to home. Do use them and get just whatever it is that you need to ship to or from. And I'm sure you won't be disappointed with SFL Worldwide. Number here in the studios, 972-235-5555. I'll take your requests, dedications, comments, feedback, suggestions, anything you'd like to talk about this lovely Thursday morning.
1: Hey Frisco, get ready to celebrate silver like never before. Chandrika Silver by Shri Krishna Jewelers celebrates its grand launch. Discover exquisite handcrafted silver jewelry and artifacts with exciting inaugural offers and raffle prizes. Visit 7777 Warren Parkway, Suite 280 Frisco. Chandrika Silver, the tradition shines in silver.
2: Immigration is a serious concern for our community, and when you are filing your case, you want a firm which is exclusively devoted to immigration law, like the law offices of Seema Mehta. From simple to highly complex cases, attorney Seema Mehta and her team are dedicated to managing them successfully. Whether it is for an immigrant visa or non-immigrant visa, family, employment or investment visa, perm labor certification or citizenships, they do it all. Call 214-432-2499 or email at info@seemamehtalawfirm.com.
3: पनीर मंचूरियन का नाम तो सुना होगा, पर चिली पनीर बाओ कहानी में ट्विस्ट।
4: चिकन टिक्का पुरानी मोहब्बत, बट बुराडा चिकन टिक्का न्यू लव।
3: एंड पिस्ताचियो लैम्प चॉप्स,
4: फुल ऑन फ्लेवर का फ्यूजन।
5: That's Fusion Republic Indian Kitchen and Bar. Familiar Indian flavors with a fusion twist. Already loved in Richardson, now the flavor story moves to Irving. Enjoy an everyday lunch buffet with 25 items. Chaats, tandoor, biryani, fusion favorites and plenty more to discover. Fusion Republic now at 8080 Walton Boulevard, Irving. Familiar flavors, fabulous fusion.
6: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं।
7: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है।
8: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं, जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं। तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो।
9: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहाँ एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है। करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट।
10: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com.
11: हेलो, वीकेंड लंच इमरजेंसी हेल्पलाइन, हाउ मे आई हेल्प यू?
12: हेलो, मेरे रिलेटिव्स आ रहे हैं, एवरीवन्स आस्किंग लंच में क्या है?
11: फिकर नॉट, वी हैव द perfect solution.
13: The Flavor Lounge in Frisco brings you its all new weekend lunch buffet, from flavorful Indian favorites to live counters and chef special, 25 plus dishes, welcome drink, chaat, appetizers, main course and dessert, Saturday to Sunday 12 p.m. to 3 p.m. This weekend, let the Flavor Lounge do the cooking.
14: I am so stressed. Credit card bills, unsecured debts. What are we going to do?
15: Kuch bhi nahi. Ura Debt Relief will do it for us.
14: Kya matlab?
15: Ura can help us save up to 50% on our total debt and the rest we pay in easy monthly installments.
14: But what if it doesn't work? We cannot afford to lose more money. Hum khud hi manage kar lenge.
15: Ura Debt Relief is one of the leading debt settlement companies. They don't charge a single penny until our debt is settled. And they have a 100% money back guarantee. Call to karo 888-888-9914.
14: Ab to karna hi padega, madam.
16: Don't let debt ruin your life. Visit ura.org or call 888-888-9914 and take control of your financial future.
17: जीनी
18: हुकम मेरे आका,
17: हम आज पार्टी के मूड में हैं। एक ऐसी जगह बताओ जहां मेरी एंट्री ही रॉयल हो।
18: मिराज लाउंज चलिए मेरे आका, लग्जरी लिमोजीन राइड्स आपके इंतजार में हैं।
19: मुझे ज्यादा क्राउड पसंद नहीं।
18: नो प्रॉब्लम आका, लग्जरी प्राइवेट स्पेस भी हाजिर है आपकी प्राइवेट पार्टी के लिए।
17: और एंटरटेनमेंट,
18: मूवी नाइट, बेली डांसिंग नाइट्स, प्रीमियम हुकर्स और अमेजिंग वाइब्स सब आपकी खिदमत में है।
17: वाह जीनी, ये जगह है या कोई जादू?
18: जादू नहीं, मिराज लाउंज एट मिकिनी रेंज पार्कवे। मिरेकल्स हैपन इन मिराज।
20: When the unexpected becomes inevitable, the real story begins.
21: इस वन की काली शक्ति, और अगर कोई रात को वन में प्रवेश करता है तो उसकी लाश भी नहीं मिलती।
22: Get ready for a brand new action packed experience full of emotion and suspense.
23: एक तरफ है वन देवी और एक तरफ है विकास।
22: The One, Force of the Forest,
24: a Hindi mythological folk thriller directed by Arunab Kumar and Deepak Kumar Mishra. Sizzling the big screen for the first time together, Siddharth Malhotra and Tamanna Bhatia.
20: On 25th September in cinemas near you.
0: The number here continues to be 972-235-5555.

0: Written by Sayyid Qadri, this is Lyrical Magic of Mahi from the movie Raaz. The mystery continues, starring Imran Hashmi and Kangana Ranaut. We will go ahead and get you all the rest of the songs that you all are requesting right after a quick break. I have some messages from our sponsors, our advertisers, as well as our supporters. So thank you very much for being tuned to your morning drive time special right here on the airwaves of the Fun Asia Network. Number in the studios 972-235-5555. Stay with me.
1: Zindagi ek safar hai suhana, yahan kal kya ho kisne jana.
2: Life ho ya health, kab kya ho jaye pata nahi. 13 saal tak Texas Primary Care Clinic ne jeeta aapka trust. Aur ab wahi trusted care, urgent care services ke saath naye Kaiser Way location par. Lunoxy Medical, founded by Dr. Mandeep Acharya. Adults aur bachchon ke liye primary care, urgent care, x-ray, CT scan, heart testing aur med spa. Sab kuch ek hi roof ke niche. Lunoxy Medical Urgent Care. Open 7 days a week, 8 a.m. to 8 p.m. Walk in anytime. 9191 Kaiser Way, Suite 205, Frisco.
3: Hello, Texas Parivar. Where do you go when bank says no? Are you self-employed? And are you struggling with your qualification? Yes, we have loan options for you. So call KJ Kamna Ko at 214-845-4189. Kyunki aapka bharosa hi meri pehchan hai. And this 926641.
4: Party is on everyone's mind at the moment in Dallas, cause the hottest destination to party with your tribe is in town. Mirage Lounge, a premium lounge offering hookahs, bites, crafted cocktails and live music and DJ nights. And guess what? A happy hour from 11 a.m. to 5 p.m. Monday to Thursday with hookahs at $15.99 and shots at $4.99 each. Plus, ladies' night and college nights bhi.
2: Visit Mirage Lounge at McKinney Ranch Parkway. Cause miracles happen in Mirage.
5: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं।
6: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है।
7: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं। जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं। तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो।
8: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहाँ एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है। करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट।
4: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com। वी नीड टू टॉक।
9: अब क्या हुआ?
4: नथिंग, इट्स नॉट यू।
9: ओह नो,
4: इट्स द डिस्टेंस।
9: डिस्टेंस? We live 10 minutes apart.
4: Arey, it's actually not you. It's that driving all the way for my Sal's Hot Chicken.
2: Irving, that long-distance relationship is officially over. Sal's Hot Chicken is now in Irving. Your crispy chicken, loaded sandwiches and bold Sal's flavors just got a whole lot closer. Sal's Hot Chicken, Irving. Same obsession, less distance.
10: One mistake doesn't have to define your future. A DWI or DUI charge can bring serious consequences, including license suspension, fines, and even jail time. But you don't have to face it alone. At Mathur Law Offices PC, we provide experienced legal representation in criminal defense matters, including DWI cases.
2: We also assist with related legal issues, including immigration consequences that may arise from criminal charges. Every case is different. The right legal strategy depends on your specific facts and circumstances. Call 214-378-8880. Mathur Law Offices PC. Right advice, right defense.
11: Paid spokesperson, Principal Office, Dallas, Texas.
12: It's the time to clock out. It's the time to catch up.
13: And most importantly, it's time to turn up the flame. Introducing Flame Hour at Tandoori Flame. जहाँ तंदूर की स्मोकी खुशबू, सिजलिंग फ्लेवर्स और चटपटे एपेटाइजर्स मेक एन ऑर्डिनरी वीकडे फील लाइक अ डिलीशियस सेलिब्रेशन। एवरी मंडे थ्रू फ्राइडे फ्रॉम 5 to 8 p.m. ऑर्डर एनी टू एंट्रीज एंड गेट वन एपेटाइजर एब्सोल्युटली फ्री। ब्रिंग योर फैमिली, फ्रेंड्स एंड योर एपेटाइट। विजिट तंदूरी फ्लेम इन गार्लैंड। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
14: ये तारा वो तारा हर तारा।
2: अरे अरे अरे, डैलस के आसमान में इतने सारे तारा नहीं। बिजनेस ओनर्स के लिए तो सिर्फ एक ही तारा काफी है,
15: तारा कमर्शियल एनर्जी 2002 से टेक्सास के हजारों बिजनेसेस का ट्रस्टेड एनर्जी पार्टनर, होटल्स, गैस स्टेशंस, वेयरहाउसेस, मेडिकल फैसिलिटीज, रिटेल स्टोर्स और ऑफिस बिल्डिंग्स, कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग, पर्सनलाइज्ड एनर्जी सॉल्यूशंस और एक्सेप्शनल कस्टमर सर्विस. तारा कमर्शियल एनर्जी, पावरिंग टेक्सास बिजनेसेस फॉर ओवर टू डेकेड्स. कॉल 844-428-2808 और विजिट taraenergy.com टुडे. तारा कमर्शियल एनर्जी, जो आपके बिजनेस को रोशन रखे.
16: बिंदास बोलो, बोलो बोलो बोलो बिंदास बोलो.
17: जब गाना बोले बिंदास तो शांति होगी बिंदास. जॉइन बंदा बिंदास मारविन दास मंडे से थर्सडे फ्रॉम 5 PM टू 7 PM फॉर म्यूजिक मस्ती और फुल ऑन एंटरटेनमेंट पावर्ड बाय टेक्सास स्टार रिहैब एंड परफॉर्मेंस सेंटर और हिमालयन बाजार सिर्फ अनीशा रेडियो पर.

0: इंटरवल। रियल क्लाइमैक्स वो है जब क्लोजिंग स्मूथ हो, पेपर वर्क क्लियर हो और आपके कीज हाथ में हो। दैट्स वेयर फर्स्ट यूनाइटेड टेक्सास टाइटल स्टेप्स इन। फ्रॉम टाइटल टू क्लोजिंग, एक्सपीरियंस अ स्मूथ, सिक्योर एंड सक्सेसफुल ट्रांजैक्शन। कॉल 972-897-1530 और कनेक्ट टू info@firstunitedtexastitle.com।
1: Dallas has its own superheroes, fighting dust, clogs, blocked vents and hidden fire hazards every day. And now, the superheroes of ducts are turning one. Duct Time celebrates its first anniversary in Dallas. For Duct Time services, call Jeetu Patel at 972-877-2500 and book your appointment today for a cleaner, safer and fresher home.
2: क्या आपको बिजनेस खरीदने के लिए लोन चाहिए?
3: कॉल दी SBA लोन एक्सपर्ट्स।
2: क्या आप फ्रेंचाइज शुरू करना चाहते हैं?
3: कॉल दी SBA लोन एक्सपर्ट्स।
2: क्या आपको अपने बिजनेस के लिए वर्किंग कैपिटल की जरूरत है?
3: कॉल दी SBA लोन एक्सपर्ट्स।
2: कंस्ट्रक्शन हो या रेनोवेशन, बिजनेस खरीदना हो या रीफाइनेंस कराना हो, फॉर ऑल योर बिजनेस फाइनेंशियल नीड्स एट द बेस्ट इंटरेस्ट रेट एंड लोएस्ट डाउन पेमेंट, कॉल दी SBA लोन एक्सपर्ट्स एट 817-786-3338। दैट्स 817-786-3338।
4: हो सकता है आपका नेक्स्ट कस्टमर भी आपको ही ढूंढ रहा हो। जॉइन पास या एंड मार्केट योर बिजनेस फॉर फ्री। शोकेस योर डील्स एंड गेट डिस्कवर्ड बाय कस्टमर्स नियर बाय। पास या, बी वेयर योर कस्टमर्स आर लुकिंग।
5: Are you seeking clarity in life? Wondering what destiny has in store for you?
6: हर समस्या का हल है एस्ट्रोलॉजर ईश्वर के पास। 400 साल की फैमिली विजडम के साथ वर्ल्ड फेमस एस्ट्रोलॉजर अब डैलस में।
5: That magic removal हो, love and relationship issues हो, get trusted solutions with 100% privacy.
6: Thousands की लाइफ बदली उनकी डिवाइन गाइडेंस से। Now it's your turn. समस्या का पक्का समाधान एस्ट्रोलॉजर ईश्वर। Call now 945-527-0897 और विजिट astrologerishwar.com.
7: I am so stressed. Credit card bills, unsecured debts. What are we going to do?
8: कुछ भी नहीं। Ura Debt Relief will do it for us.
7: क्या मतलब?
8: Ura can help us save up to 50% on our total debt, and the rest we pay in easy monthly installments.
7: But what if it doesn't work? We cannot afford to lose more money. हम खुद ही मैनेज कर लेंगे।
8: Ura Debt Relief is one of the leading debt settlement companies. They don't charge a single penny until our debt is settled, and they have a 100% money back guarantee. Call तो करो 888-888-9914.
7: अब तो करना ही पड़ेगा मैडम।
9: Don't let debt ruin your life. Visit ura.org or call 888-888-9914 and take control of your financial future.
10: Hi, this is Sharvari. You are listening to Fun Asia Radio.

16 minutes past 10 o'clock, you're listening to 104.9 FM, Funisha Radio, and a very good morning to the DFWK listeners. This is RJ Ramita, and aaj hai Thursday, which means aaj Gup Shup Gali mein thoda sa reverse gear lagne wala hai. Actually, ek question se start karte. Kya koi khushboo, a smell, aapko instantly kisi purani memory mein le jaati hai? बिकॉज मेरे लिए स्कूल के नए सेशन की एक वेरी स्पेसिफिक खुशबू थी नए किताबों की. नए टेक्स्ट बुक्स घर आते थे, ब्राउन पेपर से कवर हो रहे हैं, ऊपर वो छोटा सा वाइट लेबल, नेम, क्लास, सेक्शन, सब्जेक्ट, और हैंड राइटिंग अच्छी होनी चाहिए थी बिकॉज बॉस वो पूरे साल रहने वाले हैं ना. और सबसे सैटिस्फाइंग मोमेंट वो था जब फ्रेश नोटबुक के फर्स्ट पेज में हम बेस्ट वाली हैंडराइटिंग से ऑटोमेटिकली कुछ लिखना स्टार्ट कर देते थे. आई मीन डेट परफेक्टली स्ट्रेट, मार्जिन ब्यूटीफुल, पेज नंबर 1, और 3 दिन बाद हैशटैग वही डॉक्टर वाली हैंडराइटिंग. सो आज है थर्सडे, सो आई वांट टू नो एंड गेट बैक टू योर नॉस्टैल्जिया कि स्कूल की कौन सी छोटी सी याद आपको इंस्टेंटली बचपन में ले जाती है. दैट मेमरी दैट ब्रिंग्स आउट ऑल द मोमेंट्स दैट यू हैव स्पेंड ड्यूरिंग योर स्कूल कॉलेज डेज. बड़ी कोई मेमरी नहीं चाहिए, दैट वन स्मॉल डिटेल आज वही क्लिक करेंगे. सो वेलकम टू गपशप गली.

0: कहाँ गया, कहाँ रखा था? सुनो ना, मेरा वो वाला सेट कहाँ है?
1: कौन सा?
0: अरे वो गोल वाला, थोड़ा ट्रेडिशनल, उसमें पोलकी भी है।
1: अरे सारे तो सेम है।
0: नहीं, वो श्री कृष्णा से जो लिया था ना हमने, ये देखो ये वाला।
1: ओह हाँ, ये तो अलग है।
2: अलग तो होगा ही, श्री कृष्णा ज्वेलर्स से जो है। From timeless gold and radiant diamonds to heritage polkis, discover Texas's largest handcrafted jewelry collection now at Main Street in Frisco. Shri Krishna Jewelers, crafted for moments that matter. Visit shrikrishna.com.
3: वीकेंड का प्लान अभी तक नहीं बना? बस 90 मिनट्स नॉर्थ ऑफ डैलस चौकटाव कैसीनो एंड रिसॉर्ट ड्यूरेंट में हर विजिट बन जाता है एक विनिंग एक्सपीरियंस। पोकर हो या ब्लैक जैक, एक्साइटिंग स्लॉट्स हो या फिर 20 अमेजिंग रेस्टोरेंट्स में जबरदस्त डाइनिंग, और अगर ब्रेक चाहिए तो लग्जूरियस स्काई टावर और रिलैक्सिंग स्पा आपका इंतजार कर रहे हैं। तो सिर्फ लकी फील मत कीजिए, लकी बन जाइए। चौकटाव कैसीनो एंड रिसॉर्ट ड्यूरेंट, एंटरटेनमेंट, लग्जरी और एक्साइटमेंट सब एक ही डेस्टिनेशन में। Please play responsibly. Must be 21 years or older to game.
4: Hello, Weekend Lunch Emergency Helpline. How may I help you?
5: Hello, मेरे relatives आ रहे हैं. Everyone's asking lunch में क्या है?
4: Fikar not. We have the perfect solution.
2: The Flavor Lounge in Frisco brings you its all-new weekend lunch buffet. From flavorful Indian favorites to live counters and chef special, 25+ dishes, welcome drink, chaat, appetizers, main course and dessert. Saturday to Sunday, 12 p.m. to 3 p.m. This weekend, let the Flavor Lounge do the cooking.
6: Are you looking for a smarter approach to reducing taxes while building and preserving wealth? My Time Equity, a registered investment advisory firm led by CPA Sudhir Pai, offers active portfolio management, structured notes, tax and financial planning, real estate strategies, AI and late stage pre-IPO opportunities, and other alternative investments. Learn how a personalized strategy can help you pursue your financial goals. Visit mytimeequity.com or call 972-330-2771.
2: My Time Equity is a fee-based registered investment advisory firm. This advertisement is for informational purposes only and does not constitute investment, legal or tax advice. Investing involves risk, including the possible loss of principal.
7: Dude, life mein kuch aisa karna hai jisme main front page pe rahun.
8: Front page ka to pata nahi, but tera page 3 mein hona meri guarantee hai.
7: Kaise?
8: Page 3 eatery?
7: No, not another restaurant again.
8: Dude, it's page 3. Start with the bar, signature cocktails, classic pours, and the food crafted to suit every craving, every appetite.
7: Matlab great food, great drinks, and great company. Yani ki main.
9: Page 3 Eatery. Eat, sip, gossip, repeat.
10: Beta, 95% aaye?
11: Haan, mummy.
10: Good. Ab chaliye, papa, aap apna report card dikhaiye.
12: Mera?
10: Haan. Profit margin, cash flow, tax planning, business goals. सारे अकाउंट्स अपडेटेड?
12: वो
2: स्कूल का रिपोर्ट कार्ड साल में एक बार आता है, बट बिजनेस का रिपोर्ट कार्ड हर महीने। एजी फिनटेक्स हेल्प्स यू अंडरस्टैंड प्रॉफिटेबिलिटी, कैश फ्लो, टैक्स प्लानिंग, बिजनेस ग्रोथ थ्रू बुककीपिंग एंड सीएफओ सर्विसेज। विजिट agfintax.com, कॉल 972-618-8555। एजी फिनटेक्स लेड बाय फोर्ब्स फाइनेंस काउंसिल मेंबर अनिल गांधी। सर्विसेज आर सब्जेक्ट टू इंडिविजुअल एलिजिबिलिटी एंड एप्लीकेबल लॉस, टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
13: व्हेन द अनएक्सपेक्टेड बिकम्स इनेविटेबल, द रियल स्टोरी बिगिंस।
14: इस वन की काली शक्ति, और अगर कोई रात को वन में प्रवेश करता है तो उसकी लाश भी नहीं मिलती।
15: गेट रेडी फॉर अ ब्रांड न्यू एक्शन पैक्ड एक्सपीरियंस फुल ऑफ इमोशन एंड सस्पेंस।
16: एक तरफ है वन देवी और एक तरफ है विकास।
15: द वन फोर्स ऑफ द फॉरेस्ट,
17: अ हिंदी मिथोलॉजिकल फोक थ्रिलर डायरेक्टेड बाय अरुणव कुमार एंड दीपक कुमार मिश्रा। सिजलिंग द बिग स्क्रीन फॉर द फर्स्ट टाइम टुगेदर, सिद्धार्थ मल्होत्रा एंड तमन्ना भाटिया।
18: ऑन 25th September in cinemas near you।

0: You are listening to 104.9 FM Funisha Radio. This is Gup Shup Gully with me, Ramita. और Gup Shup है आज Thursday Nostalgia की. Okay, मुझे बताइए कि स्कूल वाले birthdays किस किस को याद है, जहाँ पे बर्थडे का एक्साइटमेंट केक से पहले स्टार्ट हो जाता था. बिकॉज मैनी स्कूल्स बैक देर इन आर रिस्पेक्टिव दे सी देस इज राइट, लाइक इफ यू आर फ्रॉम इंडिया, पाकिस्तान, व्हाटएवर, अपार्ट फ्रॉम यूएस, आपके स्कूल्स में एक यूनिफॉर्म जरूर होती थी. बस बट आपको आपके बर्थडे पे यूनिफॉर्म नहीं पहननी पड़ती थी, और उससे आपको मिलता है सेलिब्रिटी स्टेटस. आपका सेलिब्रिटी स्टेटस had been activated then. Baki puri class, blue, white, grey, white, whatever uniform you had. Birthday kid enters in full civil dress. Ay hai, alag hi baat thi, alag hi style. Tashan mein rehte the. Aur haath mein rehta tha chocolates ka bara packet. Phir teacher ke saath bhi hum, you know, class to class wo chocolates distribution karna, wo bhi ek event tha. And there was always that negotiation ki ma'am, बेस्ट फ्रेंड को दो दो दे सकते हैं क्या. अगर बर्थडे रिटर्न गिफ्ट का जमाना था तो वो था एक पेंसिल बॉक्स, टाइनी इरेजर, टाइनी रूलर, स्टिकर्स, ये वो. ऑनेस्टली चाइल्डहुड बर्थडेज का बजट छोटा जरूर था, बट एक्साइटमेंट था एक फुल स्केल इवेंट का. आजकल आज आई मीन ऑफिशियली वी हैव रीच दैट एज जहाँ पे हम बोल सकते हैं ना आजकल के बच्चे. सो आजकल किड्स के जो बर्थडेज है वो गॉर्जियस तो डेफिनेटली है. वेन्यूज होते हैं अलग, थीम्स होते हैं, बलून वॉल्स होते हैं, प्रोफेशनल पिक्चर्स होते हैं. बट टेल मी, आपके चाइल्डहुड बर्थडे की वो कौन सी चीज़ है जो आज भी याद है? इट वॉज इट अ केक, नया ड्रेस, स्कूल चॉकलेट्स, या वो एक गिफ्ट जो उस वक्त दुनिया की सबसे वैल्यूएबल चीज़ लगती थी? चलो चलो मेमोरी बॉक्स थोड़ा ओपन कर लेते.
1: मेरी तो एंट्री नहीं हुई है.

You're listening to 104.9 FM Funisha Radio. This is Gupshup Gali with me, Ramita. और आपका बर्थडे अपकमिंग हो या ना हो, आपके ज्वेलरी कलेक्शन का अपग्रेडेशन हर वक्त होना चाहिए, हर सीजनल होना चाहिए. एंड बिकॉज इट्स ऑफिशियली अ न्यू सीजन, जैसे कि इट्स फॉल ईयर, तो यार यही एक्सक्यूज लेके चले जाओ अपने आपको संवारने के लिए. थोड़ा सा आपका जो ज्वेलरी कलेक्शन है उसको अपग्रेड कर लो, बिकॉज श्री कृष्ण ज्वेलर्स इज हियर ऑन द मेन स्ट्रीट इन फ्रिस्को, वेयर दे हैव दिस स्टनिंग हैंडक्राफ्टेड कलेक्शन ऑफ गोल्ड, डायमंड्स एंड स्पेशली पोल कीज. एंड देर आर मेनी मोर थिंग्स विच यू कैन एक्सप्लोर. स्टोर में जाके देखो तो सही, अपने ऊपर ज्वेलरीज सवारो तो सही, देखो अपने आप को आईने में और देखो कितने अच्छे लगोगे अगर आप जाओगे श्री कृष्ण ज्वेलर्स, विच इज अगेन लोकेटेड ऑन मेन स्ट्रीट इन फ्रिस्को, वेयर दे हैव डिजाइंस फॉर एवरी ओकेशन एंड एवरी स्टाइल. सो अगर स्वैग से अपने आप को आईने में देखना है, देन डेफिनेटली श्री कृष्ण ज्वेलर्स इज देयर फॉर यू.

0: Hello, accident claim. Okay, name of the lawyer.
1: उमर ख्वाजा।
2: जब इंश्योरेंस वाले सुनते हैं उमर ख्वाजा का नाम तो वो खुद आ जाते हैं टेंशन में, क्योंकि वो जानते हैं अगर लॉयर उमर है तो नेगोशिएशन का मतलब है कॉम्पनसेशन फुल एंड फाइनल। कॉल अटर्नी उमर ख्वाजा नाउ फॉर अ फ्री कंसल्टेशन एट 833-GET-UMAR और विजिट attorneyumar.com।
3: पनीर मंचूरियन का नाम तो सुना होगा, पर चिली पनीर बाओ कहानी में ट्विस्ट।
4: चिकन टिक्का पुरानी मोहब्बत, बट बुराडा चिकन टिक्का न्यू लव।
3: एंड पिस्ताचियो लैम्प चॉप्स,
4: फुल ऑन फ्लेवर का फ्यूजन।
5: दैट्स फ्यूजन रिपब्लिक इंडियन किचन एंड बार। फैमिलियर इंडियन फ्लेवर्स विद अ फ्यूजन ट्विस्ट। ऑलरेडी लव्ड इन रिचर्डसन, नाउ द फ्लेवर स्टोरी मूव्स टू अर्विंग। एंजॉय एन एवरीडे लंच बफे विद 25 आइटम्स, चाट्स, तंदूर, बिरयानी, फ्यूजन फेवरेट्स एंड प्लेंटी मोर टू डिस्कवर। फ्यूजन रिपब्लिक नाउ एट 8080 वॉल्टन बुलेवार्ड, अर्विंग। फैमिलियर फ्लेवर्स, फैबुलस फ्यूजन।
6: Dallas, are you ready? Jago Times Group of Publications अब आ चुका है डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कई मिलियन फॉलोअर्स के साथ, बोथ इन इंग्लिश एंड उर्दू, लेड बाय द फेमस एंड फियरलेस जर्नलिस्ट राजा जाहिद अख्तर खानजादा, जिन्होंने अपनी कलम से सोशल इनजस्टिस और करप्ट प्रैक्टिसेस के खिलाफ भरपूर आवाज उठाई। डैलस और दुनिया भर की ताजा तरीन खबरों के लिए द जागो टाइम्स अवेलेबल है एक क्लिक पर, thejagotimes.com। फॉर मोर डिटेल्स एंड एडवर्टाइजमेंट कॉन्टेक्ट राजा जाहिद अख्तर खानजादा 6825516500। The Jago Times Commission, Jago Bhi, Jagao Bhi। Exclusive Media Partner, Panacea।
7: यार, बॉस ने फिर से डांट दिया। ट्रैफिक अलग और ऊपर से स्ट्रेस।
8: अरे रिलैक्स, यू नीड अ कूल थेरेपी।
7: थेरेपी? वो तो बहुत महंगी है।
8: नहीं, कूल मतलब कूल चा थेरेपी।
7: ये क्या होता?
8: सिंपल, चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस इन एलन।
9: चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस, सर्विंग सम ऑफ द बेस्ट पंजाबी फूड इन डैलस। फ्रॉम बटरी करीज टू ऑथेंटिक पंजाबी स्ट्रीट फूड फेवरेट्स, स्ट्रेट फ्रॉम शेफ गगन पन्नू'स किचन। सो नेक्स्ट टाइम लाइफ गेट्स स्ट्रेसफुल, जस्ट टेक अ डोज ऑफ कूल चा थेरेपी एट चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस।
10: एंड नाउ एट अ बिगर लोकेशन जस्ट 3 डोर्स डाउन विद लिमिटेड रिजर्वेशन।
11: मैं शादी करूंगी तो करीना वाला डिजाइनर लहंगा पहन के करूंगी, वरना दूल्हे को टाटा बाय बाय कर।
12: अरे मैडम, करीना वाला लहंगा और आपका बजट मैच करेगा क्या?
2: अब करेगा, बिकॉज इंडियन अटायर फ्रिस्को समर सेल इज ऑन। स्टनिंग लहंगास, एलिगेंट साड़ीज, ब्राइडल ज्वेलरी, मेंस एंड किड्स वेयर।
13: इतना सब और प्राइस?
2: अप टू 25% ऑफ ऑन लहंगास एंड ब्राइडल कलेक्शन। समर सेल थ्रू द एंड ऑफ ऑगस्ट, ओनली एट इंडियन अटायर फ्रिस्को। ट्रेडिशनल हो या फ्यूजन, अब हर आउटफिट बोलेगा
14: हुजूर, आपको चुनना होगा हम या ये बिरयानी।
15: बेगम, मोहब्बत अपनी जगह, लेकिन बिरिस्ता की हैदराबादी बिरयानी अपनी जगह।
14: आखिर क्या है इस बिरयानी में?
15: दम में नरमी, मसालों में जादू और हर निवाले में नवाबी स्वाद।
16: Presenting Barista House by Prism Bar and Grill, authentic Hyderabadi flavors and a truly Nawabi experience. North Indian favorites, delicious desserts and many more to explore. Denton's famous Barista House is now in Frisco, 6377 Custer Road, Frisco, Texas.
2: Happy hours Monday through Friday from 3 p.m. to 7 p.m.
16: Barista House, richness of biryani bliss.
17: Hi, I'm Rajkumar Rao and listening to the most popular FM station in the US, 104.9 FM, Fun Asia Radio.

0: You're listening to 104.9 FM, Fun Asia Radio. This is Gupshup Gali with me, Rumita. Chal raha hai Throwback Thursday. Acha, Thursday Throwback ka ek thora sa dangerous nostalgia box kholte hai. School ya college? Us time ka crush. Wo wala crush jiske saath relationship to dur ki baat, proper conversation bhi nahi hui thi. Bas, पता होता था कि उसकी क्लास कौन सी है, लंच ब्रेक में कहाँ मिल सकते हैं, असेंबली में किस साइड खड़े हो सकते हैं, और सडनली आपका डेली रूट कंप्लीटली चेंज. अपनी क्लासरूम लेफ्ट में है, लेकिन आप राइट से जा रहे हो बिकॉज उधर से हवा अच्छी आती है. हाँ हाँ, हवा ऑफ कोर्स. और कॉलेज में तो एक एडवांस्ड सिस्टम था, मतलब कैंटीन में फ्रेंड्स के साथ बैठे हो आप एंड द क्रश एंटर्स, इमीडिएटली पोस्चर स्ट्रेट, हेयर चेक, और फ्रेंड को स्लोली बोलना कि देखना मत वो आ रहा है, और जाहिर सी बात है आपके बीएफएफ से दोस्त थे, सीधा घूम के वही देखने का और वही पूछने का, कौन वो ब्लू शर्ट वाला, भाई अनाउंसमेंट भी कर दो आप माइक्रोफोन में. और उस टाइम एक स्माइल मिल गई ना, एक हाई हो गया, या नोट्स मांग लिए, बस पूरा दिन सक्सेसफुल. तो टुडेज थ्रोबैक थर्सडे क्वेश्चन टू यू इज, स्कूल या कॉलेज क्रश की वो कौन सी सिली चीज है जो आपने कभी उनको नोटिस करवाने के लिए की थी, लाइक वो भाई बाल ठीक करवाना, ड्रेस्ड अप होना उनके फेवरेट कलर्स में, लाइक एक्स्ट्रा क्लास ज्वाइन करना, काइंड कैंटीन का टाइमिंग चेंज करना, सेम बस स्टॉप अवेल करना, फ्रेंड से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना. मैं आपका नाम बिल्कुल ऑनलाइन नहीं बताऊंगी, घर नहीं तुरवाना, बट मेरे साथ ये गपशप तो चल ही सकता है, राइट?
1: Girl, I still remember the first time I saw you. In your eyes, I saw lights shining bright, and all at once I knew I was gonna love you like no one loved you, like I never loved anyone before.

खैरियत तो बेटा सिर्फ एक ही जन पूछेंगे अगर आप किसी एक्सीडेंट में फंस गए, चाहे वो गाड़ी की हो या किसी ट्रक के साथ हो, या आप गिर गए और वो खैरियत पूछने वाला और कोई नहीं, द लॉ ऑफिसर्स ऑफ ओमर ख्वाजा से अटॉर्नी ओमर ख्वाजा है। क्योंकि उस साइड से जब खैरियत पूछा जाएगा ना, द इंश्योरेंस कंपनीज आई मीन, तब बेटा अटॉर्नी ओमर ख्वाजा विल ओनली फाइट द केस फॉर यू एंड विल मेक श्योर दैट यू गेट द करेक्ट कंपेंसेशन दैट यू डिजर्व, बिकॉज आफ्टर एन एक्सीडेंट इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर यू शुड बी हीलिंग एंड नॉट गेट into the hassle of any insurances or finances. So attorney Omar Khwaja will make sure that the focus is completely on your healing. Rather, he will take care about your compensation. Aur unki sabse khas baat ye hai that you don't need to pay him until he wins your case. So call him at 469-300-5046. That's 469-300-5046. Or simply visit attorney Omar.com.

0: गया, कहाँ रखा था? सुनो ना, मेरा वो वाला सेट कहाँ है?
1: कौन सा?
0: अरे वो गोल वाला, थोड़ा ट्रेडिशनल, उसमें पोलकी भी है।
1: अरे सारे तो सेम है।
0: नहीं, वो श्री कृष्णा से जो लिया था ना हमने, ये ये ये देखो, ये वाला।
1: ओ हाँ, ये तो अलग है।
2: अलग तो होगा ही, श्री कृष्णा ज्वेलर्स से जो है। From timeless gold and radiant diamonds to heritage polkis, discover Texas's largest handcrafted jewelry collection now at Main Street in Frisco. Shri Krishna Jewelers, crafted for moments that matter. Visit shrikrishna.com.
3: Same order again? Same pizza? Same taste? Same story? Time to upgrade your cravings, Alice. Because Fun Pizza Kitchen just dropped a bold new Mexican-inspired menu. And trust us, this is not your regular slice. Fiesta Veggie, Pollo Loco, Senor Cameron, different names, crazy flavors. Once you try these,

0: Your old order might just get ghosted. Fun Pizza Kitchen, new flavors, new obsession.
1: It's true, हम अपनी सद्बुद्धि से बहुत सी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं. But sometimes, even the best need a little guidance. With over 400 years of family tradition, through his extensive knowledge of astrology and palm reading, Pandit Ishwar ji can help you with any difficulty in your personal or professional life. From relationship issues to negative energy removal. Call the most trusted astrologer, Pandit Ishwar ji, 945-527-0897 or visit astrologerishwar.com.
2: जाओ पहले उस आदमी का साइन लेकर आओ जिसने मेरे हाथ पे ये लिख दिया था।
3: साइन मिलना मुश्किल है लेकिन प्लेनो में जबरदस्त खाना उसका सिग्नेचर मिल गया। सिग्नेचर क्विजिन इन प्लेनो, फेमस निहारी, सिजलिंग ग्रिल्स, क्रिस्पी फ्राइड चिकन और माउथ वाटरिंग पराठा रोल्स, और कोई भी सेलिब्रेशन हो तो बैंक्वेट सर्विसेज भी। लोकेटेड एट स्प्रिंग क्रीक एंड आलमा ईस्ट प्लेनो, विजिट signaturecuisine.net। सिग्नेचर क्विजिन, हर टेस्ट पर अपना सिग्नेचर। रेस्टोरेंट चूज करना हो, गूगल रिव्यूज। होटल बुक करना हो, गूगल रिव्यूज। लेकिन बच्चों के डॉक्टर की जब बात आए तो एक ही रिव्यू सबसे इंपॉर्टेंट होता है, माँ का रिव्यू।
4: इसलिए डॉक्टर फरहाद हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड एज अ DFW चाइल्ड मॉम अप्रूव्ड पीडियाट्रिशियन फॉर 4 कंसेक्यूटिव इयर्स, 2023 थ्रू 2026। मीट डॉक्टर निशात फरहाद एट पैशन हेल्थ पीडियाट्रिक्स, सर्विंग फैमिलीज एट फ्रिस्को एंड ऑब्री, स्टार्टिंग एट द एंड ऑफ ऑगस्ट। पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर, बिकॉज एवरी हेल्दी स्माइल बिगिंस विद ट्रस्टेड केयर। कॉल 214-666-6259 एंड शेड्यूल योर अपॉइंटमेंट्स टुडे।
5: अजी सुनते हो, सोच रही थी बेटे की शादी इंडिया में करे।
6: इंडिया में तो यहाँ जो फ्रेंड्स और रिलेटिव्स हैं वो कैसे अटेंड करेंगे?
5: पर यहाँ सारे अरेंजमेंट्स मैनेज करना भी तो कितना मुश्किल होगा।
6: हेलो, तुम डैलस में हो, यहाँ कोई भी इवेंट करना सुपर इजी है, स्पेशली जब वैनेसा इवेंट्स का साथ हो।
5: सच में सब संभालेंगे?
6: अरे सब कुछ, वेडिंग हो, हाउस वार्मिंग, ग्रेजुएशन, यू नेम इट दे डिलीवर। वेन्यू, फोटोग्राफी, हॉस्पिटैलिटी, सब कुछ एक ही जगह। सिग्नेचर इवेंट्स का डेकोर और खाना बाय द रेनॉल्ड बसेरा ग्रैंड ओनली।
4: कॉल हरी बसेरा ऑन 469-442-8770। वैनेसा इवेंट्स, योर सेलिब्रेशन पार्टनर।
7: बिंदास बोलो, बोलो बोलो बोलो बिंदास बोलो।
3: जब गाना बोले बिंदास तो शाम भी होगी बिंदास। जॉइन बंदा बिंदास मारविंदास मंडे से थर्सडे फ्रॉम 5 PM टू 7 PM फॉर म्यूजिक मस्ती और फुल ऑन एंटरटेनमेंट, पावर्ड बाय टेक्सास स्टार रिहैब एंड परफॉर्मेंस सेंटर और हिमालयन बाजार, सिर्फ वनीशा रेडियो पर।
8: Yeah, this is Shakti Kapoor and you guys are listening to me on the Fun Asia Radio.

कदर तो आपकी उस टाइम की भी नहीं है जो है आपके पास, और जब वो टाइम चली जाती है, बीत जाता है वो वक्त, तब आप सोचते हो कि यार वो टाइम ही अच्छा था। वेलकम टू गपशप गली विद मी रमिता, ओनली ऑन 104.9 FM फनी शियार रेडियो, एंड दिस आर अभी वक्त है ऑफ द टाइम मशीन। यू नो वी आर गोइंग टू टाइम ट्रैवल टू अ सर्टेन डेस्टिनेशन और वी विल रिलीव द मेमोरीज। यार जैसे कि आज है थ्रो बैक थर्सडे, सो टाइम मशीन का डेस्टिनेशन है 2006। नो वी आर नॉट गोइंग दैट फार इन द 80s ट्रेंड एनीमोर, उससे थोड़ा बाद हम उसकी बात करेंगे, अबाउट 20 years अगो। एंड प्लीज़ मुझे मत बोलो कि यार अभी आप अपने आप सोच भी रहे हो कि यार 2006 20 साल पहले था। एग्जैक्टली यही थॉट मेरे दिमाग में भी आया कि यार 20 साल हो गए, कैसे कहां से कहां गया ये टाइम। एंड टॉकिंग अबाउट 2006, हाउ कैन आई नॉट टॉक अबाउट द बॉलीवुड एंड व्हाट अ ईयर इट वाज। रंग दे बसंती, फना, क्रिश, कभी अलविदा ना कहना, लगे रहो मुन्ना भाई, डॉन, धूम टू, गोलमाल, फिर हेरा फेरी, और म्यूजिक की क्या ही बात करे। व्हाट ऑसम म्यूजिक दैट ईयर हैड प्रेजेंटेड अस, एंड इमेजिन दी सॉन्ग्स नॉट एज थ्रोबैक बट एज न्यू रिलीजेज राइट नाउ। तो अभी भी मतलब 20 साल पुराने हो सकते हैं ये, बट अभी भी दे फील लाइक सो वेरी फ्रेश एंड न्यू, एंड दैट्स वेयर वी आर गोइंग फॉर दिस आवर। सो DFW, आई वांट टू नो 2006 में आप कहाँ थे, स्कूल में, कॉलेज में, आपकी पहली जॉब लगी थी, आप इंडिया में थे, आप पहली बार US आए, आपकी नई नई शादी हुई है, क्या हुआ था आपके साथ 2006 में। थिंक अबाउट इट, बिकॉज समटाइम्स एक साल है ना, उस साल का साउंड ट्रैक पूरी लाइफ की लोकेशन आपको याद दिला देती है। सो लेट्स एंटर 2006 प्रॉपरली।

You're listening to 104.9 FM Phanisha Radio, and that, ladies and gentlemen, was the last final album of the Jatin Lalit duo. You're listening to Gup Shup Gali, where main, yani ki Ramita, aaj aapko leke ja rahi hai 20 saal piche. And this Chand Sifarish song was not the only one where we were all mad about songs in 2006. Agar gana tab koi bhi pasand aa gaya, to sirf प्लेलिस्ट में वो सेव नहीं होता था. देयर वॉज अ बिगर ऑनर, एंड दैट वॉज रिंगटोन. फोन रिंग्स इन पब्लिक. यस, तब ये पॉसिबल था. ऐसा नहीं है कि एक पर्टिकुलर ब्रांड का वही क्लासिक रिंगटोन अभी आप जो सुनते हो, आपके फोन जब भी रिंग होते हैं या कोई भी कॉल आता है, अब किसी भी कुलीग का फोन बजता है तो वही क्लासिक रिंगटोन आप सुनते हो, क्या करें. बट ज़माना वो अलग था, टाइम वो अलग था, एंड सडनली आपको तब पता चल जाता था कि उस इंसान का अभी ट्रेंडिंग सबसे फेवरेट म्यूजिक कौन सा है. एंड सिर्फ रिंगटोन ही नहीं, कॉलर ट्यून्स, दे वर ऑल्सो द थिंग. रिमेंबर व्हेन समवन कॉल्ड यू एंड इंस्टेड ऑफ नॉर्मल रिंग दे हैड टू लिसन टू द सॉन्ग यू सिलेक्टेड फॉर देम. दैट वॉज कॉन्फिडेंस. आप मुझे कॉल कर रहे हो, पहले मेरा फेवरेट गाना सुनो. दैट वॉज द थिंग. एंड 2000 थिंग हैड दिस मटीरियल एवरीवेयर, चाहे वो जैसे कि थोड़ी देर पहले मैंने प्ले किया, लाइक चांद सिफारिश, या अली, एंड देर वॉर नंबर ऑफ सॉन्ग्स दैट वर देयर चार्टिंग, आई मीन टॉपिंग द चार्ट बस्टर्स. सो हियर इज माई टूडेज मेमरी टेस्ट फॉर यू. आपको अपनी फर्स्ट रिंगटोन या कॉलर ट्यून याद है? अगर याद है तो कॉल करके मुझे बता सकते हो कौन सा है. एंड सिर्फ रिंगटोन ही नहीं, कॉलर ट्यून्स, दे वर ऑल्सो द थिंग. रिमेंबर व्हेन समवन कॉल्ड यू एंड इंस्टेड ऑफ नॉर्मल रिंग दे हैड टू लिसन टू द सॉन्ग यू सिलेक्टेड फॉर देम. दैट वॉज कॉन्फिडेंस. आप मुझे कॉल कर रहे हो, पहले मेरा फेवरेट गाना सुनो. That was the thing, and 2000 thing had this material everywhere. चाहे वो जैसे कि थोड़ी देर पहले मैंने प्ले किया, लाइक चांद सिफारिश, या अली, एंड देर वॉर नंबर ऑफ सॉन्ग्स दैट वर देयर चार्टिंग, आई मीन टॉपिंग द चार्ट बस्टर्स. सो हियर इज माई टूडेज मेमरी टेस्ट फॉर यू. आपको अपनी फर्स्ट रिंग टोन या कॉलर ट्यून याद है? अगर याद है तो कॉल करके मुझे बता सकते हो. Maybe I can take back you to this memory lane and play that song for you. Only on Gup Shup Gali with me, Ramita.

प्यार हो या खुमार हो, अगर आप बीमार हो तो आपका ख्याल आपको ही रखना पड़ेगा, या फिर आप पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दो पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर को, क्योंकि उनकी जो अफोर्डेबल प्राइमरी केयर है एंड द सर्विस दैट दे आर प्रोवाइडिंग विथ अर्न $85 अ मंथ विच इज़ कॉल्ड पैशन हेल्थ डायरेक्ट, जहाँ पे अगर आपके पास कोई भी इंश्योरेंस नहीं है या फिर पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर इज आउट ऑफ योर नेटवर्क, देन यू कैन गेट दैट अफोर्डेबल प्राइमरी केयर विद पैशन हेल्थ डायरेक्ट फॉर जस्ट $85 अ मंथ, जहाँ पे इंक्लूडेड है प्राइमरी केयर, प्रिवेंटिव केयर, मेडिकेशन मैनेजमेंट, टेली हेल्थ और भी बहुत कुछ. और मैं ये बता दूँ दैट दिस इज नॉट अ हेल्थ इंश्योरेंस, यहाँ पे कुछ एलिजिबिलिटी रेस्ट्रिक्शंस अप्लाइड हैं. सो अगर आप को जानना है इससे ज्यादा, देन यू हैव टू कॉल एंड टेक्स्ट देम एंड गेट द इंफॉर्मेशन फुल्ली इन डिटेल्स. सो कॉल देम एट 214-666-6259, दैट्स 214-666-6259, और यू कैन विजिट पैशन हेल्थ physicians.com. और जैसे कि आपको पता ही है, पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर इज लोकेटेड अराउंड द DFW मेट्रोपॉलिटन. सो उनकी जो अर्विंग एंड फ्रिस्को लोकेशन है, इट इज नाउ ओपन फ्रॉम ऑन सैटरडेज एंड संडेज एज वेल. बात हो रही है अबाउट द 2006 एरा, दैट इज आज से 20 साल पहले की बात. तो गाने बैक टू बैक ओनली फ्रॉम 2006, ओनली ऑन गपशप गली विद मी रमिता.

0: तारा।
1: अरे अरे अरे, डैलस के आसमान में इतने सारे तारा नहीं, बिजनेस ओनर्स के लिए तो सिर्फ एक ही तारा काफी है, तारा कमर्शियल एनर्जी। 2002 से टेक्सास के हजारों बिजनेसेस का ट्रस्टेड एनर्जी पार्टनर, होटल्स, गैस स्टेशंस, वेयरहाउसेस, मेडिकल फैसिलिटीज, रिटेल स्टोर्स और ऑफिस बिल्डिंग्स, कॉम्पिटेटिव प्राइसिंग, पर्सनलाइज्ड एनर्जी सॉल्यूशंस और एक्सेप्शनल कस्टमर सर्विस। तारा कमर्शियल एनर्जी, पावरिंग टेक्सास बिजनेसेस फॉर ओवर टू डेकेड्स। कॉल 844-428-2808 और विजिट taraenergy.com टुडे। तारा कमर्शियल एनर्जी, जो आपके बिजनेस को रोशन रखे।
2: अजी सुनते हो?
3: अजी नहीं, एजी सुनते हैं।
4: The OG of tax planning, AG FinTax. सुनेंगे आपके financial concerns, देंगे smart solutions. Every Friday 9:45 AM, only on Funasia Radio.
5: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं।
6: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है।
7: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं, जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं। तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो।
8: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहाँ एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है। करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट।
7: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com।
9: I am so stressed. Credit card bills, unsecured debts. What are we going to do?
10: कुछ भी नहीं, Oura Debt Relief will do it for us.
9: क्या मतलब?
10: Oura can help us save up to 50% on our total debt and the rest we pay in easy monthly installments.
9: But what if it doesn't work? We cannot afford to lose more money. हम खुद ही मैनेज कर लेंगे।
10: Oura Debt Relief is one of the leading debt settlement companies. They don't charge a single penny until our debt is settled and they have a 100% money back guarantee. Call तो करो 888-888-9914.
9: अब तो करना ही पड़ेगा मैडम।
11: Don't let debt ruin your life. Visit Oura.org or call 888-888-9914 and take control of your financial future.
12: It's the time to clock out.
13: And most importantly, it's time to turn up the flame. Introducing Flame Hour at Tandoori Flame, जहाँ तंदूर की स्मोकी खुशबू, सिजलिंग फ्लेवर्स और चटपटे एपेटाइजर्स मेक एन ऑर्डिनरी वीकडे फील लाइक अ डिलीशियस सेलिब्रेशन। एवरी मंडे थ्रू फ्राइडे फ्रॉम 5 to 8 PM, ऑर्डर एनी टू एंट्रीज एंड गेट वन एपेटाइजर एब्सोल्युटली फ्री। ब्रिंग योर फैमिली, फ्रेंड्स एंड योर एपेटाइट। विजिट तंदूरी फ्लेम इन गार्लैंड। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
14: 5 to 8 straight from the heart. Gal Hindi Hindi bol.
15: You know my voice on the radio. Now let me be a voice you can trust in real estate. Main hoon Navneeta Khemka, realtor with Keller Williams Realty. Buying, moving or selling a home? I bring market knowledge, creative marketing and personal commitment to your journey. Because to me, real estate isn't just about properties. It's about you, mere dosto, your possibilities and your new beginnings. Every home has a story. Let's create yours together.
16: Call Namrita Khemka at 347-449-4242.
17: Phone uthaye, number dabaye.
15: 347-449-4242.
18: Sathiya.
1: कुछ आवाजें सिर्फ एंटरटेन करती हैं और एक आवाज आपकी जिंदगी का साउंडट्रैक बन जाती है।
4: वही आवाज लेकर आ रही है एक रेवोल्यूशन।
1: 360 शोज ट्रू पेमेंट प्रेजेंट्स सोनू निगम लाइव इन डैलस।
19: तुमसे मिलके दिल का है।
4: सैटरडे सितंबर 26th 8:30 PM ऑनवर्ड्स एट द क्रेडिट यूनियन ऑफ टेक्सास इवेंट सेंटर एलन।
1: टिकट्स अवेलेबल एट टिकट मास्टर। फॉर मोर इन्फो कॉल 855-360 शोज। एक्सक्लूसिव मीडिया पार्टनर फन एशिया नेटवर्क।
20: इश्क इश्क है, इश्क इश्क ये, इश्क इश्क है।

0: 11:39 AM, you're listening to 104.9 FM Funny Shah Radio. This is Gup Shup Gali with me, Ramita. जहाँ पे अभी चल रहा है टाइम मशीन एंड वी आर एक्चुअली आज से 20 साल पहले. That is in 2006. And 2006 gave us something very interesting. एक मूवी गिफ्ट की थी उस साल ने, विच didn't जस्ट हैव डायलॉग्स और songs. इट गेव अ पॉप कल्चर अ वर्ड. And that was Gandhi Giri. Lage raho Munna bhai. You know, Munna circuit and the idea of handling anger differently. Flowers instead of fights, patience instead of aggression. For a while, Gandhi Giri was everywhere. And honestly, circuit remains one of those characters jiska naam sunte hi voice automatically, wahi voice aa jata hai dimag mein. Bye. So let's do a quick retest. I mean, a quick test rather. Some Bollywood friendships are so iconic कि आप imagine नहीं कर सकते एक मतलब you can't actually imagine any one of those pair. चाहे वो Munna circuit हो, Jay के साथ Veeru हो, Amar के साथ definitely it has to be Prem. तो मुझे बताओ कि आपके लाइफ का सर्किट कौन है, यानी कि वो दोस्त जिसको फुल एक्सप्लेनेशन देने की बिल्कुल जरूरत नहीं है. एक लुक एंड दे ऑलरेडी नो कि आप किस दिशा में जा रहे हो.
1: ए भाई, भाई बहुत खुश लग रहा है भाई. बात क्या है? ए भाई हुआ क्या? ए भाई हुआ क्या? ए भाई बोलना यार, हुआ क्या?
2: कट चप वाले.
1: ए भाई

0: में क्या कोई स्टोरी सुना, स्टार्टिंग से सुना। भाभी को घुमाने के लिए किधर ले गया?
1: अरे किधर मत पूछ, ये पूछ किस में ले गया, किस में?
0: किस में भाई?
1: अरे किसिंग कार में यार।
0: ए भाई साइड कार सुना, कलाकार सुना, बेकार सुना, डकार भी सुना, किसिंग कार क्या होता है?
1: अरे जिसमें किस करते हैं यार।

0: हाँ ड्राइवर ने मिरर में देखा रहेगा कैसा मैनेज किया।
1: अरे ड्राइवर को मैंने 100 का नोट दिखाया, उसको सूसु करने का आइडिया तब आया।
0: अरे भाई तू जीनियस है, फिर क्या हुआ?
1: कभी चूमती इधर कभी चूमती उधर, अरे बोले मेरा मुन्ना इतने साल थे कि थर।
0: ऐसा हो गया भाई।

0: घुमाया।
1: हंडल हंडल लग गया वो।
0: शेर ने किया रोर, वो लपकी मेरी ओर, फिर शेर को मैं बोला ए मामू वंस मोर।
1: अरे भाई शेर को मामू बोल डाला, फिर क्या हुआ?
0: डर से उसने ऐसे मुझको गले लगाया, क्या बताऊं सर के, अरे कितना मजा आया।
1: ऐसा हो गया भाई।
0: हाँ।

0: अगर बटर चिकन बिरयानी पनीर टिक्का और दाल मखनी आपकी पसंदीदा डिनर चॉइसेस है तो समझो आज के डिनर का प्लान हो ही गया, बिकॉज तंदूरी फ्लेम इन गार्लैंड हैज दिस फ्लेम आर विच इज मंडे थ्रू थर्सडे फ्रॉम 5 to 8 PM, जहां पे आपको मिलेगा एक रीजन वहां पे और भी इस ऑफर को अवेल करने का. और ऑफर ये है कि आप ऑर्डर कर सकते हैं एनी टू एंट्रीज एंड यू विल रिसीव एन एपेटाइजर कंप्लीटली मुफ्त. यानी कि फ्लेम आर मंडे थ्रू थर्सडे फ्रॉम 5 to 8 PM वेयर यू ऑर्डर एनी टू एंट्रीज एंड रिसीव वन कंप्लीमेंट्री एपेटाइजर. फॉर डिटेल्स यू कैन विजिट देयर वेबसाइट विच इज tandooriflametx.com. दैट्स tandooriflametx.com. हेड टू तंदूरी फ्लेम विच इज लोकेटेड इन गार्लैंड.
1: मोहब्बतों में मरने वाले भी अजीब हैं. अजीम है हमारी दास्तां जाने मन. फासलों पे रहते हैं लेकिन करीब हैं.
0: यू आर लिसनिंग टू गपशप गली विथ मी रमिता, जहां पे वी आर एक्चुअली इन 2006.

That iconic voice and all your favorite songs are going to come all alive because you need to get ready for an unforgettable night of music. The Revolution Sonu Nigam live in concert, jo ki ho raha hai September 26th ko at 8:30 PM onwards at the Credit Union of Texas Event Center located in Allen. Agar abhi bhi aapne tickets nahi khareedi hai, then head to Ticketmaster and purchase those tickets, yaar. And अगर आपको और भी इंफॉर्मेशन चाहिए, देन कॉल 855-360-SHOWS, दैट इज 855-360-SHOWS. रेवोल्यूशन एंड सोनू निगम लाइव इन कॉन्सर्ट. और इस इवेंट के मीडिया पार्टनर है, रादर एक्सक्लूसिव मीडिया पार्टनर है, फनीशिया नेटवर्क. You're listening to Gup Shup Gali with me, Rimita.

0: Monday to Thursday with hookahs at $15.99 and shots at $4.99 each. Plus, ladies' night and college nights bhi.
1: Visit Mirage Lounge at McKinney Ranch Parkway, cause miracles happen in Mirage.
2: Hello? Accident claim? Okay. Name of the lawyer?
3: उमर ख्वाजा।
4: जब इंश्योरेंस वाले सुनते हैं उमर ख्वाजा का नाम तो वो खुद आ जाते हैं टेंशन में, क्योंकि वो जानते हैं अगर लॉयर उमर है तो नेगोशिएशन का मतलब है कॉम्पनसेशन फुल एंड फाइनल। कॉल अटर्नी उमर ख्वाजा नाउ फॉर अ फ्री कंसल्टेशन एट 833-GET-UMAR और विजिट attorneyumar.com।
5: हो सकता है आपका नेक्स्ट कस्टमर भी आपको ही ढूंढ रहा हो। जॉइन पासिया एंड मार्केट योर बिजनेस फॉर फ्री। शोकेस योर डील्स एंड गेट डिस्कवर्ड बाय कस्टमर्स नियर बाय। पासिया, बी वेयर योर कस्टमर्स आर लुकिंग।
6: डैड, प्रॉपर्टी पेपर्स कहाँ हैं?
7: लैपटॉप में।
6: इन्वेस्टमेंट?
7: गूगल ड्राइव।
6: इंश्योरेंस? पासवर्ड्स?
7: बेटा डोंट वरी, मुझे सब पता है।
6: डैड, वही तो प्रॉब्लम है, सिर्फ आपको पता है।
1: Your family shouldn't have to search for answers when you're not there to give them.
8: Hi, this is Deepti Verma with NRI Wealth. With proper estate planning, protect what you have built and give your family clarity and control.
1: Call 669-243-5799. That's 669-243-5799. Or visit nriwealth.com for a free 15-minute consultation. NRI Wealth. Don't leave a mess. Leave a plan.
9: We need to talk.
10: अब क्या हुआ?
9: Nothing, it's not you.
10: Oh no.
9: It's the distance.
10: Distance? We live 10 minutes apart.
9: Are it's actually not you. It's that driving all the way for my Sal's Hot Chicken.
1: Irving, that long distance relationship is officially over. Sal's Hot Chicken is now in Irving. Your crispy chicken, loaded sandwiches and bold Sal's flavors just got a whole lot closer. Sal's Hot Chicken, Irving. Same obsession, less distance.
11: इंडिया में घर खरीदना हुआ आसान, गृह प्रवेश इंडिया प्रॉपर्टी एक्सपो आ रहा है फ्रिस्को में। अक्टूबर 10th एंड 11th, हैथ रीजेंसी फ्रिस्को, 10 AM टू 8 PM, मुंबई, बैंगलोर, पुणे, चेन्नई, हैदराबाद एंड दिल्ली NCR के टॉप डेवलपर्स से मिलने का एक ही मौका। चूज योर होम फ्रॉम 200 प्लस प्रोजेक्ट, फ्री एंट्री एंड फ्री पार्किंग, एन इवेंट बाय माई स्क्वायर फीट।

पुष्पा झुकेगा नहीं और फनेजिया रुकेगा नहीं। नॉन स्टॉप बॉलीवुड, नॉन स्टॉप स्वैग,

You're listening to 104.9 FM Phanisha Radio. This is Gup Shup Gali with me, Ramita. Abhi aapke jo mental memory ka drawer hai, wo main kholne wali. Because that is that segment that I'm going to dedicate this half an hour that we're going to have this Gup Shup. You know, har ghar mein ek aisa drawer ya box hota tha, या होता है जिसमें थिंग्स दैट लिव्ड लॉन्ग आफ्टर देयर प्रैक्टिकल यूज वॉज ओवर. मतलब एक मूवी टिकट, एक पुराना बर्थडे कार्ड, एक फ्रेंडशिप बैंड, एक स्कूल बैज, एक कॉन्सर्ट स्टब, एक हैंड रिटन नोट या फिर एक सूखा हुआ गुलाब. यू नो, ऑब्जेक्ट की मॉनेटरी वैल्यू शायद ऑलमोस्ट जीरो है, बट इमोशनल वैल्यू यू कांट टच इट. आप उसे छोड़ना ही नहीं चाहते. जैसे कि मैंने कहा ना, जाने नहीं देंगे तुझे. एंड आई फाइंड दैट रियली फैसिनेटिंग बिकॉज समटाइम्स हम चीज नहीं संभालते. वी आर प्रिजर्विंग हु वी वर व्हेन द थिंग एक्चुअली मैटर्ड. सो टुडे आई वांट अ वेरी स्पेसिफिक आंसर फ्रॉम यू गाइज कि आपने अपने ईयर्स से कौन सी वो यूजलेस चीज है जो बहुत ही इमोशनली प्राइसलेस है, बट आपने वो चीज अभी भी संभाल के रखी है. एंड व्हाट्स द स्टोरी बिहाइंड इट. आई विल नॉट बी जजिंग रियली, इवन इफ इट इज अ 22 ईयर ओल्ड मूवी टिकट. एक्चुअली स्पेशली इफ इट इज अ 22 ईयर ओल्ड मूवी टिकट, देन यू हैव माय हार्ट हियर.

You're listening to 104.9 FM Funisha Radio. This is Gupshup Gully with me, Rumita. जहाँ पे आज अभी इस वक्त आप जीत सकते हैं एक फन पिज्जा किचन से $10 गिफ्ट कार्ड. जस्ट ऑल यू हैव टू डू इज टू गेस द नेक्स्ट सॉन्ग दैट आई एम प्लेइंग फ्रॉम द प्रील्यूड. आई नो नॉर्मली हम लोग क्लूज देते हैं टू गेस अ मूवी और वी गिव यू द प्लॉट, बट आज थोड़ा डिफरेंट करने का मन हुआ तो चलो गेस दिस सॉन्ग फ्रॉम जस्ट गेस the song from the prelude that I'm playing right now and you can win this fun pizza kitchen $10 gift card. Studio ka number is 972-235-5555. स्टूडियो का नंबर इज 972-235-5555. कॉल मी एंड लेट मी नो कि ये कौन सा गाना है और अगर आप सही जवाब दे पाए देन यू नो इट्स अ फन पिज्जा किचन $10 गिफ्ट कार्ड. फिलहाल एंजॉय द नेक्स्ट सॉन्ग.

लम्हों और यादों का तो पता नहीं, बट ये जो आंसर है इसके बारे में बहुत लोगों को पता है. आई मीन इस गाने के बारे में बहुत लोगों को पता है कि प्रिल्यूड से ही आप गेस कर लेते हो कि कौन सा गाना है. येस, आई एम गोना प्ले दैट सॉन्ग टू लेट यू नो व्हाट सॉन्ग वाज इट. बट पहले ये बता दूं कि जिन्होंने ये गिव अवे जीता है उनका नाम है ख्वाहिश देसाई. कंग्रेचुलेशंस ख्वाहिश, यू विन दिस $10 गिफ्ट कार्ड फ्रॉम फन पिज्जा किचन. और अगर आप इस वीकेंड किसी गरबा नाइट में जा रहे हो, देन डेफिनेटली यू कैन गो एंड हैव योर क्रेजीएस्ट फ्लेवर्स ऑफ पिज्जाज, बिकॉज फन पिज्जा किचन विल बी ओपन टिल 3 AM फॉर दोज परफेक्ट लेट नाइट आफ्टर गरबा कॉन्सर्ट्स एंड शोज अराउंड द टाइम. सो न्यू फ्लेवर्स, लेट नाइट क्रेविंग्स, एवरीथिंग is sorted. Filhal, the Ghana, that was the question. Let me play it for everyone.

And it's 27 minutes past 12 o'clock. That means it's almost the time for me to wrap up my show today. आज हमने कोई ह्यूज हिस्टोरिकल मोमेंट्स जरूर याद नहीं किए होंगे, बट वी टच डाउन अपॉन दैट नॉस्टैल्जिया, दैट थ्रोबैक्स, एंड यू नो वो रैंडम लिटिल थिंग्स जो पता नहीं कैसे हमारे मेमोरी में परमानेंटली सेव्ड हो गई है. मे बी दैट्स वाई नॉस्टैल्जिया फील्स सो गुड. और लाइफ जब हो रही होती है ना, हमें पता ही नहीं होता है कि कौन सा कंप्लीटली ऑर्डिनरी मोमेंट है या फिर कौन सा फ्यूचर में प्राइसलेस बन जाएगा. सो मे बी आज के ऑर्डिनरी थर्सडे को भी थोड़ा सा आप नोटिस कीजिए. हु नोज, 10 इयर्स लेटर दिस माइट बी वन ऑफ द डेज यू विल मिस. दिस इज आरजे रमिता साइनिंग ऑफ एंड दिस वाज टुडेज थर्सडेज गपशप गली. कल फ्राइडे है, वीकेंड मोड फुल ऑन होगा और 11 बजे से हमारी एग्नी आंट का सेगमेंट विल बी लाइव. सो बी प्रिपेयर्ड अंटिल टुमारो. स्टे हैप्पी, स्टे फोकस्ड. और अगर घर में ओल्ड फोटो एल्बम है, आज रात एक बार जरूर देख लेना.

0: में जाना।
1: लाइफ हो या हेल्थ, कब क्या हो जाए पता नहीं। 13 साल तक टेक्सास प्राइमरी केयर क्लिनिक ने जीता आपका ट्रस्ट, और अब वही ट्रस्टेड केयर अर्जेंट केयर सर्विसेज के साथ नए काइज़ावे लोकेशन पर। लुनॉक्सी मेडिकल, फाउंडेड बाय डॉक्टर मनदीप आचार्य, एडल्ट्स और बच्चों के लिए प्राइमरी केयर, अर्जेंट केयर, एक्सरे, सीटी स्कैन, हार्ट टेस्टिंग और मेड स्पा, सब कुछ एक ही रूफ के नीचे। लुनॉक्सी मेडिकल अर्जेंट केयर, ओपन 7 डेज अ वीक, 8 AM टू 8 PM, वॉक इन एनी टाइम, 9191 काइज़ावे, सुइट 205, फ्रिस्को।
2: यार फेस्टिवल सीजन आ रहा है और मेरी वाइफ ने शॉपिंग लिस्ट भी दे दी है।
3: कितनी लंबी लिस्ट है?
2: बस 2 पेजेस। इंडियन ड्रेसेस, मिठाई, नमकीन और हाँ, एक पूजा मंदिर भी।
3: अरे तो सब कुछ इंडिया से ही मंगवा लो, SFL वर्ल्ड वाइड है ना। इंडिया में आपके डोर स्टेप से सामान पिकअप करके यहाँ सीधा आपके घर डिलीवर करते हैं। पूजा मंदिर हो, झूला हो या फर्नीचर, सामान छोटा हो या बड़ा, ओशन फ्रेट के थ्रू सब शिप हो सकता है।
4: दिस फेस्टिव सीजन इंडिया को अपने और करीब लाएं विद SFL वर्ल्ड वाइड शिपिंग एंड मूविंग सर्विसेज फ्रॉम इंडिया टू द USA एंड वर्ल्ड वाइड। विजिट SFLWorldwide.com।
5: हुजूर, आपको चुनना होगा, हम या ये बिरयानी।
6: बेगम, मोहब्बत अपनी जगह लेकिन बिरिस्ता की हैदराबादी बिरयानी अपनी जगह।
5: आखिर क्या है इस बिरयानी में?
6: दम में नरमी, मसालों में जादू और हर निवाले में नवाबी स्वाद।
7: प्रेजेंटिंग बिरिस्ता हाउस बाय प्रिज्म बार एंड ग्रिल, ऑथेंटिक हैदराबादी फ्लेवर्स एंड अ ट्रूली नवाबी एक्सपीरियंस, नॉर्थ इंडियन फेवरेट्स, डिलीशियस डेजर्ट्स एंड मेनी मोर टू एक्सप्लोर। डेंटन्स फेमस बिरिस्ता हाउस इज नाउ इन फ्रिस्को, 6377 कस्टर रोड, फ्रिस्को, टेक्सास।
1: हैप्पी आवर्स मंडे थ्रू फ्राइडे फ्रॉम 3 PM टू 7 PM।
7: बिरिस्ता हाउस, रिचनेस ऑफ बिरयानी ब्लिस।
8: ब्रेकिंग न्यूज, होम लोन या रिफाइनेंस अब और भी आसान। myfamilyhomeloan.com देता है ट्रांसपेरेंट प्राइसिंग, नो हिडन फीस, नो सरप्राइजेस। और हाँ, सबसे बड़ी खबर, उनका AI पावर्ड प्लेटफॉर्म रियल टाइम रेट्स कंपेयर करता है ताकि आपको मिले बेटर डील्स एंड फास्टर अप्रूवल्स। 15,000 प्लस गूगल रिव्यूज, हजारों फैमिलीज का भरोसा। विजिट myfamilyhomeloan.com और कॉल 4697343338, 4697343338। myfamilyhomeloan.com इज powered by Loan Factory, NMLS 2025289, licensed mortgage broker in Texas. All loans subject to credit approval. Equal housing lender.
9: पनीर मंचूरियन का नाम तो सुना होगा, पर चिली पनीर बाओ कहानी में ट्विस्ट।
10: चिकन टिक्का पुरानी मोहब्बत, बट बुराडा चिकन टिक्का न्यू लव।
9: एंड पिस्ताचियो लैम्प चॉप्स,
10: फुल ऑन फ्लेवर का फ्यूजन।
11: That's Fusion Republic Indian Kitchen and Bar. Familiar Indian flavors with a fusion twist. Already loved in Richardson, now the flavor story moves to Irving. Enjoy an everyday lunch buffet with 25 items. Chaats, tandoor, biryani, fusion favorites and plenty more to discover. Fusion Republic now at 8080 Walton Boulevard, Irving. Familiar flavors, fabulous fusion.
12: शादी ब्याह का कोई मौका हो या कोई त्योहार, खूबसूरत लिबास खुशियों को दुगना कर देता है।
1: हर खुशी में आपके साथ मान्यवर मोहे, ट्रेडिशनल सेलिब्रेशन वेयर फॉर मेन, वुमेन एंड चिल्ड्रन, क्राफ्टेड विद एक्सक्विजिट ब्लेंडेड फैब्रिक्स। मान्यवर मोहे, लोकेटेड ऑन रीजेंट बुलेवार्ड ऑफ 635 ईस्ट इन इरविंग।
13: भूख लगी है या बस कुछ एक्सेप्शनल खाना है?
14: स्ट्रीट स्टाइल चाट्स, रिच अवधी फ्लेवर्स एंड दैट क्लासिक बटर चिकन यू कीप गोइंग बैक टू, ऑल अंडर वन रूफ एट Page 3 Eatery। ऑनेस्टली ये सिर्फ खाना नहीं है, इट्स व्हाट योर मूड इज एक्चुअली क्रेविंग।
1: अ क्विक बाइट, अ परफेक्ट लंच एम्बियंस एंड एन इवनिंग दैट जस्ट फ्लोज इनटू द नाइट। यू डोंट गो जस्ट एनीवेयर, यू गो टू Page 3, हब 121 मैकिनी।
15: When the unexpected becomes inevitable, the real story begins.
16: इस वन की काली शक्ति, और अगर कोई रात को वन में प्रवेश करता है तो उसकी लाश भी नहीं मिलती।
17: Get ready for a brand new action packed experience full of emotion and suspense.
18: एक तरफ है वन देवी और एक तरफ है विकास।
17: The वन, Force of the Forest,
19: a Hindi mythological folk thriller directed by Arunab Kumar and Deepak Kumar Mishra, sizzling the big screen for the first time together, Siddharth Malhotra and Tamanna Bhatia.
17: On 25th September in cinemas near you.

This part of our show is proudly brought to you by AG FinTax, offering trusted tax, accounting, payroll, bookkeeping and business advisory services for individuals and businesses. Call 469-942-9888. I repeat, that's 469-942-9888, or visit agfintechs.com. फन एशिया 104.9 पे आप सुन रहे हैं अपनी होस्ट आयुषी को, और बहुत सारे प्यारे और खूबसूरत ट्रैक्स लेकर के आई हूँ आपके लिए. अपने अगले सेगमेंट में हम शुरू करेंगे टॉप 10 सॉन्ग्स, ट्रेंडिंग सॉन्ग्स ऑफ बॉलीवुड का, जो हमने एक इस वीक से ट्रेंड शुरू किया है. हर थर्सडे आई प्ले द टॉप 10 सॉन्ग्स विच आर लिस्टेड ऑन स्पॉटिफाई एंड अदर प्लेटफॉर्म्स. चलिए, ये रहा अगला गाना आप लोगों के लिए, अ ब्यूटिफुल ट्रैक फ्रॉम द मूवी शेरशाह.

0: जहाँ choices ही choices हैं।
1: Wow, great food, full variety and everyone's happy. Family dinner हो या friends के साथ celebration, make every meal grand at Basera Grand. Basera Grand, come hungry, leave happy together.
2: Are you seeking clarity in life? Wondering what destiny has in store for you?
3: हर समस्या का हल है एस्ट्रोलॉजर ईश्वर के पास 400 साल की फैमिली विजडम के साथ वर्ल्ड फेमस एस्ट्रोलॉजर अब डैलस में
2: दैट मैजिक रिमूवल हो लव एंड रिलेशनशिप इश्यूज हो गेट ट्रस्टेड सॉल्यूशंस विद 100% प्राइवेसी
3: थाउजेंड्स की लाइफ बदली उनकी डिवाइन गाइडेंस से नाउ इट्स योर टर्न समस्या का पक्का समाधान एस्ट्रोलॉजर ईश्वर कॉल नाउ 9455270897 और विजिट astrologerishwar.com
4: कुछ आवाजें सिर्फ एंटरटेन करती हैं और एक आवाज आपकी जिंदगी का साउंडट्रैक बन जाती है
5: वही आवाज लेकर आई है एक रेवोल्यूशन
6: 360 शोज ट्रू पेमेंट प्रेजेंट्स सोनू निगम लाइव इन डैलस
7: तुमसे मिलके दिल का है
5: सैटरडे सितंबर 26th 8:30 PM ऑनवर्ड्स एट द क्रेडिट यूनियन ऑफ टेक्सास इवेंट सेंटर एलन
6: टिकट्स अवेलेबल एट टिकट मास्टर फॉर मोर इन्फो कॉल 855-360 शोज एक्सक्लूसिव मीडिया पार्टनर फन एशिया नेटवर्क
8: जिंदगी के कई रंग फनीशा रेडियो के संग
9: 104.9 FM पे आपका स्वागत है और आप सुन रहे हैं अपनी होस्ट आयुषी को और आज के हमारे इस सेगमेंट में हम आपको लेके जाने वाले हैं कुछ बहुत ही प्यारे और खूबसूरत गानों की तरफ एंड दीज सॉन्ग्स आर द टॉप 10 सॉन्ग ऑफ द वीक अलग अलग फिल्में हैं अलग अलग तरह के गाने हैं कोई फास्ट ट्रैक होगा कोई रोमांटिक होगा कोई हमने बार बार सुना होगा बट लेट्स टेक यू टूवर्ड दिस सेगमेंट वेयर इन वी आर लिसनिंग टू द टॉप 10 सॉन्ग्स ऑफ द वीक एंड ऑन नंबर 10 इज दिस ब्यूटिफुल ट्रैक फ्रॉम द मूवी वॉर 2 ऋतिक रोशन एंड कियारा आडवाणी

अयान मुखर्जी वॉर टू का गाना है नंबर 10 पे. अगस्त में आई थी ये फिल्म एंड इट्स स्टिल ट्रेंडिंग ऑन नंबर 10. बहुत ही प्यारा और खूबसूरत गाना है. एंड इस फिल्म में है ऋतिक रोशन और जूनियर NTR, कियारा आडवाणी, अनिल कपूर, आशुतोष राणा, वरुण बदोला एंड आर्तसम मेहता. तो ये इस फिल्म का गाना लेकर के आए थे हम आपके लिए. और ऐसे बहुत सारे गाने हमने लाइन अप करके रखे हैं जो इस वीक ट्रेंडिंग हैं, और हमारे इस सेगमेंट पे हम उन्हीं गानों को सुन रहे हैं. द ट्रेंडिंग सॉन्ग्स फॉर दिस वीक, द टॉप 10 नंबर्स. ये टॉप 10 नंबर्स पहले आया करते थे MTV पे, याद है? मतलब ऐसे पीछे पीछे पीछे चलता था. तो मुझे एक दिन ऐसे ही लगा कि क्यों ना मैं भी वो टॉप 10 गाने लेकर के आऊँ. हर हफ्ते गानों की ना रेटिंग लिस्ट जो भी है वो बदलती है. सो वाई नॉट गेट दोज ब्यूटिफुल ट्रैक्स फॉर ऑल माई लिसनर्स. तो हमारे थर्सडे के हर सेगमेंट में हम इसको करेंगे आज से. नेक्स्ट है, अगला गाना है एक इंडिपेंडेंट सिंगर का है, उसके बारे में हम बात करेंगे. लेकिन उसके पहले आपको बता देते हैं कि अगर आप you know, for 13 years, Texas Primary Care Clinic has proudly cared for our community. Now growing with a brand new name and a second Frisco location. Introducing Lonoxy Medical. Founded by Dr. Mandeep Acharya, Lonoxy Medical brings primary care, urgent care, in-house lab testing, X-ray, CT scans, cardiac diagnostics and Himalayan MedSpa services. All under one roof. Open 7 days a week from 8 a.m. to 8 p.m. Walk in anytime, no appointment needed. तो चलिए अगले गाने की तरफ लेकर के चलते हैं. Trending on number 9 is an independent song by Anuv Jain. Here's this beautiful track. आपके साथ मैं भी इसको पहली बार सुन रही हूँ शायद.

Here was a beautiful track in the voice of Anuv Jain, and मुझे लगा कि मैंने ये गाना नहीं सुना है. This is the first time. But as usual, जैसे ही गाने के पहले एक डेढ़ मिनट खत्म हुए, and then it was the that Antara, right? Antara, मुखड़ा और अंतरा. तो वो अंतरा था जो हमने Instagram पे सुना है. The song has been trending on Instagram for a while, but yes, we never heard the full song, and that is why I have decided to bring this segment to you, wherein we are doing the top 10 songs of the week every Thursday. मेरे शो के दौरान 12:30 से 2:30 बजे के बीच में हम ऐसे ही 10 ट्रेंडिंग गाने जो इस हफ्ते के हैं वो लेकर के आएंगे, क्योंकि भैया ये गाने हमें इंस्टाग्राम पे ऐसे टूटे टूटे सुनने मिलते हैं एंड हमारा अटेंशन स्पैन भी कम हो रहा है, ऐसा मुझे लगता है. अगर हम पूरा गाना सुने तो ज़्यादा बेटर है. कम से कम पता तो होगा ना कि अनुव जैन ने इस गाने को गाया है, जिनके ऑलमोस्ट 3.81 million subscribers hain. Yes, 3.81 million subscribers on YouTube, and this was a beautiful song. You can go and listen to it again if you want to on YouTube. Apne show ko aage badhate hain aur agle gaane ki taraf chalte hain. Jo agla gaana hai na, this is also an independent song. It's not a movie song, but it's trending on number 8. Sahiba, Aditya Rikhari ki aawaz mein.

अनदर ब्यूटीफुल ट्रैक जो कि मैंने सिर्फ और सिर्फ इंस्टाग्राम पे सुना है और मैंने नहीं सुना है इसको ऐसे यूट्यूब पे आकर के. दिस आई हैव लिसन टू दिस सॉन्ग अ कपल ऑफ टाइम्स, मोर देन दैट इन फैक्ट, बट नॉट द कंप्लीट सॉन्ग. ओब्वियसली इट वॉज the 30 seconds clip or 60 second clips of it on social media, and that's why again I'm saying that we are bringing this top 10 songs of the week for you on Fun Asia 104.9 FM. Mere show mein, matlab aapki host Ayushi ke show mein, har Thursday 12:30 se 2:30 ke beech mein, taki aapko bhi pata rahe ki kya trend kar raha hai bhai. Bas Instagram ka trending nahi, overall trend batayenge hum aapko. चलिए शो को आगे बढ़ाते हैं, अगले गाने की तरफ चलते हैं. लेकिन अगले गाने के पहले आपको बता दें कि अगर आप H1B पे हैं, F1 पे हैं, L1 पे हैं या किसी भी नॉन इमिग्रेंट वीजा पे हैं, एंड इफ यू प्लानिंग योर पाथ टू US परमानेंट रेजिडेंसी, द लॉ ऑफिसर्स ऑफ सीमा मेहता कैन हेल्प. अटर्नी सीमा मेहता एंड हर एक्सपीरियंस टीम स्पेशलाइज एक्सक्लूसिवली इन इमिग्रेशन लॉ, इंक्लूडिंग EB-5 इन्वेस्टर वीजा, Family and Employment Visas, Perm Labor Certification and US Citizenship. For more information on the EB-5 Investor Visa Program, email info@seemamehtalawfirm.com. That's info@seemamehtalawfirm.com. The Law Offices of Seema Mehta. शो को आगे बढ़ाते हैं और अगले गाने की तरफ लेकर के चलते हैं. ये गाना है एक फिल्म से, जी हाँ, बॉलीवुड फिल्म है और फिल्म का नाम है थामा. आयुष्मान एंड रश्मिका की फिल्म है ये, और ये रहा वो गाना जो कि ट्रेंड कर रहा है नंबर 7 पे.

Here was this beautiful track from the movie थामा, और इसमें रश्मिका और आयुष्मान खुराना है, और इस गाने को गाया है मधुबंती बागची ने. सो हियर वाज दिस ब्यूटीफुल ट्रैक जो आपके लेकर के आए थे, विच इज ट्रेंडिंग ऑन नंबर 6 और 7, क्या बोला था मैंने, नंबर 7 पे ट्रेंड कर रहा है ये गाना. ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल सॉन्ग. ऐसे ही कुछ और खूबसूरत गाने लेकर के आ रही है आपके होस्ट, और जानना चाहूंगी कैसा चल रहा है आपका हफ्ता और कैसा लग रहा है आपको ये मेरा सेगमेंट. कॉल करके बताइए 9722355555 पर. और अगले गाने की तरफ जल्दी से लेकर के चलते हैं आपको, क्योंकि ये भी एक बहुत ही प्यारा और खूबसूरत सा गाना है, और इस गाने में है सिद्धार्थ मल्होत्रा और जानवी कपूर. फिल्म का नाम आप बता दीजिए मुझे, देखते हैं कितनों को पता लगता है कि कौन सा गाना है ये, आई मीन कौन सी फिल्म है ये. दिस सॉन्ग इज ट्रेंडिंग ऑन नंबर 6 फॉर द वीक.

0: फिल्म का नाम है परम सुंदरी और सईदा जी ने कॉल करके बिल्कुल सही बताया. थैंक यू फॉर योर कॉल्स. आप सबके कॉल्स आ रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है. एंड आई होप यू लाइकिंग माय शो, जिसमें हम आज टॉप 10 गाने इस हफ्ते के आपके लिए लेकर के आ रहे हैं. आप सुन रहे हैं अपनी होस्ट आयुषी को फनीशा 104.9 FM पे. बार बार आयुषी इसलिए बोलना पड़ता है ना कि कई लोगों को मेरी आवाज़ कभी कभार मीठू जैसी लग जाती है. एंड दैट्स अ बिग कॉम्प्लीमेंट फॉर मी, बिकॉज येस मीठू एंड आई हैव नॉट इवन द सेम यू नो आई से एरिया ऑफ एक्सपर्टीज, ना ही उनकी तरह मैं एक्सपीरियंस्ड हूँ, बट स्टिल लोगों को मेरी आवाज़ उनकी तरह लगती है. मेरे लिए बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है एंड That always makes my day. इसका मतलब है कि मुझे कॉम्प्लीमेंट मिला है आज. फिलहाल वक्त हो रहा है एक छोटे से कमर्शियल ब्रेक का, जल्दी जाइए, वापस आइए, फिर और बहुत सारे गाने आपको अभी सुनाना बाकी है. फनीशा 104.9.
1: डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन.
2: लेकिन आपके डॉक्टर का अपॉइंटमेंट मिलना उससे भी मुश्किल है. एक हफ्ता, 10 दिन, अगले ट्यूसडे.
3: तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख.
4: पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर गिव्स यू डॉक अपॉइंटमेंट्स ऑन द सेम डे विजिट. आज बुखार, आज डॉक्टर. आज इन्फेक्शन, आज डॉक्टर. आज एनुअल चेकअप, आज डॉक्टर. प्लस 30 मिनट्स ऑफ डेडिकेटेड अपॉइंटमेंट टाइम. पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर इन इरविंग, प्लेनो, फ्रिस्को, मकिनी, ऑबरी.
2: विजिट passionhealthphysicians.com और कॉल 214-666-6259.
5: जाओ पहले उस आदमी का साइन लेकर आओ जिसने मेरे हाथ पे ये लिख दिया था.
6: साइन मिलना मुश्किल है, लेकिन प्लेनो में जबरदस्त खाना, उसका सिग्नेचर मिल गया. सिग्नेचर क्विजिन इन प्लेनो, फेमस निहारी, सिजलिंग ग्रिल्स, क्रिस्पी फ्राइड चिकन और माउथ वाटरिंग पराठा रोल्स. और कोई भी सेलिब्रेशन हो तो बैंक्वेट सर्विसेज भी. लोकेटेड एट स्प्रिंग क्रीक एंड आलमा ईस्ट प्लेनो. विजिट signaturecuisine.net. सिग्नेचर क्विजिन, हर टेस्ट पर अपना सिग्नेचर.
7: हेलो, एक्सीडेंट क्लेम. ओके, नेम ऑफ द लॉयर. उमर ख्वाजा.
8: जब इंश्योरेंस वाले सुनते हैं उमर ख्वाजा का नाम, तो वो खुद आ जाते हैं टेंशन में, क्योंकि वो जानते हैं अगर लॉयर उमर है तो नेगोशिएशन का मतलब है कॉम्पनसेशन फुल एंड फाइनल. कॉल अटर्नी उमर ख्वाजा नाउ फॉर अ फ्री कंसल्टेशन एट 833-GET-UMAR और विजिट attorneyumar.com.
9: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं.
10: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है.
11: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं, जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं. तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो.
12: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहाँ एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है. करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट.
11: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com.
13: हेलो, वीकेंड लंच इमरजेंसी हेल्पलाइन, हाउ मे आई हेल्प यू?
14: हेलो, मेरे रिलेटिव्स आ रहे हैं, एवरीवन्स आस्किंग लंच में क्या है.
13: फिकर नॉट, वी हैव द perfect solution.
4: The Flavor Lounge in Frisco brings you its all-new weekend lunch buffet. From flavorful Indian favorites to live counters and chef special, 25-plus dishes, welcome drink, chaat, appetizers, main course and dessert. Saturday to Sunday, 12 p.m. to 3 p.m. This weekend, let the Flavor Lounge do the cooking.
15: I am so stressed. Credit card bills, unsecured debts. What are we going to do?
16: Kuch bhi nahi. Ura Debt Relief will do it for us.
15: Kya matlab?
16: Ura can help us save up to 50% on our total debt and the rest we pay in easy monthly installments.
15: But what if it doesn't work? We cannot afford to lose more money. Hum khud hi manage kar lenge.
16: Ura Debt Relief is one of the leading debt settlement companies. They don't charge a single penny until our debt is settled. And they have a 100% money back guarantee. Call to karo 888-888-9914.
15: Ab to karna hi padega, madam.
17: Don't let debt ruin your life. Visit ura.org or call 888-888-9914 and take control of your financial future.
18: Bindas bolo. बोलो बोलो बोलो बिंदास बोलो.
19: जब गाना बोले बिंदास तो शाम भी होगी बिंदास. जॉइन बंदा बिंदास मार्विन दास मंडे से थर्सडे फ्रॉम 5 PM टू 7 PM फॉर म्यूजिक मस्ती और फुल ऑन एंटरटेनमेंट पावर्ड बाय टेक्सास स्टार रिहैब एंड परफॉर्मेंस सेंटर और हिमालयन बाजार. सिर्फ फनीशा रेडियो पर.
2: हाय, दिस इज श्रद्धा पंडित एंड यू आर ट्यून्ड इन टू फनीशा रेडियो.
0: फनीशिया रेडियो 104.9 FM में फिर से आपका एक बार स्वागत है. आप सुन रहे हैं अपनी होस्ट आयुषी को और आज हम बजा रहे हैं कुछ बहुत ही प्यारे और खूबसूरत गाने जो कि इस वीक के ट्रेंडिंग सॉन्ग्स हैं. सो वी आर डूइंग द टॉप 10 ट्रेंडिंग सॉन्ग्स ऑफ द वीक. एंड अभी तक हमने लिस्ट के आधे गाने प्ले कर लिए हैं. द कमिंग द नेक्स्ट सॉन्ग दैट वुड बी कमिंग अप वुड बी द नंबर 5 सॉन्ग. तो उस गाने पर लेके जाने से पहले आपको बता दें कि भाई ये ट्रेंड हमने शुरू किया है इसलिए क्योंकि यू नो आजकल हमारा अटेंशन स्पैन बहुत कम हो गया है और गानों का भी अटेंशन स्पैन कम हो गया, जो कि होना नहीं चाहिए यार. गाने पूरे रटे होने चाहिए. मतलब रटना मतलब पता है आपको, इसे यू नो बाय हार्ट उसको बोलते हैं रटना हमारी भाषा में. तो वैसे होना चाहिए क्योंकि कल यू नो येस्टरडे आई वॉज प्लेइंग सम सॉन्ग्स एंड दो सॉन्ग्स वर ऑल द लव सॉन्ग्स, ऑल द रोमांटिक नंबर्स ढूंढ ढूंढ के लाई थी मैं और आपने मेरा बहुत ही खूबसूरती से उसमें साथ दिया था. तो उन गानों में ऐसा हो रहा था ना कि 90% ऑफ द जो सॉन्ग्स थे वो 2000 और 90s वाले एरा, 90s नहीं 2000 अर्ली 2000 एरा एंड लेट 90s के थे. एंड जो भी गाने प्ले हो रहे थे उसमें से 70% गाने ऐसे थे जो हमें बिल्कुल जबान पे एक एक बोल याद थे. एंड दैट वाज नॉट माय एक्सपीरियंस, इवन माय लिसनर्स टोल्ड मी द सेम थिंग कि हर गाना याद है और बहुत अच्छे से याद है. बट आजकल के गाने बस चार पंक्तियाँ, वो भी मैं ज़्यादा बोल रही हूँ, शायद दो लाइंस, चार नहीं दो ही लाइंस हमें याद रहती हैं. बट हमें पूरे गाने सुनने से यार बहुत ही प्यारे और खूबसूरत गाने बन रहे हैं आज भी. दे कांट बी द 90s नंबर बट स्टिल दे आर वेरी ब्यूटिफुल सॉन्ग्स. एंड दैट्स डिस्क्लेमर, दैट्स माई ओपिनियन कि 90 वाले दशक के गाने सबसे अच्छे होते हैं. बट अगले गाने की तरफ लेकर के चल रही हूँ. ये गाना भी हमने सुना है. दिस सॉन्ग हैज ऑल्सो बीन टेकन इन द मूवी धुरंधर बट आई एम प्लेइंग दैट वर्जन विच इज ट्रेंडिंग राइट नाउ. एंड दिस वॉज अ इंडिपेंडेंट सॉन्ग दैट वॉज रिलीज्ड 4 months back. जहाँ पे ये पूरा गाना है, रिक्रिएटेड वर्जन है सतेंद्र सरताज, शाश्वत सचदेव और जैस्मिन की आवाज़ में.

PMJ Jewels is now in Frisco, bringing over 60 years of jewelry excellence and timeless Indian craftsmanship. Explore beautiful gold, diamonds and bridal collection for every celebration. Visit PMJ Jewels on Main Street, Frisco, jewelry that tells your story. Heading towards the next number, which is trending on number 4. And this song has come on the list after a couple of months, I would say, क्योंकि ये पिछले हफ्ते के लिस्ट में नहीं था गाना, और फिल्म काफ़ी पुरानी अगर ऐसा कहें तो, बट गाने ने फिर से टॉप 10 में अपनी जगह बना ली है. टेकिंग यू टूवर्ड्स द नेक्स्ट ट्रैक, स्त्री का गाना है ये, स्त्री 2 का गाना है जो आपके लिए मैं अभी लेकर के आ रही हूँ. हियर्स दिस ब्यूटिफुल ट्रैक फॉर ऑल माई लवली लिसनर्स.

0: टेकिंग यू टूवर्ड्स द नेक्स्ट सॉन्ग विच इज ऑन नंबर 3, 21 का ये गाना सितारे।
1: अक्सर तुम्हारे बारे में सोचता, एक खत भी लिखना शुरू किया है, पता नहीं पोस्ट करने की हिम्मत होगी कि नहीं, पर बहुत कुछ लिखना चाहता हूँ।

0: बेटा मुकेश ये अभी 50 साल का है और ये बड़ा बेटा अरुण ये हमेशा 21 का ही रहेगा।
1: Not ready for this.

धुरंधर का गहरा हुआ. दिस इज ट्रेंडिंग ऑन नंबर 2 फॉर द वीक एंड अ ब्यूटीफुल ट्रैक. धुरंधर ने बिल्कुल भी 9 महीने हो गए सुन को आए हुए और इसने अभी तक अपनी जगह बनाई हुई है. एंड द सॉन्ग्स आर रियली ब्यूटीफुल. वी ऑल लव द सॉन्ग्स फ्रॉम दिस मूवी, क्योंकि मुझे ना हर दिन एक ना एक बार धुरंधर के गाने की फरमाइश आ ही जाती है. सो टेकिंग यू टूवर्ड्स द नंबर 1 सॉन्ग ऑफ द वीक, विच इज ऑल्सो फ्रॉम द मूवी धुरंधर. बहुत ही मजेदार सा गाना है, थोड़ा थिरक लीजिए गाड़ी चलाते चलाते इस नंबर पे. नंबर 1 सॉन्ग ऑफ द वीक फ्रॉम द मूवी धुरंधर.

0: The Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
1: In association with Passion Health Primary Care.
2: Are you looking for a smarter approach to reducing taxes while building and preserving wealth? MyTime Equity, a registered investment advisory firm led by CPA Sudhir Pai, offers active portfolio management, structured notes, tax and financial planning, real estate strategies, AI and late-stage pre-IPO opportunities, and other alternative investments. Learn how a personalized strategy can help you pursue your financial goals. Visit MyTimeEquity.com or call 972-330-2771.
3: MyTime Equity is a fee-based registered investment advisory firm. This advertisement is for informational purposes only and does not constitute investment, legal or tax advice. Investing involves risk, including the possible loss of principal.
4: कहाँ गया? कहाँ रखा था? सुनो ना, मेरा वो वाला सेट कहाँ है?
5: कौन सा?
4: अरे वो गोल वाला, थोड़ा ट्रेडिशनल, उसमें पोलकी भी है।
5: अरे सारे तो सेम है।
4: नहीं, वो श्री कृष्णा से जो लिया था ना हमने, ये देखो ये वाला।
5: ओ हाँ, ये तो अलग है।
6: अलग तो होगा ही, श्री कृष्णा ज्वेलर्स से जो हैं। From timeless gold and radiant diamonds to heritage polkis, discover Texas's largest handcrafted jewelry collection, now at Main Street in Frisco. Shri Krishna Jewelers, crafted for moments that matter. Visit shrikrishna.com.
7: क्या आपको बिजनेस खरीदने के लिए लोन चाहिए?
8: कॉल दी SBA लोन एक्सपर्ट्स।
7: क्या आप फ्रेंचाइज शुरू करना चाहते हैं?
8: कॉल दी SBA लोन एक्सपर्ट्स।
7: क्या आपको अपने बिजनेस के लिए वर्किंग कैपिटल की जरूरत है?
8: कॉल दी SBA लोन एक्सपर्ट्स।
7: कंस्ट्रक्शन हो या रेनोवेशन, बिजनेस खरीदना हो या रीफाइनेंस कराना हो, फॉर ऑल योर बिजनेस फाइनेंशियल नीड्स एट द बेस्ट इंटरेस्ट रेट एंड लोएस्ट डाउन पेमेंट, कॉल द SBA लोन एक्सपर्ट्स एट 817-786-3338. दैट्स 817-786-3338.
5: यार बॉस ने फिर से डांट दिया, ट्रैफिक अलग और ऊपर से ये स्ट्रेस।
9: अरे रिलैक्स, यू नीड अ कूल थेरेपी।
5: थेरेपी? वो तो बहुत महंगी है।
9: नहीं, कूल मतलब कूल चा थेरेपी।
5: ये क्या होता?
9: सिंपल, चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस इन एलन।
10: चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस सर्विंग सम ऑफ द बेस्ट पंजाबी फूड इन डैलस, फ्रॉम बटरी करीज टू ऑथेंटिक पंजाबी स्ट्रीट फूड फेवरेट्स, स्ट्रेट फ्रॉम शेफ गगन पन्नू'स किचन। सो नेक्स्ट टाइम लाइफ गेट्स स्ट्रेसफुल, जस्ट टेक अ डोज ऑफ कूल चा थेरेपी एट चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस,
11: एंड नाउ एट अ बिगर लोकेशन जस्ट 3 डोर्स डाउन विद लिमिटेड रिजर्वेशन।
12: मैं शादी करूंगी तो करीना वाला डिजाइनर लहंगा पहन के करूंगी, वरना दूल्हे को टाटा बाय बाय कर।
13: अरे मैडम, करीना वाला लहंगा और आपका बजट मैच करेगा क्या?
14: अब करेगा, बिकॉज इंडियन अटायर फ्रिस्को समर सेल इज ऑन। स्टनिंग लहंगास, एलिगेंट साड़ीज, ब्राइडल ज्वेलरी, मेंस एंड किड्स वेयर।
15: इतना सब और प्राइस?
14: अप टू 25% ऑफ ऑन लहंगास एंड ब्राइडल कलेक्शन, समर सेल थ्रू द एंड ऑफ ऑगस्ट, ओनली एट इंडियन अटायर फ्रिस्को। ट्रेडिशनल हो या फ्यूजन, अब हर आउटफिट बोलेगा
16: पनीर मंचूरियन का नाम तो सुना होगा, पर चिली पनीर बाओ कहानी में ट्विस्ट।
17: चिकन टिक्का पुरानी मोहब्बत, बट बुर्राटा चिकन टिक्का न्यू लव।
16: एंड पिस्ताचियो लैम्प चॉप्स
17: फुल ऑन फ्लेवर का।

0: Fusion.
1: That's Fusion Republic Indian Kitchen and Bar. Familiar Indian flavors with a fusion twist. Already loved in Richardson, now the flavor story moves to Irving. Enjoy an everyday lunch buffet with 25 items. Chaats, tandoor, biryani, fusion favorites and plenty more to discover. Fusion Republic now at 8080 Walton Boulevard, Irving. Familiar flavors, fabulous fusion.
2: When the unexpected becomes inevitable, the real story begins.
3: This one ki kali shakti. और अगर कोई रात को वन में प्रवेश करता है तो उसकी लाश भी नहीं मिलती।
4: Get ready for a brand new action packed experience, full of emotion and suspense.
5: एक तरफ है वन देवी और एक तरफ है विकास।
4: The One, Force of the Forest,
6: a Hindi mythological folk thriller, directed by Arunab Kumar and Deepak Kumar Mishra, sizzling the big screen for the first time together, Siddharth Malhotra and Tamanna Bhatia.
4: On 25th September in cinemas near you.
7: Hi, this is Konkana Sen Sharma and you're listening to me on Fun Asia Radio.
8: The Dill of Dallas. Heart to Heart, Fun Asia.
9: हेलो एंड वेलकम बैक आफ्टर दिस वेरी शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक. आप सुन रहे हैं अपनी होस्ट आयुषी को फन एशिया 104.9 एफएम पर. और आज हमारे साथ स्टूडियो में है होम मॉर्गेज एक्सपर्ट फ्रॉम माय फैमिली होम लोन डॉट कॉम, जो फैमिलीज को होम लोन ऑप्शंस समझाने और होम बाइंग प्रोसेस को सिंपल बनाने में हेल्प करते हैं. आज हम इनसे कुछ कॉमन क्वेश्चंस पूछने वाले हैं जो हर होम बायर के लिए यूजफुल होंगे. हेलो शिफाली, वेलकम टू फन एशिया.
10: गुड आफ्टरनून टू ऑल फन एशिया लिसनर्स, हाउ आर यू ऑल डूइंग?
9: सो हम लोग बहुत अच्छे हैं. हम आपके आपसे कुछ सवाल पूछने वाले हैं टेक्सास होम ओनर्स की तरफ से. अगर उनके घर में इक्विटी है, लेकिन क्या टेक्सास ओनर्स ये पूछ रहे हैं क्या, लेकिन क्या उनको पता है कि इक्विटी को एक्सेस करने के क्या ऑप्शंस हैं? आप बता सकती हैं?
10: श्योर. मी फॉर होम ओनर्स, फॉर प्राइमरी रेसिडेंस के लिए दो कॉमन ऑप्शंस है, जो है हीलॉक एंड ही लोन. HELOC is a line of credit and HELOAN is like a second lien loan. So, दोनों में difference क्या होता है? HELOC जो है वो एक credit line की तरह काम आता है, जो आपके home से secured होता है, जो आपके home में जो equity built in हुई है उसके ऊपर आपको एक credit limit मिलती है, जो either 3-year draw की होती है, 5-year draw की होती है. टर्म उसका डिपेंड ऑन योर सिलेक्शन, 5-year, 10-year, 15-year, 20-year, 30-year ऑप्शन अवेलेबल, बट द ड्रॉ पीरियड इज ईदर 3-year और 5-year. उसका क्या मतलब होता है ड्रॉ पीरियड? ड्रॉ पीरियड इज अ 3-year. फर्स्ट ड्रॉ यूजुअली यू हैव टू ड्रॉ द फुल अमाउंट दैट यू क्वालिफाई फॉर. देन आफ्टर दैट इफ यू पे बैक, लेट्स से यू हैव अ होम इक्विटी लाइन ऑफ क्रेडिट फॉर 100,000 and you draw out first one full amount 100,000 and after few months you paid back 50,000 or x amount of money and you again want it after 1 year, up to 2 years you can withdraw it and put it back, withdraw it and put it back, and you get charged depending on your balance. So that's a HELOC. And now the second option is a HELOAN. HELOAN is like a second fixed loan. You get it on the equity that you have in the home without touching your first mortgage. Aapka first mortgage balance rate kuch bhi touch nahi hota hai. We just do a second fixed loan which is on a fixed rate, and it's just you get a second payment that you have to make it on that loan that you took it out. तो ये दो ऑप्शन है प्राइमरी रेसिडेंस के लिए, जबकि इन्वेस्टमेंट होम के लिए देर इज अ कैश आउट ऑप्शन अवेलेबल ऑल्सो फॉर रेंटल प्रॉपर्टीज इन विच इट्स अ DSCR कैश आउट रेशियो. उसमें वो होता है कि आपकी रेंटल इनकम के बेस पे आपका कैश आउट होता है. सो ये दो ऑप्शन प्राइमरी होम ओनर के लिए है, HELOC एंड HELOAN. एंड फॉर द इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज देर इज अ डिफरेंट ऑप्शन अवेलेबल, cash out basis on the DSCR, or it can also be a HELOAN. But HELOC is only available for primary residents. If you have any questions, you can give me call back at 469-734-3338.
9: Okay, and another question is from the real estate investors. अगर रेंटल प्रॉपर्टी बाय करना है देन ट्रेडिशनल इनकम डॉक्यूमेंट क्वालिफिकेशंस जो है वो उसको डिफिकल्ट बनाता है, तो व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट दैट?
10: डेफिनेटली उनके लिए ऑप्शन होता है DSCR लोन परचेस के लिए भी यूज होता है, जिसका मतलब होता है डेट सर्विस कवरेज रेशियो. सिंपल लैंग्वेज में लेंडर प्राइमरीली प्रॉपर्टी की क्वालिफाइंग रेंटल इनकम यूज करते हैं टू क्वालिफाई द लोन और हाउसिंग एक्सपेंसेस जो उसको सपोर्ट करना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपका रेंट है ऑन द रेंटल प्रॉपर्टी, यू आर रिसीविंग अ मंथली रेंट ऑफ 2500 एंड योर हाउसिंग एक्सपेंस विच इंक्लूड्स योर प्रॉपर्टी एंड टैक्स पेमेंट विच लेट्स टेक इट एन एग्जाम्पल $2000 इज योर हाउसिंग रेशियो सॉरी एक्सपेंस. तो 2500 को 2000 से डिवाइड किया जाता है और आपका जो DSCR जो रेशियो है वो आता है 1.25. उसके बेसिस के ऊपर आप क्वालिफाई होते हो परचेस के लिए. एंड द सेम सिनेरियो कैश आउट रिफाइनेंस में भी लिया जाता है कि अप टू व्हाट वैल्यू, अप टू व्हाट अमाउंट यू कैन क्वालिफाई फॉर द कैश आउट. दीज ऑप्शंस आर अवेलेबल फॉर द इन्वेस्टर्स हु वांट टू ग्रो द रेंटल पोर्टफोलियो विदाउट टचिंग और विदाउट यूजिंग दैट ट्रेडिशनल इनकम टू क्वालिफाई. They can get qualified based on the market value rent and the housing expense. If you have any questions, if you are looking to grow your portfolio in the rental properties, you can call me at 469-734-3338 and we can discuss this scenario.
9: Thank you so much, Shefali, for answering the questions. I hope this will help all our listeners. Thank you for coming on Fun Asia.
10: Thank you.
9: सो ये थी हमारी होम लोन एक्सपर्ट. आप इनको कॉल कर सकते हैं 469-734-3338 पर. इनका वेबसाइट है myfamilyhomeloan.com. चलिए इसी बात पे अपने शो को आगे बढ़ाते हैं और आपको लेकर के चलते हैं बहुत ही प्यारे और खूबसूरत से गाने की तरफ, जो कि है हम सब के फेवरेट सोनू निगम की आवाज में, जो जल्दी ही डैलस आने वाले हैं. पहले गाना सुनिए, फिर इवेंट की डिटेल शेयर करेंगे आपके साथ.

दिस इज वन ऑफ दोज सॉन्ग जिसको हम कहते हैं कि आप गाड़ी में ना खूब चीखे मार के गा सकते हो गाड़ी चलाते वक्त, ड्राइव का माहौल ही बदल जाता है. इफ यू आर अलोन इन द कार, सिंग इट आउट लाउड एंड जस्ट फील द म्यूजिक.

ये तो, और ये गाना जो है ना, मतलब मेरा फेवरेट है यार, सोनू निगम का। अब मुझे लगता है ये वन ऑफ द बेस्ट गाना है। और इस गाने को ना जितना दिल खोल के गा लो, चीखे मार के गा लो, बस इसमें मजा आ जाता है। तो चलिए आपको बता दें दैट सोनू निगम इज कमिंग टू डालस लाइव इन कॉन्सर्ट, एक्सपीरियंस रेवोल्यूशन। इट्स गोइंग टू बी एन अनफॉर्गेटेबल नाइट ऑफ म्यूजिक। ये तो सबको पता है यार, सोनू निगम को जब लाइव गाते हुए सुन लो, और अगर उन्होंने ये गाना गा दिया ना तो मजा ही आ जाएगा। लाइव इसको सुनने का मौका मिल रहा है आपको 26 सितंबर को, September 26 दैट 8:30 PM एट द क्रेडिट यूनियन ऑफ टेक्सास इवेंट सेंटर इन एलन। योर फेवरेट सॉन्ग्स, दैट आइकॉनिक वॉइस, ऑल लाइव। टिकट्स अवेलेबल है टिकट मास्टर पे। और आपको ज्यादा जानकारी चाहिए तो प्लीज कॉल करिए 855-360-SHOWS, SHOWS। रेवोल्यूशन, सोनू निगम लाइव। एक्सक्लूसिव मीडिया पार्टनर है फन एशिया नेटवर्क। तो जाइए जल्दी से टिकट बाय कर लीजिए। किस चीज का इंतजार कर रहे हैं आप लोग? चलिए अगले गाने की तरफ जल्दी से लेकर के चलते हैं। और ये गाना आपको दिलाएगा गिव अवे चंडीगढ़ बाइट्स की तरफ से $10 ऑफ ऑन योर बिल ऑफ $50 और मोर। एंड यू कैन एंजॉय द स्पेशल थाली फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे विद एक्साइटिंग न्यू डिशेज रोटेटिंग डेली। ये है मैकडर्मट ड्राइव पे एलन में, ऑफ मैकडर्मट ड्राइव इन एलन में ये चंडीगढ़ बाइट्स है। और इसका गिव अवे मिलेगा आपको अगर आपने सही जवाब दे दिया। बहुत ही आसान सा सवाल है। गाना प्ले करेंगे और आपको सिर्फ फिल्म का नाम बताना है हमको। तो स्टूडियो का नंबर है 972-235-5555। फिर से बता रहे हैं, इट्स 972-235-5555। कॉल करिए और जवाब दीजिए कि कौन से फिल्म का गाना है ये। फिल्म का नाम बताना है आपको।

फिल्म का नाम है लकी एंड द लकी विनर इज शिवानी सक्सेना. जोरदार तालियां इनके लिए. So Shivani, you get a $10 off on your dining bill of $50 from Chandigarh Bites. Zarur jaiye wahan pe aur unki special thali bhi enjoy kariye from Monday to Friday with exciting new dishes rotating daily for lunch only. And the restaurant is located at off McDermott Drive in Allen. You can also visit ChandigarhBites.com for details. शो को आगे बढ़ाते हैं, मतलब बढ़ाते नहीं हैं, अब शो को बढ़ा ही देते हैं. मतलब हमारे यहाँ ना बिहार में जब दुकान वुकान बंद करनी होती है तो कोई बोलता नहीं है कि दुकान बंद करते हैं, मतलब वो बोलते हैं ना दुकान बढ़ाया जाए. तो वैसे ही हम भी अपना शो बढ़ा रहे हैं आज और बंद कर रहे हैं, मतलब आज का शो ख़त्म करते हैं. बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का जिन्होंने मेरा साथ दिया पिछले 2 घंटे में. एंड वी विल मीट अगेन टुमारो एट from 12:30 to 2:30. This is your host Ayushi signing off for the day. बहुत मज़ा आया आपके साथ, उम्मीद करती हूँ उतना ही मज़ा आपको भी आया होगा. एंड हमारे बाद आएंगी यहाँ पर आफ्टरनून ड्राइव टाइम लेकर के सुनहरी किरण, और बहुत ही प्यारा और खूबसूरत सा शो होता है उनका. सो या वी विल मीट टुमारो अगेन. तब तक के लिए टाटा बाय बाय. एंड साइनिंग ऑफ द डे विथ दिस beautiful, beautiful track.

0: डैड प्रॉपर्टी पेपर्स कहाँ हैं?
1: लैपटॉप में.
0: इन्वेस्टमेंट?
1: गूगल ड्राइव.
0: इंश्योरेंस? पासवर्ड्स?
1: बेटा डोंट वरी, मुझे सब पता है.
0: डैड वही तो प्रॉब्लम है, सिर्फ आपको पता है.
2: Your family shouldn't have to search for answers when you're not there to give them.
3: Hi, this is Deepthi Verma with NRI Wealth. With proper estate planning, protect what you have built and give your family clarity and control.
2: Call 669-243-5799. That's 669-243-5799. Or visit nriwealth.com for a free 15-minute consultation. NRI Wealth. Don't leave a mess. Leave a plan.
4: Aji sunte ho, soch rahi thi bete ki shaadi India mein kare?
5: India mein? तो यहाँ जो फ्रेंड्स और रिलेटिव्स हैं वो कैसे अटेंड करेंगे?
4: पर यहाँ सारे अरेंजमेंट्स मैनेज करना भी तो कितना मुश्किल होगा.
5: हेलो, तुम डैलस में हो, यहाँ कोई भी इवेंट करना सुपर इजी है, स्पेशली जब वैनेसा इवेंट्स का साथ हो.
4: सच में सब संभालेंगे?
5: अरे सब कुछ, वेडिंग हो, हाउस वार्मिंग, ग्रेजुएशन, यू नेम इट, दे डिलीवर. वेन्यू, फोटोग्राफी, हॉस्पिटैलिटी, सब कुछ एक ही जगह. सिग्नेचर इवेंट्स का डेकोर और खाना बाय द रेनॉल्ड बसेरा ग्रैंड ओनली.
2: कॉल हरी बसेरा ऑन 469-442-8770. Vanessa Events, your celebration partner.
6: Want to explore properties in India? You don't need to fly to India. The Gruh Pravesh India Property Expo is coming to Frisco. Meet top developers from Bengaluru, Hyderabad, Mumbai, Pune, Chennai and Delhi NCR. Explore 200 plus projects for your dream home or next investment. October 10th and 11th, Hath Regency Frisco, 10 a.m. to 8 p.m. Free entry, free parking. Gruh Pravesh India Property Expo by My Square Feet.
7: Dude, life में कुछ ऐसा करना है जिसमें मैं फ्रंट पेज पे रहूं.
8: फ्रंट पेज का तो पता नहीं, पर तेरा पेज 3 में होना मेरी गारंटी है.
7: कैसे?
8: पेज 3 ईटरी?
7: नो, नॉट अनदर रेस्टोरेंट अगेन.
8: डूड, इट्स पेज 3. स्टार्ट विद द बार, सिग्नेचर कॉकटेल्स, क्लासिक पोर्ट एंड द फूड क्राफ्टेड टू सूट एवरी क्रेविंग, एवरी एपेटाइट.
7: मतलब ग्रेट फूड, ग्रेट ड्रिंक्स एंड ग्रेट कंपनी, यानी कि मैं.
9: पेज 3 ईटरी, ईट, सिप, गॉसिप, रिपीट.
10: यार फेस्टिवल सीजन आ रहा है और मेरी वाइफ ने शॉपिंग लिस्ट भी दे दी है.
5: कितनी लंबी लिस्ट है?
10: बस 2 पेजेस. इंडियन ड्रेसेस, मिठाई, नमकीन और हाँ, एक पूजा मंदिर भी.
5: अरे तो सब कुछ इंडिया से ही मंगवा लो, SFL वर्ल्डवाइड है ना. इंडिया में आपके डोरस्टेप से सामान पिकअप करके यहाँ सीधा आपके घर डिलीवर करते हैं. पूजा मंदिर हो, झूला हो या फर्नीचर, सामान छोटा हो या बड़ा, ओशन फ्रेट के थ्रू सब शिप हो सकता है.
11: दिस फेस्टिव सीजन इंडिया को अपने और करीब लाएं विद SFL वर्ल्डवाइड. शिपिंग एंड मूविंग सर्विसेज फ्रॉम इंडिया टू द USA एंड वर्ल्डवाइड. विजिट SFLWorldwide.com.
12: अगर किसी चीज को दिल से चाहो
13: तो पहले चेक कर लो उस पे डील है या नहीं.
14: डील कहाँ?
13: सिंपल, पास्या पे. इंट्रोड्यूसिंग पास्या. डिस्कवर एक्साइटिंग डील्स एंड ऑफर्स एट रेस्टोरेंट्स नियर यू राइट नाउ. ओपन पास्या, सी व्हाट्स अराउंड यू, फाइंड अ डील एंड ग्रैब इट बिफोर इट्स गॉन.
14: डाउनलोड पास्या, दैट्स PASYA टुडे, बिकॉज डील्स दूर नहीं, पास है.
15: इस साल तो कमाल हो गया, हमारा रेवेन्यू डबल हो गया.
16: सर अच्छा है, लेकिन आपने टैक्स प्लानिंग किया?
15: नहीं.
16: बुक कीपिंग अपडेटेड है?
15: नहीं.
16: कैश फ्लो फोरकास्ट बनाया?
15: वो भी नहीं.
16: तो पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त.
17: रेवेन्यू देखकर खुश मत होइए. बिजनेस में तब ऑल इज वेल होगा जब हमारे नंबर्स भी स्ट्रांग हो. फॉर योर टैक्स प्लानिंग, बुक कीपिंग एंड CFO सर्विसेज, विजिट agfintax.com. कॉल 972-618-8555. AG FinTax, your growth, our strategy.
18: AG FinTax, led by Forbes Finance Council member Anil Granthi.
19: Services are subject to individual eligibility and applicable laws. Terms and conditions apply.
20: Sadia.
21: कुछ आवाजें सिर्फ एंटरटेन करती हैं और एक आवाज आपकी जिंदगी का साउंडट्रैक बन जाती है.
22: वही आवाज लेकर आ रही है एक रेवोल्यूशन.
23: 360 शोज ट्रू पेमेंट प्रेजेंट्स सोनू निगम लाइव इन डैलस.
24: तुमसे मिलके दिल का है.
22: सैटरडे सितंबर 26th, 8:30 PM ऑनवर्ड्स एट द क्रेडिट यूनियन ऑफ टेक्सास इवेंट सेंटर एलन.
23: टिकट्स अवेलेबल एट टिकट मास्टर. फॉर मोर इन्फो कॉल 855-360-SHOWS. एक्सक्लूसिव मीडिया पार्टनर फन एशिया नेटवर्क. इश्क, इश्क है, इश्क, इश्क ये, इश्क, इश्क है.

वेरी वेरी गुड आफ्टरनून टू द लिसनर्स ऑफ 104.9 एफएम फन एशिया रेडियो. मैं हूं किरण आपके साथ. दिस इज योर आफ्टरनून ड्राइव टाइम विद सुनहरी किरण. थैंक यू सो मच फॉर कनेक्टिंग विद मी दिस आफ्टरनून. और जी आज है थर्सडे, फर्स्ट थर्सडे ऑफ एवरी मंथ. आई ब्रिंग यू फूड जंक्शन, जिसमें हम बात करते हैं मुख्तलिफ मुल्कों की, मुख्तलिफ शहरों की, और वहां जाएं जब हम एज अ टूरिस्ट तो हमें क्या खाना चाहिए, उनके लोकल फेवरेट्स क्या हैं, और साथ ही साथ उनके देसी फेवरेट्स क्या हैं, उनकी डेजर्ट्स क्या हैं, कौन से स्ट्रीट फूड्स हैं जो हमें खाने चाहिए, एंड सो मच मोर दैट आई कवर इन फूड जंक्शन. बट द रेस्ट ऑफ द थर्सडेज ऑफ द मंथ आप ही की फरमाइश पर लेकर आती हूँ वो 90s का बॉलीवुड. और वो 90s के बॉलीवुड में बात करते हैं हम कुछ ऐसी खूबसूरत फिल्मों की, और ऐसे खूबसूरत गानों की, और ऐसे खूबसूरत सितारों की, और डायरेक्टर्स की, और म्यूजिक डायरेक्टर्स की, जिन्होंने 90s को बनाया बॉलीवुड का एक हसीन एरा, जो मैं और आप ऐसे याद करते हैं जैसे बस अभी दिलों पे और दिमाग पे ताज़ा ताज़ा नक्श हैं वो. तो आज लास्ट टाइम मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि 90s के जो हमारा अगला शो होगा उसमें हम बात करेंगे 90s की मैजिकल जोड़ीज के बारे में. तो आज का जो शो है वो होगा कि वो कौन सी जोड़ियां थी जो हमने 90s में देखी, जिन्होंने हमें कुछ पॉपुलर फिल्में दी और कुछ बेहतरीन गाने उन जोड़ियों पे पिक्चराइज हुए. आज का जो ये जोड़ी स्पेशल है, इसमें सबसे पहली जोड़ी 90s की ऑफ कोर्स शाहरुख एंड काजोल. इन्हीं से बिगिन करते हैं. लेट्स वेलकम यू, दिस इज जोड़ी स्पेशल राइट हियर ऑन 90s का बॉलीवुड विद सुनहरी किरण.

जी हाँ, सुन रहे हैं पहली जोड़ी आप, जिसने 1990s में हमें कुछ बेहतरीन फिल्में दी, जैसे कि बाजीगर, करण अर्जुन, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे और कुछ कुछ होता है। उसके बाद भी 2000 से के 2001 में उनकी कभी खुशी कभी गम आई, माय नेम इज खान 2010 में आई, दिलवाले 2015 में। लेकिन चूंकि हम वो 90s के बॉलीवुड की बात कर रहे हैं, इसीलिए आज गाने प्ले होंगे सिर्फ 90s की मूवीज के। बाजीगर फिल्म से हमने शाहरुख और काजोल की जोड़ी को देखा और वहां से जो जर्नी शुरू हुई उनकी, वो फिर दिलवाले दुल्हनिया से लेते हुए, करण अर्जुन दिलवाले दुल्हनिया से लेते हुए कुछ कुछ होता है तक पहुंची, और सारी की सारी थी सुपर डुपर हिट फिल्में। सो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट ये अगले 2-3 गाने में आपके लिए इन खूबसूरत फिल्मों की प्ले करने वाली हूँ जो शाहरुख और काजोल पे पिक्चराइज थी, जिसने हमें दी वन ऑफ द मोस्ट लव्ड रोमांटिक जोड़ीज ऑफ बॉलीवुड इन द 90s। लेकिन अगला गाना प्ले करते हुए आपको बताती चलूं जी कि अगर आपके आप किसी अनफॉर्चुनेटली कार या ट्रक एक्सीडेंट में इन्वॉल्व हैं, या फिर कोई स्लिप और अ फॉल इंसिडेंट हो गया है, तो फिर आपको एक ऐसे अटर्नी की ज़रूरत है जो आपके लिए तमाम पेपर वर्क, लीगैलिटीज, इंश्योरेंस कंपनीज के साथ डील करना, ये सब कुछ हैंडल कर सकें वाइल यू टेक केयर ऑफ योर वेल बींग। एंड दैट अटर्नी इज अटर्नी उमर ख्वाजा। ही विल फाइट योर केस, ही विल गेट यू द बेस्ट कॉम्पनसेशन दैट यू डिजर्व। और जो बेहतरीन बात है वो ये है कि आपको कुछ पे नहीं करना जब तक कि आप अपने केस को जीत नहीं जाते। सो इस स्ट्रेसफुल सिचुएशन में एक विन विन सिचुएशन है आपके लिए। जरूर कॉल कीजिए अटर्नी उमर ख्वाजा को फॉर दैट कंसल्टेशन 469-300-5046 इज द नंबर, या फिर विजिट कीजिए अटर्नी उमर attorneyumar.com। मरियम, दिस वन इज गोइंग आउट टू यू। आपका थोड़ा सा मूड कुछ नासाज सा लगा मुझे जैसे आप बता रही हैं, तो दिस इज टू चेयर यू अप।

जी हाँ, काजोल एक्सप्रेसिव थी, एनर्जेटिक थी, अनप्रडिक्टेबल थी. तो शाहरुख खान चार्मिंग थे, मिस्चीवियस थे, एक्सट्रीमली रोमांटिक थे. और आंखों की तो खैर क्या ही बात करें, उनकी आंखें बोलती थी जब वो रोमांस करते थे. देयर केमिस्ट्री हैड एवरीथिंग. टीजिंग एंड आर्ग्यूमेंट्स एंड फ्रेंडशिप एंड कॉमेडी, इमोशंस, रोमांस, हर चीज. मतलब शाहरुख और काजोल की जोड़ी कभी मैं सोचती हूँ कि हम लोगों को इतनी पसंद क्यों आई, क्यों इट इज कंसिडर्ड वन ऑफ द बेस्ट जोड़ीज इन बॉलीवुड. नॉट बिकॉज ऑफ एनी थिंग बट द फैक्ट दैट दे वर नॉट परफेक्ट. दे वर नॉट द ऑल गुड पॉलिश्ड कपल. दे फॉट, दे टीज विद ईच अदर. हंसाते भी थे, गलतियां भी करते थे एक दूसरे के साथ. मतलब लगता था कि उन दोनों के दरमियान सच में दोस्ती है. और सही कुछ कुछ होता में कहा था उन्होंने कि प्यार दोस्ती है. तो दे फेल्ट वेरी यंग एंड वेरी रिलेटेबल. और इसीलिए शायद वेन वी वर ग्रोइंग अप एंड वी वर इन दैट फेज, वी कुड रियली फील दैट केमिस्ट्री दैट दे वर ओजिंग. कि मतलब कुछ ऐसे आप जनाब ये वो रख रखाव, इससे हटके they were like so comfortable with each other, and maybe that is one of the definitions of love.

और अगर आप ढूंढ रहे हैं कुछ अमेजिंग फ्लेवर्स तो आपको बताऊं जी, पेज 3 ईटरी लोकेटेड एट हब 121 इन मिकिनी इज द प्लेस फॉर यू टू गो टू फाइंड ब्रिलियंट मुंबई एंड लखनऊ फ्लेवर्स. आप एंजॉय कीजिए, वहां पे चाट्स हैं, कबाब्स हैं, स्मोकी तंदूरी डिशेस हैं, बिरयानी, और अगर आपको हैंडक्राफ्टेड ड्रिंक्स पसंद हैं तो सब कुछ मिलेगा आपको पेज 3 ईटरी पे. फैमिली के साथ जाइए, डिनर के लिए जाइए, फ्रेंड्स के साथ जाइए, जो भी आपकी सर्कल है वो सब के सब पेज 3 ईटरी को एंजॉय करने वाले हैं. द एम्बियंस इज ब्यूटिफुल, द प्लेट्स जिस तरह वो सज के आती हैं, आप पहले तो कहते हो जरा थोड़ा सा इंस्टाग्रामेबल प्लेट्स में उनको कहती हूँ, दे आर सो ब्यूटिफुली डन. सो यू आर गोइंग टू हैव अ लॉट ऑफ फन. एंड फॉर ऑल द चेकिंग आउट देयर मेन्यू एंड एवरीथिंग, डू लॉग ऑन टू देयर वेबसाइट विच इज page3eatery.com. That is page3 as in number 3, eatery.com. तो जोड़ी स्पेशल चल रहा है ऑन वो 90s का बॉलीवुड विद सुनहरी किरण में, और जोड़ी स्पेशल में शाहरुख और काजोल की जोड़ी की बात हो रही है. इस गाने के साथ उनकी जोड़ी को रैपअप करेंगे. ब्रेक के बाद लेकर आऊंगी आपके लिए द नेक्स्ट जोड़ी. अगर आप मुझे बताना चाहते हैं कि आपकी पसंद की जोड़ी कौन सी है तो जरूर मुझे कॉल कीजिए. वैसे एक गिव अवे लेकर आ रही हूं बहुत जल्दी आपके लिए, आप ही की पसंद की जोड़ी मालूम करूंगी.

0: अच्छा, मैनिफेस्ट करने से पहले थोड़ा दोबारा सोच लो, क्योंकि अब डायमंड्स में मिल रहा है बाय टू गेट वन फ्री ऑफर। तन्मय ज्वेलर्स इन अर्विंग, डायमंड रिंग्स, पेंडेंट्स, इयररिंग्स और ब्राइडल ज्वेलरी पर बाय टू गेट वन फ्री, और वो भी सब कुछ होलसेल प्राइस पर। चाहे प्रपोजल हो, वेडिंग हो या बस अपनी स्पार्कल अपग्रेड करनी हो, अब शाइन डबल विद इन बजट। लग्जरी ब्रिलियंस सेलिब्रेशन, तन्मय ज्वेलर्स इन अर्विंग।
1: वीकेंड का प्लान अभी तक नहीं बना? बस 90 मिनट्स नॉर्थ ऑफ डैलस, चौकटाव कैसीनो एंड रिसॉर्ट ड्यूरेंट में हर विजिट बन जाता है एक विनिंग एक्सपीरियंस। पोकर हो या ब्लैक जैक, एक्साइटिंग स्लॉट्स हो या फिर 20 अमेजिंग रेस्टोरेंट्स में जबरदस्त डाइनिंग, और अगर ब्रेक चाहिए तो लग्जूरियस स्काई टावर और रिलैक्सिंग स्पा आपका इंतजार कर रहे हैं। तो सिर्फ लकी फील मत कीजिए, लकी बन जाइए। चौकटाव कैसीनो एंड रिसॉर्ट ड्यूरेंट, एंटरटेनमेंट, लग्जरी और एक्साइटमेंट सब एक ही डेस्टिनेशन में। प्लीज प्ले रिस्पॉन्सिबली, मस्ट बी 21 इयर्स और ओल्डर टू गेम।
2: Buying a home comes with a lot of firsts. Your first walkthrough, your first offer, your first, they accepted. But there's one first you definitely don't want. Your first title problem. Before the keys are yours, make sure everything behind them is clear. With First United Texas Title, get the confidence of a smooth title and closing process. So the only surprise at your new home is what the neighbors bring over. First United Texas Title. Close with confidence. Own with peace of mind. Call 972-897-1530 or visit www.firstunitedtexastitle.com.
3: जीनी हुकम मेरे आका, हम आज पार्टी के मूड में हैं। एक ऐसी जगह बताओ जहां मेरी एंट्री ही रॉयल हो।
4: मिराज लाउंज चलिए मेरे आका, लग्जरी लिमोजीन राइड्स आपके इंतजार में हैं।
5: मुझे ज्यादा क्राउड पसंद नहीं।
4: नो प्रॉब्लम आका, लग्जरी प्राइवेट स्पेस भी हाजिर है आपकी प्राइवेट पार्टी के लिए।
5: और एंटरटेनमेंट,
4: मूवी नाइट, बेली डांसिंग नाइट्स, प्रीमियम हुकर्स और अमेजिंग वाइब्स सब आपकी खिदमत में है।
5: वाह जीनी, ये जगह है या कोई जादू?
4: जादू नहीं, मिराज लाउंज एट मिकिनी रेंज पार्कवे। मिरेकल्स हैपन इन मिराज।
6: ये तारा वो तारा हर तारा।
7: अरे अरे अरे, डैलस के आसमान में इतने सारे तारा नहीं। बिजनेस ओनर्स के लिए तो सिर्फ एक ही तारा काफी है, तारा कमर्शियल एनर्जी। 2002 से टेक्सास के हजारों बिजनेसेस का ट्रस्टेड एनर्जी पार्टनर। होटल्स, गैस स्टेशंस, वेयरहाउसेस, मेडिकल फैसिलिटीज, रिटेल स्टोर्स और ऑफिस बिल्डिंग्स, कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग, पर्सनलाइज्ड एनर्जी सॉल्यूशंस और एक्सेप्शनल कस्टमर सर्विस। तारा कमर्शियल एनर्जी, पावरिंग टेक्सास बिजनेसेस फॉर ओवर 2 decades। कॉल 844-428-2808 और विजिट taraenergy.com टुडे। तारा कमर्शियल एनर्जी, जो आपके बिजनेस को रोशन रखे।
8: इट्स ट्रू, हम अपनी सद्बुद्धि से बहुत सी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, बट समटाइम्स इवन द बेस्ट नीड अ लिटिल गाइडेंस। विद ओवर 400 इयर्स ऑफ फैमिली ट्रेडिशन थ्रू हिज एक्सटेंसिव नॉलेज ऑफ एस्ट्रोलॉजी एंड पाम रीडिंग, पंडित ईश्वर जी कैन हेल्प यू विद एनी डिफिकल्टी इन योर पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ, फ्रॉम रिलेशनशिप इश्यूज टू नेगेटिव एनर्जी रिमूवल। कॉल द मोस्ट ट्रस्टेड एस्ट्रोलॉजर पंडित ईश्वर जी, 9455270897 or visit astrologerishwar.com.
9: One mistake doesn't have to define your future. A DWI or DUI charge can bring serious consequences, including license suspension, fines, and even jail time. But you don't have to face it alone. At Mathur Law Offices PC, we provide experienced legal representation in criminal defense matters.

0: matters, including DWI cases.
1: We also assist with related legal issues, including immigration consequences that may arise from criminal charges. Every case is different. The right legal strategy depends on your specific facts and circumstances. Call 214-378-8880. Matro Law Offices PC. Right advice, right defense. Paid spokesperson, Principal Office, Dallas, Texas.
2: When the unexpected becomes inevitable, the real story begins.
3: इस वन की काली शक्ति और अगर कोई रात को वन में प्रवेश करता है तो उसकी लाश भी नहीं मिलती।
2: Get ready for a brand new action packed experience full of emotion and suspense.
4: एक तरफ है वन देवी और एक तरफ है विकास।
2: The वन फोर्स ऑफ द फॉरेस्ट,
5: अ हिंदी मिथोलॉजिकल फोक थ्रिलर डायरेक्टेड बाय अरुणव कुमार एंड दीपक कुमार मिश्रा, सिजलिंग द बिग स्क्रीन फॉर द फर्स्ट टाइम टुगेदर, सिद्धार्थ मल्होत्रा एंड तमन्ना भाटिया।
2: On 25th September in cinemas near you.
6: जुड़ जाओ अपनी धरती से, देसियों का सच्चा रेडियो चैनल फोनेशिया 104.9 FM।

104.9 FM Fun Asia Radio पे tuned in है आप afternoon drive time with Sunehri Kiran में 90s के Bollywood में. आज हम बात कर रहे हैं fantastic fabulous जोड़ीज की जिन्होंने 90s के दिहाई में हमें दिए कुछ outstanding गाने, कुछ outstanding फिल्में. और अब बात कर रहेंगे, of course ये गाना सुन के आपने फौरन पहचान लिया होगा, आमिर खान एंड जूही चावला, वन ऑफ दोज जोड़ीज जिनको हम हमेशा देखना पसंद करते थे, जिन्होंने हमें 90s में कुछ बेहतरीन फिल्में दी. सबसे पहले तो आपको ये बताऊं जी कि इनकी जो वन ऑफ द मोस्ट आप कह लीजिए डिफाइनिंग एंड बिलवड जोड़ीज 90s की शुमार की जाती है, उनके लेजेंडरी डेब्यू के बाद जो कि कयामत से कयामत तक में हुआ, बिल्कुल लेट 80s में, तो उसको मैं 90s में मैंने शुमार करके आपको ये गाना चला दिया, कयामत से कयामत तक. और उसके बाद एफर्टलेसली उनकी जो कह लीजिए के दोस्ती है या जो जोड़ी थी वो उन्होंने कैरी की, दोनों ने वाइब्रेंट स्पार्क्स हमें उनकी जोड़ी में नजर आते थे और पूरे 10 साल हमने उस कमाल को देखा. और जैसे कि 80s की बड़ी आप कह लीजिए पैशनेट और ड्रामेटिक सी जोड़ीज हुआ करती थी, आमिर खान और जूही चावला की जोड़ी बड़ी वंस अगेन थोड़ी सी आपको उसके अंदर इनोसेंस नजर आई, प्लेफुल बैंटर था उनके दरमियान और ब्रिलियंट कॉमिक टाइमिंग थी, दोनों बेहतरीन वो थे. और जूही चावला तो मेरा ख्याल है कि बहुत ही ज्यादा बेहतरीन कॉमेडी करती हैं, तो इसके साथ दे स्टूड आउट एंड देयर रोमांटिक केमिस्ट्री वाज एब्सोल्युटली ब्रिलियंट. तो इस गाने के बाद मैं आपको बताऊंगी, अच्छा फिल्में उन्होंने जैसे हमें दी कयामत से कयामत तक के बाद, तुम मेरे हो, दौलत की जंग, हम है राही प्यार के, आतंक ही आतंक और फिर इश्क. 1997 में इश्क उनकी लास्ट मूवी थी टुगेदर. और क्यों ये जोड़ी टूटी और क्या हुआ उन दोनों के दरमियान, एक छोटा सा किस्सा ये भी है, बट आफ्टर दिस सॉन्ग.

चाहे बात हो टैक्सेस की, अकाउंटिंग की, पेरोल की या बुककीपिंग की, बिजनेस हो या इंडिविजुअल, वी ऑल नीड समवन वी कैन ट्रस्ट, एंड दैट्स वेयर एजी फिनटैक्स कम्स इन. एजी फिनटैक्स ऑफर ट्रस्टेड टैक्स, अकाउंटिंग, पेरोल, बुककीपिंग एज वेल एज बिजनेस एडवाइजरी सर्विसेज, हेल्पिंग इंडिविजुअल्स एंड बिजनेसेस स्टे ऑर्गेनाइज्ड, इन्फॉर्म्ड एंड फाइनेंशियली ऑन ट्रैक. तो अगर आपको फाइनेंसेस के मामले में चाहिए प्रोफेशनल गाइडेंस और रिलायबल सर्विस, तो फिर एजी फिनटैक्स इज वेयर यू नीड टू कॉल. 469-942-9888. 469-942-9888 is the number, या फिर सिंपली विजिट agfintax.com फॉर ऑल द डिटेल्स. एजी फिनटैक्स, योर ट्रस्टेड पार्टनर फॉर टैक्स, अकाउंटिंग एंड बिजनेस सॉल्यूशंस. तो ये तो हुई आपके लिए आपके फाइनेंसिस के हवाले से बात, और अब वापस आते हैं आमिर खान और जूही चावला के फॉल आउट के ऊपर. सो जो इनके दरमियान दोस्ती थी और नॉटीनेस थी और यू नो प्रैंक्स भी ये करते थे, वही चीज जो इनकी केमिस्ट्री को ग्रेट बनाती थी, वही चीज इनके दरमियान दरार का सबब बनी. यानी के वाइल शूटिंग अ प्रैंक सीक्वेंस ऑन द सेट ऑफ इश्क, जो कि 1997 में इनकी आखिरी फिल्म थी एक साथ, आमिर खान वेंट अ बिट टू फार. अभी वो क्या किस्सा है वो मुझे नहीं पता कि क्या हुआ सेट के ऊपर, लेकिन जूही चावला जेन्युइनली अपसेट हो गई आमिर खान के उस एटीट्यूड से या उस बिहेवियर से जो कुछ भी उन्होंने किया. तो एक छोटी सी आर्ग्यूमेंट जो है वो इतना एस्केलेट हो गई कि आमिर खान और जूही चावला ने एक दूसरे पे सेट पे बात करनी बंद कर दी, और उसके बाद मामला, मूवी तो कंप्लीट हो गई लेकिन मामला इतना तूल दिया कि 7 साल तक आमिर खान और जूही चावला ने एक दूसरे से बात नहीं की, और यूं टूटी ये बॉलीवुड की ग्रेटेस्ट ऑन स्क्रीन पार्टनरशिप. फॉर्चुनेटली बहुत सालों बाद उनका पैचअप हो गया. टुडे दे शेयर अ वार्म नॉस्टैल्जिक फ्रेंडशिप दैट रिमेन्स यू नो मेमोरी ऑफ 90s, लेकिन वो जो बात थी वो शायद दोबारा फिर कभी नहीं आई.

जी हाँ, बात हो गई शाहरुख और काजोल की, आमिर और जूही चावला की। अब एक और जोड़ी का जिक्र हम करने वाले हैं जिनके रोमांस ने 1995 में, मुझे तो लगता है, रोमांस ही को रीडिफाइन कर दिया, फैमिली डायनामिक्स को रीडिफाइन कर दिया, रिलेशनशिप्स को रीडिफाइन कर दिया। द सिंप्लिसिटी ऑफ दैट रोमांस, द पैशन ऑफ दैट रोमांस, द अंडरकरंट ऑफ दैट रोमांस वॉज आउटस्टैंडिंग। मैं समझती हूँ कि हम आपके हैं कौन हमेशा एक ऐसी रोमांटिक मूवी रहेगी जो कि रोमांस अंडरकरंट बह रहा था बस, और जब भी सलमान और माधुरी स्क्रीन पर आते थे वो आप कह लीजिए कि रोमांस वुड ऊज आउट ऑफ द स्क्रीन। ये जोड़ी अभी हम अगला तस्करा है हमारा, सलमान और माधुरी दीक्षित। कौन कौन सी फिल्में की इन्होंने एक साथ, ये मैं आपको बताऊंगी। 90s के दौर की बात हो रही है तो 90s ही की फिल्मों को टच किया जाएगा। आपके लिए इस गाने को प्ले करते हुए एक गिव अवे लेके आई हूँ डक टाइम की तरफ से। डक टाइम अपनी पहली एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहे हैं और आपके लिए बहुत सारे ऑप्शंस लेकर आते हैं डक्ट क्लीनिंग की। और हम सभी जानते हैं कि डक्ट क्लीनिंग हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है जी। दिस इज वेयर हेल्थ इज कंसर्न, देर इज़ नो कॉम्प्रोमाइज। डक्ट क्लीनिंग हेल्प्स रिमूव डस्ट, क्लॉग्स को वेंट कर क्लियर करता है, क्लॉग्ड वेंट्स को, और उसके साथ इम्प्रूव करता है एयर फ्लो को, रिड्यूस करता है हिडन फायर हैजर्ड्स को। सो डक्ट टाइम को कॉल कीजिए टू स्केड्यूल योर अपॉइंटमेंट टुडे फॉर अ क्लीनर, सेफर एंड फ्रेशर होम। दैट नंबर जीतू पटेल जी हैं डक्ट टाइम के, जिनको आपको कॉल करना है। उनका नंबर है 972-877-2500 इज जीतू पटेल्स नंबर विद डक्ट टाइम। और डक्ट टाइम लेकर आया है आपके लिए ये 50% ऑफ ऑन ड्रायर वेंट क्लीनिंग। अगर आप ये ड्रायर वेंट क्लीनिंग कराना चाहते हैं, बिकॉज ड्रायर सबसे ज्यादा गंदे होते हैं, हमें पता ही है, क्योंकि इतना हम ड्राई करते हैं कपड़ों को, ऑब्वियसली लॉन्ड्री का हिस्सा होता है। सो ड्रायर वेंट क्लीनिंग को अगर आप 50% ऑफ हासिल करना चाहते हैं तो मुझे कॉल कीजिए। जोड़ीज, द बेस्ट जोड़ीज ऑफ 90s की बात हो रही है, आपके नजदीक 90s की बेस्ट जोड़ी कौन सी है मुझे बताइए, उनका कोई गाना प्यारा सा सजेस्ट कीजिए 972-235-5555। बट इन द मीनवाइल ये गाना भी सुनते चलिए, वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल जोड़ीज ऑफ 90s मूवी, हम आपके हैं कौन।

0: और अजी इसी के साथ हम बढ़ रहे हैं एक छोटी सी ब्रेक की तरफ. थैंक यू सो मच आप सबकी फोन कॉल्स का और अपनी अपनी पसंद की जोड़ियां बताने का. वैसे इस वक्त जो बाजी मारी है, चार लोगों ने मुझे एक ही जोड़ी का जिक्र किया एंड दैट इज करिश्मा एंड गोविंदा. तो एब्सोल्युटली इस ब्रेक के उस बार बात करेंगे करिश्मा और गोविंदा की. और आज के जो हमारे लकी विनर हैं वो हैं स्वप्निल. स्वप्निल कॉन्ग्रेचुलेशंस, जीत लिया है आपने ये गिव अवे. दो दिन का टाइम दीजिए आपका नाम और नंबर पहुंचाने के लिए और उसके बाद डक टाइम को. And they will get back to you. Stay tuned and stay connected.
1: Moments don't fade. They echo like a melody that never leaves you. And in those moments, what you wear becomes a part of that melody. One of the most trusted jewelers with over 40 stores in India is now in Dallas. PMJ Jewels. Timeless craftsmanship, unmatched elegance, and stunning bridal collections. Now in Main Street, Frisco. PMJ Jewels. India's finest. Dallas's newest.
2: Call 857-891-8942 today.
3: शादी ब्याह का कोई मौका हो या कोई त्योहार, खूबसूरत लिबास खुशियों को दुगना कर देता है.
4: हर खुशी में आपके साथ मान्यवर मोहे. ट्रेडिशनल सेलिब्रेशन वेयर फॉर मेन, वुमेन एंड चिल्ड्रन, क्राफ्टेड विद एक्सक्विजिट ब्लेंडेड फैब्रिक्स. मान्यवर मोहे, लोकेटेड ऑन रीजेंट बुलेवार्ड ऑफ 635 ईस्ट इन इरविंग.
5: In one moment, an accident can change everything. When it does, you don't need sympathy, you need strength. Attorney Umar Khawaja, the official injury partner of FunAsia Network, fights to get you every dollar you deserve. No upfront fees, no empty promises, just results. And if you don't win, hey, you don't pay. Call now for your free consultation at 833-GET-OMAR or visit attorneyomar.com. Umar Khawaja, your legal lifeline.
6: We need to talk.
7: अब क्या हुआ?
6: Nothing. It's not you.
7: Oh no.
6: It's the distance.
7: Distance? We live 10 minutes apart.
6: Arey, it's actually not you. It's that driving all the way for my Sal's Hot Chicken.
4: Irving, that long distance relationship is officially over. Sal's Hot Chicken is now in Irving. Your crispy chicken, loaded sandwiches and bold Sal's flavors just got a whole lot closer. Sal's Hot Chicken, Irving. Same obsession, less distance.
8: I am so stressed. Credit card bills, unsecured debts. What are we going to do?
9: कुछ भी नहीं. Oura Debt Relief will do it for us.
8: क्या मतलब?
9: Oura can help us save up to 50% on our total debt, and the rest we pay in easy monthly installments.
8: But what if it doesn't work? We cannot afford to lose more money. हम खुद ही मैनेज कर लेंगे.
9: Oura Debt Relief is one of the leading debt settlement companies. They don't charge a single penny until our debt is settled, and they have a 100% money back guarantee. Call तो करो 888-888-9914.
8: अब तो करना ही पड़ेगा मैडम.
10: Don't let debt ruin your life. Visit oura.org or call 888-888-9914 and take control of your financial future.
6: हुजूर, आपको चुनना होगा, हम या ये बिरयानी.
11: बेगम, मोहब्बत अपनी जगह, लेकिन बिरिस्ता की हैदराबादी बिरयानी अपनी जगह.
6: आखिर आखिर क्या है इस बिरयानी में?
11: दम में नरमी, मसालों में जादू और हर निवाले में नवाबी स्वाद.
12: Presenting Barista House by Prism Bar and Grill. Authentic Hyderabadi flavors and a truly Nawabi experience. North Indian favorites, delicious desserts and many more to explore. Denton's famous Barista House is now in Frisco. 6377 Custer Road, Frisco, Texas.
4: Happy hours, Monday through Friday from 3 p.m. to 7 p.m.
12: Barista House, richness of biryani bliss.
13: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं।
14: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है।
15: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं, जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं। तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो।
16: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहाँ एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है. करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट.
15: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com.
12: एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली, इट्स टाइम टू टर्न अप द फ्लेम. Introducing Flame Hour at Tandoori Flame, जहाँ तंदूर की स्मोकी खुशबू, sizzling flavors और चटपटे appetizers make an ordinary weekday feel like a delicious celebration. Every Monday through Friday from 5 to 8 p.m. Order any two entrees and get one appetizer absolutely free. Bring your family, friends and your appetite. Visit Tandoori Flame in Garland. Terms and conditions apply. It's the time to
17: catch up.
4: What if your next home came fully loaded with over $35,000 in premium appliances, electronics and designer furnishings included? This nearly new home in Cambridge Crossing, Selina first occupied in January, is available as the seller relocates. Enjoy resort-style amenities, upgraded interiors and truly move-in ready. Just bring your suitcase. Buyers agents, get your client under contract by October 15th and earn an additional $2,000 bonus. Call Navneeta Khemka with Keller Williams Realty at 347-449-4242.
2: Every home has a story. Let's create yours together.
17: Bindas bolo. Bolo, bolo, bolo, bindas bolo.
6: Jab gaana bole bindas, to shanti hogi bindas. Join Banda Bindas, Marvin Das, Monday se Thursday from 5 p.m. to 7 p.m. for music, musti or full-on entertainment. Powered by Texas Star Rehab and Performance Center or Himalayan Bazaar. Sirf Anisha Radio par.
18: डालस की धड़कन 104.9 FM फनीजिया रेडियो।

गोविंदा और करिश्मा की जोड़ी तक हम पहुंच गए हैं जी, और आप ही की पसंदीदा जोड़ी है ये, क्योंकि जो गिव अवे में लेके आई थी उसमें सबसे ज्यादा मेंशन की गई जोड़ी वाज गोविंदा एंड करिश्मा। आप सुन रहे हैं जोड़ी स्पेशल ऑफ 90s एंड 90s का बॉलीवुड विद सुनहरी किरण। और जी, करिश्मा और गोविंदा तो जाने जाते थे अपने कॉमिक एक्सप्रेशन के लिए, इनक्रेडिबल डांसिंग, स्पॉन्टेनियस डायलॉग डिलीवरी, ये तो मतलब गोविंदा का खासा है, फिजिकल कॉमेडी, एफर्टलेस चार्म। और करिश्मा का क्या खासा था? एनर्जेटिक डांसिंग, कॉमिक टाइमिंग, एक्सप्रेसिव एक्टिंग और साथ ही साथ ग्लैमर। करिश्मा का सबसे बड़ा खासा था उनकी स्क्रीन प्रेजेंस, द वे शी यूज्ड टू प्रेजेंट हरसेल्फ वाज सो डिफरेंट फ्रॉम जो हमें आदत थी हीरोइंस को देखने की। और जब ये दोनों साथ आए फॉर फिल्म्स लाइक राजा बाबू एंड कुली नंबर वन एंड साजन चले ससुराल एंड हीरो नंबर वन एंड दूल्हे राजा, ये पांच फिल्में 90s में इन्होंने एक साथ की और सारी की सारी फिल्में बनी सुपर हिट। इंटरेस्टिंग थिंग गोविंदा और करिश्मा की ये थी कि किसी ने दूसरे को ओवरशैडो करने की कोशिश नहीं की। आप इनकी फिल्मों को उठा के देख लीजिए, हर जगह पे ऐसा लगता है जैसे बड़ा बैलेंस्ड, गोविंदा भी अपनी जगह बड़े बैलेंस्ड रोल में है और करिश्मा भी बड़े बैलेंस्ड रोल में है। और गोविंदा की तो पर्सनैलिटी की खैर क्या बात है, मगर मुझे ऐसा लगता है कि सबसे ज्यादा गोविंदा को जिस हीरोइन ने बैलेंस किया अपनी फिल्मों में, या आप कह लीजिए कि जिनके साथ टक्कर से टक्कर दी या शाना बशाना खड़ी रही, वो थी करिश्मा कपूर। एंड दैट इज व्हाई दिस जोड़ी इज वन ऑफ द बेस्ट। ना सिर्फ ये कॉमेडी फिल्में और वो जो हैप्पी गो लकी फिल्में होती हैं, गोविंदा ने करिश्मा के साथ एक दो बड़ी सीरियस फिल्में भी की, जिनमें से एक मूवी जिसका मैं अब गाना आपके लिए लगाने वाली हूं, ये मूवी थी खुद्दार, जो कि 1994 में आई थी। तब गोविंदा ने बहुत ज्यादा ऑल आउट कॉमेडी फिल्में करनी शुरू नहीं की थी, एंड आई थिंक मुझे गोविंदा जो सीरियस जैसे खुद्दार उन्होंने की, या फिर उनकी एक फिल्म आई थी शोला और शबनम, आई एब्सोल्युटली लव दैट मूवी, वो तो खैर दिव्या भारती के साथ थी, बट आई थिंक गोविंदा ने शुरू में बड़ी सीरियस और बड़ी अच्छी फिल्में की। दिस इज वन ऑफ द सॉन्ग्स टेकन फ्रॉम द मूवी खुद्दार।

और आगे बढ़ते हुए आपको बताऊं जी कि डॉक्टर शेरिल शमाथिल, जो कि बोर्ड सर्टिफाइड फैमिली मेडिसिन फिजिशियन हैं फ्रॉम पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर, इज नाउ अवेलेबल सैटरडेज फ्रॉम 9 AM टिल 1 PM. जी हाँ, हम कोई तबीयत ख़राब हो या बीमारी हो तो वो वक्त देख कर नहीं आती. वी कैन गेट सिक ऑन वेंसडेज, ऑन वीकेंड्स एज वेल, और स्पेशली अगर हमारे वीक डेज बहुत ज़्यादा बिजी हैं, नहीं मिल रहा टाइम आपको डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लेने का, तो देन डॉक्टर शेरिल शमाथिल इज अवेलेबल सैटरडेज फ्रॉम 9 AM टिल 1 PM ऑन पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर. सो यू नो, चाहे आपका चेकअप हो, प्रिवेंटिव केयर आपने करनी हो, वेट मैनेजमेंट हो, या कोई भी और आपका पर्सनल जाती मसला हो, गेट द केयर यू नीड ऑन योर स्केड्यूल. सो कहाँ पे लोकेटेड हैं ये? अवेलेबल हैं अर्विंग की ब्रांच पे. नंबर एड्रेस आपको बता देती हूँ, 230 ओकॉनर रिज बुलेवार्ड, स्वीट 110, Irving, Texas 75038. इस लोकेशन पे प्राइमरी केयर, पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर की डॉक्टर शेरिल आपके लिए मौजूद रहेंगी सैटरडेज को 9 AM टिल 1 PM. बुक योर अपॉइंटमेंट्स नाउ एंड गेट योर सेल्फ दैट चेकअप जो कि आपको अपनी सेहत के लिए करवाना जरूरी है. फोन नंबर भी आपको देती हूँ, आप कॉल करके उनसे मजीद सवाल कर सकते हैं, अपनी अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं. दैट नंबर इज 214-666-6259. 214-666-6259 is the number for Passion Health Primary Cares. Dr. Cheryl, available for you on Saturdays. अच्छा जी, ये तो हुई ये बात अर्विंग लोकेशन पे, दोबारा से रिपीट कर दूं. अच्छा, ये तो ये बात हम बात कर रहे हैं जोड़ीज ऑफ 90s की, और अब जोड़ीज ऑफ 90 में एक ऐसी जोड़ी की बात होने लगी है जो के सिजलिंग मतलब ऑफकोर्स द लेडी हरसेल्फ वॉज एब्सोल्यूटली सिजलिंग, और जो गाने उन पर कुछ बेहतरीन पिक्चराइज हुए, शी वॉज एनर्जेटिक, शी वॉज माइंड ब्लोइंग, और साथ उनके अक्षय कुमार, मतलब अब अक्षय कुमार और रवीना टंडन की जोड़ी बने, तो आप बताइए कि क्या हमें मिला? बहुत सारे बेहतरीन फिल्में, बहुत सारी बेहतरीन गाने. द जोड़ी स्टार्टेड विद मोहरा, जो कि उनकी पहली फिल्म थी एक दूसरे के साथ, जिसमें अक्षय और रवीना हमें नज़र आए, और मोहरा फिल्म ने हमें दिए कुछ ऐसे गाने जो आज तक हम याद करते हैं. उनके रीमिक्सेस बनते हैं, उनको नए नए तरीके से प्रेजेंट किया जाता है नई जनरेशन के सामने, लेकिन मैं आपको सुना रही हूँ द वेरी ओरिजिनल टिप टिप बरसा पानी. दिस इज अक्षय एंड रवीना.

लेड बाय सीपीए सुधीर पाई माई टाइम एक्विटी आपको ऑफर करते हैं पर्सनलाइज स्ट्रैटेजीज फॉर पोर्टफोलियो मैनेजमेंट. रियल एस्टेट का आपको कोई काम है, ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट आप करना चाहते हैं या रिटायरमेंट प्लानिंग सोच रहे हैं, कनेक्ट विद माई टाइम एक्विटी. कॉल देम 4697021272 इज देयर नंबर, या फिर mytimeequity.com इज वेयर यू नीड टू लॉग ऑन टू फाइंड आउट सो मच मोर दैट इज अवेलेबल ऑन देयर वेबसाइट. तो जी फाइनेंसिस से वापस आते हैं. द जोड़ीज ऑफ 90s पे अक्षय कुमार और रवीना टंडन की फिल्में, जैसे कि दे स्टार्टेड विद मोहरा इन 1994, फिर आई उनकी खिलाड़ियों के खिलाड़ी इन 1996, बारूद 1998 में रिलीज हुई और कीमत एक फिल्म थी वो भी 1998 में रिलीज हुई. मैं आपके लिए उनका करियर का, उनकी जोड़ी का बेहतरीन गाना एक प्ले कर चुकी हूँ. अगर आप रिसर्च करिए तो अक्षय और रवीना के करियर के दो बेहतरीन गाने हैं और वो दोनों इन दोनों के एक दूसरे के साथ ही हैं एज अ जोड़ी. दैट वन वॉज टिप टिप बरसा और अब ये अगला. इसी के साथ हम बढ़ रहे हैं ब्रेक की तरफ. इसके बाद एक और बहुत ही खूबसूरत जोड़ी का तस्करा है. जोड़ियाँ बहुत थी 90s में, बस वक्त थोड़ा कम हो जाता है.

0: आर टेस्टिंग और मेड स्पा सब कुछ एक ही रूफ के नीचे. लुनोक्सी मेडिकल अर्जेंट केयर ओपन 7 डेज अ वीक 8 AM टू 8 PM वॉक इन एनी टाइम 9191 काइजर वे स्वीट 205 फ्रिस्को.
1: कुछ आवाजें सिर्फ एंटरटेन करती हैं और एक आवाज आपकी जिंदगी का साउंडट्रैक बन जाती है.
2: वही आवाज लेकर आ रही है एक रेवोल्यूशन.
0: 360 शोज ट्रू पेमेंट प्रेजेंट्स सोनू निगम लाइव इन डैलस.
3: तुमसे मिलके दिल का है.
2: सैटरडे सितंबर 26th 8:30 PM ऑनवर्ड्स एट द क्रेडिट यूनियन ऑफ टेक्सास इवेंट सेंटर एलन.
0: टिकट्स अवेलेबल एट टिकट मास्टर. फॉर मोर इन्फो कॉल 855-360 शोज. एक्सक्लूसिव मीडिया पार्टनर फन एशिया नेटवर्क.
4: कितने आदमी थे?
5: सरकार पूरा का पूरा डेलिस फनीशिया सुनता है.

90s की आइकॉनिक बॉलीवुड जोड़ीज की बात हो रही हो और शाहरुख और जूही चावला की बात ना हो, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। शाहरुख और काजोल की जोड़ी, आमिर खान और जूही चावला की जोड़ी, लेकिन इनसे हटके एक एक बंदा यहाँ से निकाले तो शाहरुख और जूही की जोड़ी ने भी बहुत ज़्यादा अमेजिंग केमिस्ट्री दी थी हमें 90s के दौर में। सम आउटस्टैंडिंग फिल्म्स आपको मुझे ये बताना है, क्योंकि मैं अगला गाना प्ले कर रही हूँ आपके लिए, मैं आपको नहीं बताऊँगी कि 90s के दौर में शाहरुख और जूही की एक साथ कितनी फिल्में आई थी। एक गाना मैंने आपके लिए उसका प्ले कर दिया, राजू बन गया जेंटलमैन से इन दोनों ने अपनी जोड़ी के करियर का आगाज़ किया था इन 1992। बरिस्ता हाउस की तरफ से आपके लिए एक गिव अवे लेके आई हूँ। बरिस्ता हाउस फ्रिस्को में अब लोकेटेड है जी, ब्रॉट टू यू बाय प्रिज्म बार एंड ग्रिल। दे आर लोकेटेड एट 6377 कस्टर रोड, फ्रिस्को, टेक्सास। और ये वो जगह है जहां आपको मिलेंगी बेहतरीन हैदराबादी बिरयानी, नॉर्थ इंडियन फेवरेट्स और साथ ही साथ बे इंतहा डिलिशियस डिजर्ट्स। आप जरूर विजिट कीजिए बरिस्ता हाउस इन फ्रिस्को एंड चेक आउट व्हाट द हाइप इज ऑल अबाउट। और अब आपके लिए लेकर आई हूँ ये $20 का गिफ्ट कूपन ऑफ योर डाइन इन बिल ओनली। जी हाँ, डाइन इन करेंगे अगर आप वहां जाके तो आपको $20 ऑफ मिलेगा इफ यू आर द विनर ऑफ दिस गिव अवे। तो 90s की कमाल धमाल जोड़ियों की बात हो रही है, इन वो 90s का बॉलीवुड विद सुनहरी किरण। तो आप मुझे बताइए, कॉल करके बात हो रही है आमिर खान, शाहरुख खान और जूही चावला की, 90s के दौर में शाहरुख और जूही की कितनी फिल्में एक साथ रिलीज हुई। अगर आप नाम बता देंगे तो बेहतरीन बात है, लेकिन नंबर तो मुझे डेफिनेटली चाहिए। 9722355555 इज द नंबर टू द स्टूडियो। वी आर ओनली आस्किंग फॉर द मूवीज दैट वर रिलीज्ड इन 90s।

जी हाँ, कहानियों के नगर में तुम्हें लेके जाऊं अगर तुम कहो। यस बॉस से सुन रहे थे आप ये गाना, और सवाल था बरिस्ता हाउस का, ये $20 का गिव अवे था फॉर योर डाइन इन ओनली, एंड यू हैड टू टेल मी कि 90s के डेकेड में शाहरुख खान और जूही चावला के ऊपर कितनी मूवीज रिलीज हुई। तो करेक्ट आंसर आपको बताती चलूं जी, 90s में शाहरुख और जूही चावला ने 5 फिल्में एक साथ की। कुल मिला के अगर आप देखिए तो 7 फिल्में शाहरुख खान और जूही चावला एक साथ कर चुके हैं। दिस जर्नी स्टार्टेड इन 1992 विद द मूवी राजू बन गया जेंटलमैन। उसके बाद 1993 में आई डर, 1995 में आई राम जाने, बहुत सारे लोग राम जाने भूल गए, और 1997 में आई यस बॉस जिसका ये गाना आप सुन रहे थे, और फिर 1998 में आई मूवी डुप्लीकेट जिसमें वो एक बार फिर जूही चावला और साथ सोनाली बेंद्रे भी थी उस फिल्म में। फिर 2000 में रिलीज हुई फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, और 2001 में रिलीज हुई 1, 2 का 4। ये थी द टोटल लिस्ट ऑफ मूवीज जो शाहरुख और जूही चावला ने एक साथ की। और जब इतनी सारी फिल्में हीरो हीरोइन एक साथ करते हैं तो डेफिनेटली ये गारंटी होती है इस बात की कि लोगों को, डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स को मालूम होता है कि इनकी जोड़ी को पसंद किया जा रहा है, ऑडियंस इनको साथ देखना चाहती है, इसीलिए उनको बार बार साथ लाया जाता था। आप सबकी फोन कॉल्स का बहुत बहुत शुक्रिया फॉर पार्टिसिपेटिंग एंड टेलिंग मी, गिविंग मी द राइट आंसर, 5 मूवीज। और हमारी जो आज की, मैं जैसे आपको हमेशा कहती हूँ, मैं विनर डिसाइड नहीं करती जी, मैथ के फॉर्मुले में जिस सीक्वेंस में आप कॉल करते हैं वो नंबर जाता है और आपकी लक आपका विन डिसाइड करती है। और आज की हमारी लकी विनर हैं रिचा गुप्ता। रिचा कंग्रेचुलेशंस, 2 दिन का टाइम दीजिए आपका नाम और नंबर बरिस्ता हाउस पहुंचाने के लिए इन फ्रिस्को, और फिर आपके पास 7 दिन का टाइम होगा टू गो एंड अवेल योर $20 ऑफ डाइन इन ओनली। आई हैव सम ब्यूटीफुल रिक्वेस्ट लाइंड अप। आमिर, शाहरुख और जूही की बात हुई तो फिर डर फिल्म के इस गाने के साथ बढ़ते हैं आगे।

अच्छा, शाहरुख खान और जूही चावला की जो जोड़ी थी, उसकी केमिस्ट्री क्या स्पेशल था? उसकी केमिस्ट्री में दे वर वेरी नेचुरल, मतलब उनका कोई ग्रैंड रोमांस नहीं था कि ऐसा है कि दुनिया इधर से उधर हो रही है रोमांस के पीछे. देयर बैंटर, देयर एक्सप्रेशंस और कॉमिक टाइम उन दोनों की उनको बहुत ज़्यादा प्लीजिंग टू द आइज बना देती थी. और ख़ास तौर पर जैसे शाहरुख और काजोल की जो केमिस्ट्री थी वो बड़ी लार्जर देन लाइफ रोमांस होता था उनका. लेकिन शाहरुख और जूही चावला का जो रोमांस था वो बड़ा प्लेफुल सा था, एवरी डे रिलेटेबल, जैसे हम कहते हैं कि यू नो बॉय एंड गर्ल नेक्स्ट डोर वाली सिचुएशन थी. और इन दोनों का जो सीक्रेट वेपन था, जो मुझे लगता है वो था जूही चावला की बबली पर्सनालिटी और शाहरुख खान की मिस्चीवियस एनर्जी. जब ये दोनों एक साथ मिलते थे तो क्या नजर आता था? एक्सलेंस एज वेल एज केमिस्ट्री.

और एक और जोड़ी जिसने दिए हमें कुछ बेहतरीन गाने और बेहतरीन फिल्में, वो है जी अक्षय कुमार और शिल्पा शेट्टी की इन द 90s. जिस जोड़ी से इस मूवी ने आगाज किया वो थी मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी 1994. देन दे वेंट ऑन टू डू इंसाफ द फाइनल जस्टिस इन 1997. जानवर मूवी इनकी रिलीज हुई 1999 में, और 2000 की बिगिनिंग में इनकी रिलीज हुई थी धड़कन, उसको भी मैं 90s में ही शुमार करके एक गाना आपको उसके आज जरूर प्ले करके सुनाऊंगी. सो लेट्स मूव on to this next beautiful jodi, and this song has always been one romantic anthem.

104.9 FM फाइनेंशियल रेडियो सुन रहे हैं आप। 90s के बॉलीवुड में 90s की आइकॉनिक जोड़ियों की बात हो रही है और मैं हूं किरण आपके साथ। 90s के बॉलीवुड में अक्षय कुमार और शिल्पा शेट्टी की जोड़ी का मतलब था रोमांस एज वेल एज सिजलिंग केमिस्ट्री। मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी से जो इन दोनों ने अपने स्क्रीन पेयरिंग का आगाज किया, जो अभी मैंने गाना आपके लिए प्ले किया चुरा के दिल मेरा, जो बन गया एक रोमांटिक एंथम, एवरीबडी लव्स दैट सॉन्ग। इसके रीमिक्सेस भी बने हैं, लेकिन जो ओरिजिनल की बात थी, जो केमिस्ट्री थी इन दोनों की, वो बीच की सेटिंग, वो डांस, वो मूव्स, दैट इज जस्ट अनबिलीवेबल। उसके बाद इंसाफ और जानवर भी 90s में इन दोनों ने एक साथ की। सो इन दोनों की जोड़ी को खास क्या बनाता था? अक्षय का वो खिलाड़ी अंदाज और शिल्पा शेट्टी की वो ग्रेस, वो यू नो आप कह लीजिए अदाएं जो होती है, और ग्लैमर शिल्पा शेट्टी का एक अलग ही लेवल पे था, और दोनों ने मिलके दिए हमें 90s के कुछ बेहतरीन खूबसूरत गाने। अच्छा, ये गाना डेफिनेटली 2000 में आई थी ये मूवी, अर्ली 2000s में, लेकिन इस गाने को, इनकी जोड़ी को डिफाइन करने के लिए प्ले करना बनता है।

और जी आगे बढ़ते हुए आप मतलब हम सभी जानते हैं सेलिब्रेशंस कितने स्पेशल होते हैं और आपका सेलिब्रेशन तो डेफिनेटली स्पेशल है। और अगर इतना स्पेशल सेलिब्रेशन आ रहा है कोई, तो फिर तैयारी भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी होनी चाहिए। वेडिंग हो, ग्रेजुएशन हो, हाउस वार्मिंग हो, कोई भी और इवेंट हो आपका, तो वेनेसा इवेंट्स टेक केयर ऑफ इट ऑल। From the perfect venue and stunning decor by Signature Events to photography, hospitality and exclusive catering by Basera Grand. Sab kuch beautifully brought together under one roof. Aapko kya karna hai? Apni party ko sirf enjoy karna hai while let Vanessa Events take care of the rest for you. Toh Hari Basera sahab is the contact information for Vanessa Events. Give him a call 469-442-8770. जी हाँ, 469-442-8770। वेनेसा इवेंट्स का मंत्रा बड़ा सिंपल है जी, आपका सेलिब्रेशन उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप सिर्फ आइए, तैयार होके एंजॉय कीजिए और अपने सेलिब्रेशन को बेहतरीन मेमोरीज के साथ वापस जाइए। अच्छा, मेमोरीज से मुझे ख्याल आया, ये जो हम जोड़ीज की मेमोरीज लिव कर रहे हैं, आई एम हैविंग सच अ ब्लास्ट एंड एंजॉयिंग दिस टाइम टॉकिंग अबाउट ऑल दीज ब्यूटिफुल जोड़ीज विद यू। एक जोड़ी का जिक्र किए बगैर हम 90s को बिल्कुल आगे नहीं बढ़ सकते 90s से, एंड दैट जोड़ी वाज ऑफ अनिल कपूर एंड माधुरी दीक्षित। 90s के बॉलीवुड में अनिल और माधुरी की एनर्जी, उनका रोमांस, उनकी केमिस्ट्री एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन था। स्क्रीन पर जब दोनों एक साथ आते थे, वाकई आप कह लो ना, ऐसा लगता था कि जैसे इट्स फायर। कभी आजकल बच्चे कहते हैं ना फायर, तो वो फायर वाली फीलिंग आया करती थी। तेजाब से शुरू हुई जो इनकी ये जोड़ी, तो बेटा के धक धक तक पहुंची और उसके बाद पुकार में हमने देखा एक मैच्योर रोमांस बिटवीन दीज टू। अनिल की एनर्जी तो इन्फेक्शस थी जी, अनिल कपूर साहब की, और माधुरी के एक्सप्रेशंस और डांस और उनकी जो अदाएं थी उसके साथ मिलके बन जाता था एक बड़ा ही लीथल कॉम्बिनेशन।

1987 से अनिल कपूर और माधुरी का जो जर्नी एक साथ काम करने की शुरू हुई फ्रॉम द मूवी हिफाजत 1987 में आई थी. अगर आपको हिफाजत याद हो, एक गाना था बड़ा मशहूर हिफाजत फिल्म का, अरे कहाँ से लाई ढूंढ गई ये महबूब ओ महबूबा अजूबा अजूबा, कभी आपके लिए प्ले करूंगी. उसमें माधुरी और अनिल कपूर पहली बार एक साथ आए थे. फिर आई तेजाब मूवी जो कि सुपर डुपर हिट हुई. फिर आई राम लखन, फिर आई परिंदा, और फिर 90s का दौर आया, किशन कन्हैया, जमाई राजा, जीवन एक संघर्ष, प्रतीका, साथ ही साथ बेटा, खेल, जिंदगी एक जुआ, और उसके साथ राजकुमार, और फिर पुकार फिल्म जैसी आउटस्टैंडिंग फिल्में दी. सबसे ज्यादा मुझे लगता है कि अनिल कपूर और माधुरी अगर लिस्ट बनाई जाए तो इन लोगों ने सबसे ज्यादा फिल्में एक साथ की हैं अब तक जितनी भी जोड़ियों की मैंने आपसे बात की उनमें. सो दिस वॉज डेफिनेटली वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर वंस. एक और खूबसूरत गाना इन दोनों की जोड़ी का आपके लिए जरूर प्ले करूंगी. उससे पहले आपको देती चलूं वेदर अपडेट. टाइम आ चला है जी, बस अराउंड 10-15 मिनट्स में आई एम गोइंग to wrap up. So, aaj hai 93 degrees is waqt city of Makini mein, however it feels like 96 right now. Din raha sunny, highs in the mid 90s, jabki shaam rahegi partly cloudy, then clearing up, lows in the upper 60s. Wow, so we are going to have a little better. Agar aap shaam mein walk karna pasand karte hain, to you might just feel a little better today. Aaj ka pollen count is 11.3, which is extremely high. UV index is 8, which is high as well. Please apni hydration puri rakhiye. That is very important for dealing with this kind of heat. Sunrise aaj ka hua 7:15 AM pe, jabki aaj ka sunset hoga 7:20 PM.

सोनू निगम एंड अनुराधा पोडवाल की आवाज में फिल्म पुकार से सुन रही थे आप ये गाना अनिल कपूर और माधुरी पे पिक्चराइज और दैट ब्रिंग्स अस टू ऑलमोस्ट आवर क्लोज ऑफ द सेगमेंट द टॉप जोड़ीज ऑफ 90s. बहुत सारी जोड़ीज की हमने आज डिस्कशन की, आपने भी मुझे कॉल करके अपनी इनपुट दी और सब मतलब हम सब आई थिंक वी ऑल स्टैंड ऑन द सेम पेज. 90s के कुछ ऐसे चेहरे जिनको हम करते हैं बहुत ज्यादा एंजॉय. इट वॉज सच अ प्लेजर ग्रोइंग अप विद देम, watching their films, listening to their music. Ajay ji, it is time to take a wrap. Kal aap se milungi ek baar phir, lekin usse pehle aapko dene lagi hoon traffic update, kyunki traffic is waqt janna bahut zaruri hota hai. Rush hour shuru ho chuka hai, yani ke drive time aapka serious drive time shuru ho chuka hai. So sabse pehle there are actually 2-3 collisions jo mujhe nazar aa rahe hain. The first one I can see is at IH30 towards Beltline Road, Grand Prairie, eastbound, जिसकी वजह से 4 lanes are blocked out of 9. तो जी बहुत major ये incident है. Around 40 minutes पहले ये verify हुआ है. Severity is extremely high. Ambulance call हो चुकी है. So please be very careful. You will find a lot of backup at this spot. There is another collision that I can see at 75 towards Mockingbird Lane, northbound, जिसकी वजह से 2 lanes are blocked, including an exit lane. So this incident has been verified about 10-15 minutes ago. So यहाँ पे आपको बहुत सारा ट्रैफिक जाम और रश मिलने वाला है इफ यू आर हेडिंग टूवर्ड्स दिस स्पॉट. देर इज अनदर कोलिजन दैट आई कैन सी रिपोर्टेड वेरीफाइड अबाउट 15 मिनट्स अगो, दैट इज एट IH35 ईस्ट टूवर्ड्स डेनियल डेल रोड साउथ बाउंड, जिसकी वजह से 2 लेन्स आर ब्लॉक्ड इंक्लूडिंग एन एग्जिट लेन. द सेवेरिटी ऑफ दिस इंसिडेंट इज एक्सट्रीमली हाई एज वेल एंड एम्बुलेंस कॉल हुई है जी, तो काफी सारा आपको यहाँ पे बैकअप और ब्लॉकेज देखने को मिलेगा. देर इज अनदर इंसिडेंट That is a disabled vehicle that I can see at SH114 towards Tarrant and Dallas County line westbound, jiski wajah se an exit lane is blocked. But that is pretty much all that I have for you where your traffic is concerned right now on the roads of Dallas. With that, it is a wrap from my side. Kal hai Friday. Ek baar phir aapko milungi, same place, same time, yani ke 2:30 PM till 5 PM tomorrow at 104.9 FM Fun Asia Radio. Kal hai Friday, bacha party, ready ho jaiye. Fridays are always dedicated to you. I'm going to bring you Kids Junction and we are going to have a lot of fun. To all of you who are listening, thank you and have a lovely and safe rest of your evening.

0: Passion Health Primary Care.
1: Fun Asia 104.9 FM. Turn up the volume!
2: Beautiful home, Ravi. $1 million. Wow.
3: Thank you. Well, Sana and me just got lucky as Hussein Panjwani helped us with the purchase of our first home. He practically walked us through the entire process. Ever since, with his guidance and support, I've become a pretty savvy real estate investor myself. Unka radio show sunata, and then consulted with him for all my financing needs. Now my real estate portfolio has grown into many single family homes, apartment complexes, agricultural land, or up, ye $1 million property bhi.
4: Hi, this is Hussein Panjwani. Dream Home will help you grow your real estate portfolio. Remember, we just don't promise, we deliver.
5: For details, visit dreamhomemortgage.com or call Dream Home Mortgage 972-245-5626 or email info@dreamhomemortgage.com.
6: Some restrictions apply. Equal housing lender, NMLS 334616, Division of Brazos National Bank.
7: अरे, डैलस के आसमान में इतने सारे तारा नहीं. बिजनेस ओनर्स के लिए तो सिर्फ एक ही तारा काफी है, तारा कमर्शियल एनर्जी. 2002 से टेक्सास के हजारों बिजनेसेस का ट्रस्टेड एनर्जी पार्टनर. होटल्स, गैस स्टेशंस, वेयरहाउसेस, मेडिकल फैसिलिटीज, रिटेल स्टोर्स और ऑफिस बिल्डिंग्स. कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग, पर्सनलाइज्ड एनर्जी सॉल्यूशंस और एक्सेप्शनल कस्टमर सर्विस. तारा कमर्शियल एनर्जी, पावरिंग टेक्सास बिजनेसेस फॉर ओवर 2 decades. कॉल 844-428-2808 और विजिट taraenergy.com टुडे. तारा कमर्शियल एनर्जी, जो आपके बिजनेस को रोशन रखे.
8: जाओ पहले उस आदमी का साइन लेकर आओ जिसने मेरे हाथ पे ये लिख दिया था.
9: साइन मिलना मुश्किल है, लेकिन प्लेनो में जबरदस्त खाना, उसका सिग्नेचर मिल गया. सिग्नेचर क्विजिन इन प्लेनो, फेमस निहारी, सिजलिंग ग्रिल्स, क्रिस्पी फ्राइड चिकन और माउथ वाटरिंग पराठा रोल्स. और कोई भी सेलिब्रेशन हो तो बैंक्वेट सर्विसेज भी. लोकेटेड एट स्प्रिंग क्रीक एंड आलमा, ईस्ट प्लेनो. विजिट signaturecuisine.net. सिग्नेचर क्विजिन, हर टेस्ट पर अपना सिग्नेचर.
10: Are you on F1 visa and looking for mortgage options? Ya aap H1B pe hain and looking options with 5% or 10% or even 3% down? So call kijiye Kamna ko at 214-845-4189 kyunki aapka bharosa hi meri pehchan hai. NMLS 926641.
11: Are you seeking clarity in life? Wondering what destiny has in store for you?
12: हर समस्या का हल है एस्ट्रोलॉजर ईश्वर के पास. 400 साल की फैमिली विजडम के साथ वर्ल्ड फेमस एस्ट्रोलॉजर अब डैलस में.
11: दैट मैजिक रिमूवल हो, लव एंड रिलेशनशिप इश्यूज हो, गेट ट्रस्टेड सॉल्यूशंस विद 100% प्राइवेसी.
12: थाउजेंड्स की लाइफ बदली उनकी डिवाइन गाइडेंस से. नाउ इट्स योर टर्न. समस्या का पक्का समाधान, एस्ट्रोलॉजर ईश्वर. कॉल नाउ 9455270897 और विजिट astrologerishwar.com.
13: I am so stressed. Credit card bills, unsecured debts. What are we going to do?
14: Kuch bhi nahi. Oora Debt Relief will do it for us.
13: Kya matlab?
14: Oora can help us save up to 50% on our total debt and the rest we pay in easy monthly installments.
13: But what if it doesn't work? We cannot afford to lose more money. Hum khud hi manage kar lenge.
14: Oora Debt Relief is one of the leading debt settlement companies. They don't charge a single penny until our debt is settled. And they have a 100% money back guarantee. Call to karo 888-888-9914.
13: Ab to karna hi padega, madam.
15: Don't let debt ruin your life. Visit Oora.org or call 888-888-9914 and take control of your financial future.
16: 2026 mein aapki rashi ke liye dhan aur safalta ke yog hain.
17: Are sun, ye astrologer बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है.
18: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं. जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं. तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो.
19: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी. जहाँ एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है. करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट.
18: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com.
11: Who are the employees your company simply cannot afford to lose? And are you doing enough to reward and retain them? An executive bonus plan using life insurance can be a flexible way to offer select key employees valuable protection today and potential future benefits later. To learn whether this strategy may fit your business, visit shopcompareinsure.com to get started. Call 469-789-3603. That's shopcompareinsure.com. Your 360 insurance solution. Products subject to carrier approval, policy terms and state availability. Guarantees depend on the issuing carrier. Consult qualified legal and tax professionals before implementing any business insurance strategy. Not legal, tax, investment or financial advice.
20: Hi, I am Shah Rukh Khan. You are listening to Fun Asia.

पर अगर गलती से आप कुछ भूल गए राशन की लिस्ट में, और अगर आप ग्रैंड प्रेरी आर्लिंगटन या मैन्सफील्ड साइड पर रहते हो, तो आपकी गलती बड़ी भारी पड़ती थी आपको, नहीं कितनी कितनी कोस दूर आपको गाड़ी चलानी पड़ती थी। टेंशन खत्म हो चुकी है भैया, क्योंकि आपके लिए आ चुका है हिमालयन बाजार राइट इन द हार्ट ऑफ ग्रैंड प्रेरी, एंड दिस इज सर्विंग आर्लिंगटन, ग्रैंड प्रेरी एंड मैन्सफील्ड। दिस इज लोकेटेड ऑन 5103 मैग्ना खाड़ा बुलेवार्ड। इनके पास आपको मिलेगा जी सारा कुछ दैट यू एक्सपेक्ट फ्रॉम अ देसी स्टोर, स्पेशली इफ यू आर फ्रॉम इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, UAE, wherever you're from, if you are looking for South Asian groceries, they have it all stacked up. सारा कुछ मिलेगा जी आपको, ताजे फल हो, सब्जियां हो, fresh produce, premium halal meats, and for my Nepalese brothers and sisters, आपके लिए धारे रामरो मिलेगा आपको water buff, hot snacks, everyday essentials सब मिलेंगे, और hot snacks में शाम को समोसा, पकौड़े, चाय और कॉफी, all under one roof. And if you are living within a 5 mile radius, $50 की ग्रोसरी आपके घर पे डिलीवरी फ्री हो जाएगी। जस्ट स्पेंड $50 or more एंड गेट योर ग्रोसरीज डिलीवर्ड विद इन अ 5 mile रेडियस फॉर एब्सोल्युटली नो डिलीवरी कॉस्ट। आपको करना क्या है? कुछ नहीं यार, गूगल खोलिए भाभी, चेक हाउ फार इज हिमालयन बाजार फ्रॉम योर होम, एंड इफ यू आर इन अ 5 mile रेडियस, गिव देम अ विजिट। टेकिंग यू टू द नेक्स्ट गाना, बिकॉज गानों का सफर जो है वो तो चलते रहना चाहिए, बट रिमेंबर द नेम हिमालयन बाजार, स्पेशली इफ यू आर लुकिंग फॉर एनीथिंग साउथ एशियन ग्रोसरी वाइज, दैट ऑल इज अवेलेबल विद द वन एंड ओनली हिमालयन बाजार इन ग्रैंड प्रेरी।

0: अच्छा, मैनिफेस्ट करने से पहले थोड़ा दोबारा सोच लो, क्योंकि अब डायमंड्स में मिल रहा है बाय टू गेट वन फ्री ऑफर। तन्मय ज्वेलर्स इन अर्विंग, डायमंड रिंग्स, पेंडेंट्स, इयररिंग्स और ब्राइडल ज्वेलरी पर बाय टू गेट वन फ्री, और वो भी सब कुछ होलसेल प्राइस पर। चाहे प्रपोजल हो, वेडिंग हो या बस अपनी स्पार्कल अपग्रेड करनी हो, अब शाइन डबल विद इन बजट। लग्जरी ब्रिलियंस सेलिब्रेशन, तन्मय ज्वेलर्स इन अर्विंग।
1: ब्रेकिंग न्यूज, होम लोन या रीफाइनेंस अब और भी आसान। myfamilyhomeloan.com देता है ट्रांसपेरेंट प्राइसिंग, नो हिडन फीस, नो सरप्राइजेस। और हाँ, सबसे बड़ी खबर, उनका AI पावर्ड प्लेटफॉर्म रियल टाइम रेट्स कंपेयर करता है ताकि आपको मिले बेटर डील्स एंड फास्टर अप्रूवल्स। 15,000 प्लस गूगल रिव्यूज, हजारों फैमिलीज का भरोसा। विजिट myfamilyhomeloan.com और कॉल 4697343338, 4697343338। myfamilyhomeloan.com इज पावर्ड बाय लोन फैक्ट्री, NMLS 2025289, लाइसेंस्ड मॉर्गेज ब्रोकर इन टेक्सास। ऑल लोन सब्जेक्ट टू क्रेडिट अप्रूवल, इक्वल हाउसिंग लेंडर।
2: जीनी, हुकम मेरे आका, हम आज पार्टी के मूड में हैं। एक ऐसी जगह बताओ जहां मेरी एंट्री ही रॉयल हो।
3: मिराज लाउंज, चलिए मेरे आका, लग्जरी लिमोजीन राइड्स आपके इंतजार में हैं।
4: मुझे ज्यादा क्राउड पसंद नहीं।
3: नो प्रॉब्लम आका, लग्जरी प्राइवेट स्पेस भी हाजिर है आपकी प्राइवेट पार्टी के लिए।
4: और एंटरटेनमेंट,
3: मूवी नाइट, बेली डांसिंग नाइट्स, प्रीमियम हुकर्स और अमेजिंग वाइब्स, सब आपकी खिदमत में।
4: वाह जीनी, ये जगह है या कोई जादू?
3: जादू नहीं, मिराज लाउंज एट मिकिनी रेंज पार्कवे। मिरेकल्स हैपन इन मिराज।
5: अरे यार, घर मिल गया।
6: घर तो देख रहा हूँ, लेकिन इट्स हार्ड टू फाइंड अ रियल्टर हु ऑफर्स ग्रेट सर्विस एंड आल्सो कैशबैक एट क्लोजिंग।
7: इसलिए कॉल करो अजय प्रभु ऑफ बीम रियल एस्टेट। अजय इज एन एक्सपीरियंस्ड रियल्टर। वो सिर्फ घर नहीं दिखाते, हर प्रॉपर्टी का ऑनेस्ट रिव्यू देते हैं, प्रोज एंड कॉन्स समझाते हैं, बेस्ट प्राइस नेगोशिएट करते हैं, बिल्डर इंसेंटिव दिलवाते हैं और क्लोजिंग पर कैशबैक भी।
6: सीरियसली, अच्छे सर्विस भी और कैशबैक भी?
7: बिल्कुल, विजिट ajayprabhu.com एंड सी व्हाई सो मेनी पीपल आर रेविंग अबाउट हिम।
8: पनीर मंचूरियन का नाम तो सुना होगा, पर चिली पनीर बाओ कहानी में ट्विस्ट।
9: चिकन टिक्का पुरानी मोहब्बत, बट बुराडा चिकन टिक्का न्यू लव।
8: एंड पिस्ताचियो लैम्प चॉप्स,
9: फुल ऑन फ्लेवर का फ्यूजन।
10: That's Fusion Republic Indian Kitchen and Bar. Familiar Indian flavors with a fusion twist. Already loved in Richardson, now the flavor story moves to Irving. Enjoy an everyday lunch buffet with 25 items. Chaats, tandoor, biryani, fusion favorites and plenty more to discover. Fusion Republic now at 8080 Walton Boulevard, Irving. Familiar flavors, fabulous fusion.
11: Dallas has its own superheroes, fighting dust, clogs, blocked vents, and hidden fire hazards every day. And now, the superheroes of ducts are turning one. Duct Time celebrates its first anniversary in Dallas. For Duct Time services, call Jeetu Patel at 972-877-2500 and book your appointment today for a cleaner, safer, and fresher home.
12: It's the time to clock out.
13: And most importantly, it's time to turn up the flame. Introducing Flame Hour at Tandoori Flame, jahan tandoor ki smoky khushboo, sizzling flavors aur chatpate appetizers make an ordinary weekday feel like a delicious celebration. Every Monday through Friday from 5 to 8 p.m., order any two entrees and get one appetizer absolutely free. Bring your family, friends and your appetite. Visit Tandoori Flame in Garland. Terms and conditions apply.
14: वीकेंड का प्लान अभी तक नहीं बना? बस 90 मिनट्स नॉर्थ ऑफ डैलस, चॉकटाव कैसीनो एंड रिसॉर्ट ड्यूरेंट में हर विजिट बन जाता है एक विनिंग एक्सपीरियंस। पोकर हो या ब्लैक जैक, एक्साइटिंग स्लॉट्स हो या फिर 20 अमेजिंग रेस्टोरेंट्स में जबरदस्त डाइनिंग, और अगर ब्रेक चाहिए तो लग्जूरियस स्काई टावर और रिलैक्सिंग स्पा आपका इंतजार कर रहे हैं। तो सिर्फ लकी फील मत कीजिए, लकी बन जाइए। चॉकटाव कैसीनो एंड रिसॉर्ट ड्यूरेंट, एंटरटेनमेंट, लग्जरी और एक्साइटमेंट सब एक ही डेस्टिनेशन में। प्लीज प्ले रिस्पॉन्सिबली, मस्ट बी 21 इयर्स older to game.

0: देखो ये जो पुराने लोग एडवाइस करते हैं ना कि समय रहते शादी कर लेनी चाहिए, मतलब व्हेन इज द राइट टाइम यू शुड गेट मैरिड, देखो ये बिल्कुल सच बात है। बुजुर्गों ने ऐसी थोड़ी बातें बनाई हुई हैं। गर्लफ्रेंड जो है ना डिप्रेशन में साथ नहीं देती, बीवी ही काम आती है दोस्तों, जो भले चैन से जीने ना दे और पर चैन से मरने भी तो नहीं देती। देखो जोक्स अपार्ट, लेडीज आप ही हैं जो समझ जाती हैं मर्दों को, नहीं तो गर्लफ्रेंड ने बोला तू टेंशन तेरी टेंशन, आगे बढ़ बेटा।
1: की प्यास है बंदा ये बिंदास है, रस पीने की प्यास है बंदा ये बिंदास है।
0: और गर्लफ्रेंड वाली टेंशन जो है वो शादीशुदा मर्द की वैसी खत्म हो जाती है, क्योंकि जहाँ शादी की है उससे बड़ी टेन, मतलब यू नो,
1: पीने की प्यास है बंदा ये बिंदास है, रस पीने की प्यास है बंदा ये बिंदास।
0: मतलब मेरा कहने का था उससे बड़ी 10 मिनट में खाना बनाने वाली कहीं नहीं है, जो आपसे प्यार करती है बीवी बस वही है। 10 मिनट में फटाफट कुछ ना कुछ फिक्स कर ही देती है, चाहे सुबह ब्रेकफास्ट की जल्दी में हो आप लेट हो रहे हो ऑफिस के लिए, बस कुछ कुछ बना दे फटाफट बेचारी, अंडा या कुछ सब्जी या ब्रेड टोस्ट। आई मतलब इट्स अमेजिंग लेडी, सल्यूट है आपको।
1: बिंदास है ये, थवरा है ये, लोभी है होशियार है,
0: मैनेजमेंट को बोलो फ्राइडे को भी ले आए लड़के को। बट विद दैट आई एम गोना टेक यू टू द नेक्स्ट ट्रैक, जो कि एक रिक्वेस्ट आई थी जी हमारे पास, एंड दिस इज अ वेरी स्वीट रिक्वेस्ट। रीमा जी हैं हमारी रेगुलर लिस्टनर, एंड शी सेड शी वांटेड टू डेडिकेट अ सॉन्ग, अफसाना बनाया आपने। दिस इज फ्रॉम अ मूवी कॉल्ड गनमास्टर G9, इमरान हाशमी, जिनेलिया एंड आदित्य इसमें आपको दिखेंगे। दिस इज एन अपकमिंग मूवी और उसका गाना पहली बार इन्होंने मुझे बताया, क्योंकि गाना ही एक दिन पहले रिलीज हुआ है, बट इट्स क्रॉसिंग 20 मिलियन व्यूज ऑन यूट्यूब। एंड दिस रिक्वेस्ट इज एक्चुअली गोइंग फ्रॉम रीमा to her father Rajan, who passed away 13 years ago, but she still has her heart full of dad's love, and I love that love. You know, ye jo pyar hai maa baap ka, ye chahe wo chale jaye wo hamesha hamare sath barqarar rehta hai. It's been 6 years since my mom, 7 years since my mom left me, but I don't think she ever left me. She's always there with me. This request ja rahi hai ji Reema ki taraf se Rajan ji ko. Rajan ji, if you're up in heaven, your daughter is doing wonderfully well, and you've raised a very nice daughter. A very happy birthday, heavenly happy birthday to you from Fun Asia and from Banda Bindas. Ye raha aapka gana.
2: Mujhse rishta, mere bare mein tum kuch nahi jante.
3: Purani jankariyan to companiyon ko chahiye hoti hain. Mohabbat apni nayi dastaan likhti hai.

0: किया वो मैंने गाने में सुनी नहीं थी, मजा आ गया भाई। गाना चाहे अच्छा है, मतलब जो शायरी है वो जबरदस्त है। हिमेश साहब ने अपना जो करते हैं उसका अलग मजा है भाई। इफ़ यू लाइक दैट ट्रैक यू आर लाइक मी, बिकॉज आई थिंक हिमेश साहब का जैसे आशिक बनाया है ना, क्या बात है। वो जो गागे वही गागे, फिर जैसे यही होता प्यार है, वो जो गागे वही गागे। ये गाना भी जो हिमेश गागे वही गागे। अब देखो करने वाले कर जाते हैं, अब करने वाले कर जाते हैं बिल्कुल। डैलस में भी कितने करने वाले हैं जो अपने अपने बिजनेस को बनाए जा रहे हैं, बढ़ाए जा रहे हैं। एंड ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू आर कम्युनिटी। हम लोग इतने मेहनती हैं, इतने डटे हुए हैं इस गोल पे कि हमने अमेरिका को टेक ओवर करना ही करना है, एंड दिस इज़ अ गुड थिंग। चलो अब मैं जो बात करने वाला हूँ वो ये है, फॉर ऑल दोज हु आर एंटरप्रेन्योर्स हियर इन DFW, जो अपना अपना बिजनेस करते हैं। एंड व्हेन यू डू योर बिजनेस, एक तरफ तो ये होता है कि रिश्तेदार पसंद भी करते हैं, कहीं ना कहीं से थोड़ी सी उनको आग भी लग रही होती है कि ये सड़क कैसे काम कर रहा है। तो आपको जब रिश्तेदार दोस्त सब भूल जाए, जब आपने बोला हो कि यार एक बिजनेस खोलना चाह रहा हूँ, कुछ 50,000 दे दिए यार वापस ले लियो, फोन उठाना बंद हो जाए, तो आपने फोन करना है शाहिद पंजवानी साहब को, हु इज विद द SBI लोन एक्सपर्ट। ही इज गोना मेक श्योर दैट यू डोंट नीड एनीबॉडी मैन। आप खुद के बिजनेस चलाओ और खुद के बल पे चलाओ, उसके लिए शाहिद भाई आपकी मदद करेंगे। कैसे मदद करेंगे, क्या करते हैं ये, वेल लेट मी ब्रिंग हिम ऑन द एयरवेव्स एंड वी कैन आस्क हिमसेल्फ। गुड इवनिंग फनेजिया। शाहिद सर, हाउ आर यू दिस इवनिंग?
1: I'm doing great. Good evening to you and all listeners.
0: शाहिद भाई पहले तो ये बता दीजिए क्विकली कि व्हाट इज SBI लोन एक्सपर्ट ऑल अबाउट?
1: तो SBA, फॉर दोज हु डू नॉट नो SBA, स्मॉल बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, ये गवर्नमेंट बैक्ड एंटिटी है जो हेल्प और सपोर्ट करती है उन्हें जिनको बिजनेस खरीदने के लिए लोन चाहिए, या फिर उन्हें जो बिजनेस ओनर्स है जिनको अपना बिजनेस एक्सपांड करने के लिए लोन चाहिए। SBA जो है ये लोन की गारंटी, जस्ट टेक इट एज अ काइंड ऑफ अ को साइनर फॉर योर लोन। सो हु ट्रेडिशनली जिनको लोन मिलना आसान नहीं होता है वहां SBA लोन आ जाता है, और SBA बैंक्स ऑल्सो प्रेफर गिविंग SBA लोन्स। वी हेल्प यू नेविगेट the application process, or we help you navigate how to pre-underwrite and what is needed to get the approval. That way you don't have to face all the challenges to get your loan approved, be it aap business khareed rahe ho ya existing business owner ho. Quickly ek cheez main actually business khareedne walon ke liye bare mein aaj baat karna chahunga. Agar aap franchise khareed rahe ho, chalti hui kisi ki franchise khareedna chahte ho, kisi ka business khareedna chahte ho, chahe property involved ho chahe property involved na ho, we can help you get an SBA loan with as low as 10% down of the total project, meaning $1 million ka project hai, aapko 100,000 down dena hai. On top of that, we will help you get additional working capital loan after you buy that business for maybe another $50,000 to $100,000. So what happens is you put $100,000 down, you bought $1 million business, and then we give you $50,000 to $100,000 of working capital. Basically, your down payment, most of it came back to you, and you ended up buying the business with either zero out of pocket or maybe less than 5% down payment.
0: Wonderful. That is a great news, DFW. If you're looking to do that, then your person to go to is Shahid Panjwani, and you can reach him at 469-786-3338. That's 469-786-3338.
1: Actually, it is 817-786-3338.
0: 817-786-3338. That's 817-786-3338. Is pe aap call karenge, you will get with Shahid Saab, and he will help you with every step of your process to get your loan done. Shahid Bhai, always a pleasure. Take care of yourself. And I encourage DFW to reach out to him. Yaar, bade insaan ek to zabardast hai. He's a wonderful gentleman, and he's helped me and many other businesses that I know, and he has done it to the T. So make sure to check him out anytime you have that need, that you're looking for a loan to grow your business or to buy an existing business.

ये क्या हो गया भाई, ये तो गुस्सा ही करके भाई, ये थोड़ी ऐसे थोड़ी होता है यार। ये तो भाई मतलब गाना किसी और भाषा में चला दिया, लुट्टे रे पोटे। चलो हम लेके चलते हैं आपको शाहरुख के गाने की तरफ, बट अ डिफरेंट वन दिस टाइम, जो हम सबको समझ आए।

0: Right, that was Chaliya Jawan was the movie. Shahrukh Khan is the guy and the King Khan for a reason, man. मतलब जब इनकी फिल्म आती है तो चाहे बच्ची हो, बापू हो, माँ हो, ये सब लोग मिलके सास के साथ जाते हैं पिक्चर देखने शाहरुख खान की, एंड दैट्स व्हाट मेक्स हिम स्पेशल. अभी हमने बात करवाई थी आपकी SBA लोन एक्सपर्ट्स मिस्टर शाहिद पंजवानी. गिव हिम अ कॉल इफ यू हैव एवर नीड ऑफ एनी लोन्स फॉर योर बिजनेसेस. ये भी बताता चलूं, दिस पार्ट ऑफ द शो इज ब्रॉट टू यू बाय होको. नाउ होको इज समबडी हु हैज मेड अ फुल नॉइज इन इंडिया. खूब सारा शोर है इनका हिंदुस्तान में बिकॉज ऑफ द क्वालिटी ऑफ फूड दे सर्व. यहाँ पे आपके लिए आ चुका है फ्रिस्को में, राइट ऑन प्रेस्टन रोड, एंड दे आर गिविंग यू चना पूरी सैंडविचेस, दे लेजेंडरी कोल्ड कोको. एंड इफ यू लाइक द कोल्ड कोको देन सिद्धू पाजी की तरह वहां जाके दो ताली मेरी तरफ से ठोको. स्टूडेंट्स गेट 20% ऑफ देयर वैलिड आईडी. इफ यू हैव अ स्टूडेंट आईडी हर टाइम आपको 20% ऑफ मिलेगा. बट अगर आप एम्प्लॉयड हो तो दुखी मत हो, आपके लिए भी ऑप्शन है. 20% ऑफ लंच पैक्स मंडे टू फ्राइडे बिटवीन बिजनेस आवर्स विच इज ऑफकोर्स 9 to 5. सो मेक श्योर टू विजिट hoco.us फॉर द होल मेन्यू. आई एम गोना टेक अ शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक. आप कहीं मत जाइए. जाएंगे भी क्यों, क्योंकि एंटरटेनमेंट का पूरा खजाना इज राइट हियर ऑन 104.9 FM फन एशिया रेडियो, योर इवनिंग शो जिसका नाम है द बिंदास शो.
1: Hey Frisco, get ready to celebrate silver like never before. Chandrika Silver by Shri Krishna Jewelers celebrates its grand launch. Discover exquisite handcrafted silver jewelry and artifacts with exciting inaugural offers and raffle prizes. Visit 7777 Warren Parkway, Suite 280 Frisco. Chandrika Silver, the tradition shines in silver.
2: Same order again? Same pizza, same taste, same story? Time to upgrade your cravings, Dallas. Because Fun Pizza Kitchen just dropped a bold new Mexican-inspired menu. And trust us, this is not your regular slice. Fiesta Veggie, Pollo Loco, Senor Cameron, different names, crazy flavors. Once you try these, your old order might just get ghosted. Fun Pizza Kitchen, new flavors, new obsession.
3: मैं शादी करूंगी तो करीना वाला डिजाइनर लहंगा पहन के करूंगी, वरना दूल्हे को टाटा बाय बाय करूंगी.
4: अरे मैडम, करीना वाला लहंगा और आपका बजट मैच करेगा क्या?
5: अब करेगा, बिकॉज इंडियन अटायर फ्रिस्को समर सेल इज ऑन. स्टनिंग लहंगास, एलिगेंट साड़ीज, ब्राइडल ज्वेलरी, मेंस एंड किड्स वेयर.
6: इतना सब और प्राइस?
5: अप टू 25% ऑफ ऑन लहंगास एंड ब्राइडल कलेक्शन समर सेल थ्रू द एंड ऑफ ऑगस्ट ओनली एट इंडियन अटायर फ्रिस्को. ट्रेडिशनल हो या फ्यूजन, अब हर आउटफिट बोलेगा
7: यार बॉस ने फिर से डांट दिया. ट्रैफिक अलग और ऊपर से स्ट्रेस.
8: अरे रिलैक्स, यू नीड अ कूल थेरेपी.
7: थेरेपी? वो तो बहुत महंगी है.
8: नहीं, कूल मतलब कूल चा थेरेपी.
7: ये क्या होता
8: है? सिंपल, चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस इन एलन.
9: चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस सर्विंग सम ऑफ द बेस्ट पंजाबी फूड इन डैलस, फ्रॉम बटरी करीज टू ऑथेंटिक पंजाबी स्ट्रीट फूड फेवरेट्स स्ट्रेट फ्रॉम शेफ गगन पन्नूस किचन. सो नेक्स्ट टाइम लाइफ गेट्स स्ट्रेसफुल, जस्ट टेक अ डोज ऑफ कुलचा थेरेपी एट चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस.
10: एंड नाउ एट अ बिगर लोकेशन जस्ट 3 डोर्स डाउन विद लिमिटेड रिजर्वेशन available. What would happen to your business if a key owner, partner or top employee passed away unexpectedly? Would revenue, credit, client relationships or daily operations be affected? Key Person Life Insurance can help provide funds to support the business during a difficult transition. Protect the people who help keep your business running. Visit shopcompareinsure.com to get started. Call 469-789-3603. That's shopcompareinsure.com. Your 360 insurance solution. Products subject to carrier approval, policy terms and state availability. Guarantees depend on the issuing carrier. Benefits and tax treatment depend on individual circumstances. Consult qualified legal and tax professionals. Not legal, tax or investment advice.
11: We need to talk.
12: अब क्या हुआ?
11: Nothing. It's not you.
12: Oh no.
11: It's the distance.
12: Distance? We live 10 minutes apart.
11: Arey, it's actually not you. It's that driving all the way for my Sal's Hot Chicken.
10: Irving, that long distance relationship is officially over. Sal's Hot Chicken is now in Irving. Your crispy chicken, loaded sandwiches and bold Sal's flavors just got a whole lot closer. Sal's Hot Chicken, Irving. Same obsession, less distance.
13: Want to explore properties in India? You don't need to fly to India. The Gro Pravesh India Property Expo is coming to Frisco. Meet top developers from Bengaluru, Hyderabad, Mumbai, Pune, Chennai and Delhi NCR. Explore 200 plus projects for your dream home or next investment. October 10th and 11th, Hath Regency Frisco, 10 a.m. to 8 p.m. Free entry, free parking. Gro Pravesh India Property Expo by My Square Feet.
14: Hi, this is Ranveer Shori and you're listening to me on Fun Asia Radio.

0: खुदा जाने, खुदा सब कुछ जानता है ये तो मैं भी मानता हूँ, बट खुदा जो जानता है वो ये खुदा नीचे आपके आके नहीं बताएगा कि आपका डेट कैसे खत्म होगा। ऑल दो खुदा जानता है और खुदा ने आपको ऑप्शन भी दिया है, आपने सुना या नहीं सुना वो आपकी गलती होगी। देखिए जिंदगी में डेट्स, जिंदगी में क्रेडिट कार्ड का लोन, आपकी गाड़ी के लोन कभी कभी पाइल अप हो सकते हैं, दैट्स ऑल नेचुरल बिकॉज ऑफ जस्ट सम सिचुएशंस इन लाइफ। एनीबॉडी कैन गो थ्रू एनी सिचुएशन एंड दे कैन मेक अ पर्सन मेक ड्रास्टिक डिसीजंस और डिसीजंस दैट विल कॉज प्रॉब्लम्स लेटर ऑन। और उसमें से कभी कभी कोई एक्स्ट्रा खर्चे किसी वजह से होते हैं जिसकी वजह से यू गेट स्टक इन अ रट। अब खुदा ऊपर से नीचे आके ये तो नहीं बताएगा कि आप उरा डेट से बात करें, इसलिए फनीजिया आपके लिए लेके आया है उरा डेट, जो कि अमन आपको बताएंगे कैसे आप डेट फ्री हो सकते हैं, चाहे गाड़ी का लोन हो, चाहे रिपोजेस्ट गाड़ी का लोन हो, वट एवर इट इज, दैट्स यू नो एक तलवार बनके जो आपके ऊपर लटक रही है वो तलवार हटाने का काम करता है उरा। लेट मी ब्रिंग देम ऑन द एयर। गुड इवनिंग अमन, हाउ आर यू?
1: ऑल गुड फाइनेंशिया। सुनने वाले सभी लिसनर्स को एक बार फिर से नमस्कार। दोस्तों ये महीना तो बाय बाय कहने लगा है और ये वीकेंड भी, लेकिन आप अगले महीने से पहले ही आपको चेता दूं, आपको आइडिया दे दूं कि अगर आप क्रेडिट कार्ड की मिनिमम दे पेमेंट्स दे दे के परेशान हो चुके हैं, क्रेडिट कार्ड उतरने का नाम नहीं ले रहे और आप मिनिमम पेमेंट देते जा रहे हैं, मिनिमम पेमेंट देना अच्छी बात है, लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि मिनिमम पेमेंट देने से आपके क्रेडिट दुरुस्त रहेगा, 750 स्कोर रहेगा, लेकिन अगर आपकी डेट टू इनकम रेशियो इंप्रूव नहीं कर रही तो 750-800 स्कोर आपके किसी काम का नहीं। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कि आपका डेट आपके सिर से उतरे, तब स्कोर इंपॉर्टेंट होता है। तो अगर आप चाहते हैं कि क्रेडिट कार्ड का कर्जा उतर जाए, ना सिर्फ उतर जाए माफी हो जाए, देना ही ना पड़े, आधे से ज्यादा कर्जा माफ हो जाएगा अगर आप उरा को कॉल करें। हम सारे कार्ड्स की एक पेमेंट बना देंगे, आधा माफ करवा देंगे, आधा जो बचेगा उसकी आसान सी किस्तें बना देंगे। सो सिंपल, बिजनेस के कार्ड हों, पर्सनल कार्ड्स हों, स्टोर के कार्ड्स हों, आपके हों, भाभी जी के हों, भैया बच्चों के हों, किसी भी का कार्ड आपका ज्वाइंट अकाउंट बना के आपकी सेटलमेंट कराई जा सकती है। ना सिर्फ क्रेडिट कार्ड बल्कि आपके पर्सनल लोन्स, गाड़ी जो रिपोजेस हो गई है, गाड़ी जो टोटल हो गई है, इन सब की मिनिमम पेमेंट देने से पहले एक बार उरा को कॉल करके देखिए, फिर देखिए मैजिक, आपका आधा कर्जा माफ। सो जस्ट गिव अस अ कॉल। हमारा टोल फ्री नंबर है 1-888-888-9914, 1-888-888-9914, या फिर आप खुद से भी बात कर सकते हैं, कॉल मी डायरेक्टली 9167637 6355, 9167 6355, अगेन 9167763555, और हमारी वेबसाइट है www.ura.org। तो मिनिमम पेमेंट करने से पहले कॉल करना मत भूलिएगा।

या भाई तेरा बस लिखत गाने पर दुनिया देती ताने बस इन दिक्कत पर जब गाना बजे लगे सब सर हिलाने शौकीन चाहिए टिकटे चाहे होने देना शौक ऐसे मुझे गाली बकते पर इंस्टा पे मेरे साथ चाहिए फोटो घड़ी धीरे चलती हम तेज चलते भर डाला ओटू इनके फेस बनते इनके करियर से लंबे हम पे केस चलते ए।

0: All right, that was Bangari Ya Fir Bang Badshah with that track, and Sharavi and Hiran and Avira Singh was featuring in that track on YouTube. If you haven't seen that, go check it out, the video. It is a nicely made video, and it's crossing about 25 million views as we speak. You're listening to the Evening Drive Time Show. It is 5:54 in the studio clock. That means I'm going to be here till about 7 o'clock. Ek ghanta abhi hamare saath aur hai aapke saath. And that's what we bring to the table, some lovely music. And giveaways. And giveaways, yaad aaya, giveaway due hai aapke liye. Two lucky winners can win $20 off their $50 bill on Mirage Lounge. Now, Mirage Lounge is a hookah bar which has a full service restaurant, cocktails, bar, live music, and DJ nights. Jo ki aapke liye happy hour leke aate hain Monday to Thursday, 11 a.m. to 6 p.m., plus ladies' night, college night. They do a ton of fun nights for you. Aaj agar aap mere sawal ko sahi jawab denge, sahi jawab to kuch nahi hai, creativity ka. ढूंढ रहा हूँ आपसे, आपके अंदर से वो क्रिएटिव कीड़ा निकालना चाहता हूँ जी, और देना चाहता हूँ आपको $20 ऑफ योर मिनिमम बिल ऑफ $50 व्हेन यू डाइन इन. ये मिकिनी में लोकेटेड है, तो पहले जवाब देने से डोंट जस्ट बी एक्साइटेड टू गिव द आंसर, प्लीज गिव द आंसर इफ यू कैन गो टू मिकिनी एंड एंजॉय दिस गिफ्ट. सवाल मैं आपसे क्या पूछने वाला हूँ, सवाल मैं ये पूछने वाला हूँ आपसे कि फेसबुक और इंस्टाग्राम पर, ठीक है जी, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर सबसे ज्यादा बोले जाने वाला झूठ क्या है. आपकी क्रिएटिव आंसरों की खिड़कियां खोल दो, और जो जो मुझे देगा सही जवाब, मतलब सही क्या, मोस्ट क्रिएटिव आंसर गेट्स $20 ऑफ देयर $50 बिल. तो फेसबुक पे सबसे बड़ा बोले वाला झूठ, इंस्टाग्राम पे बोले जाने वाला झूठ कौन सा है? सच भी बता सकते हो और क्रिएटिव आंसर भी दे सकते हो जाए शुरू. लेट्स सी कौन कौन हमारे इस बिना भागे, और देखो कितना अच्छा शो है मार्विन का, आप भाग लेते हैं बिना भागे. You're going to take part in my contest. कहते ना भाग लेंगे आप, हाँ आप भाग लेंगे, बट बिना भागे भागे आपको बैठे बैठे भगाने वाली एक्सरसाइज कराऊंगा. कितना अच्छा कार्डियो करा रहा है मार्विन. तो पहले आ जाओ जी, कॉल्स को कर लेते हैं शुरू. 972-235-5555. सवाल समझ आ गया? सवाल ये है भाई कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, इन सारी जगहों पर सबसे ज्यादा बोलने वाला झूठ कौन हो है. गुड इवनिंग फाइनेंशियल रेडियो, रेडियो का वॉल्यूम कम कर लियो, अपना वॉल्यूम बढ़ा लियो, नहीं तो मैं अगले डब्बे में फटाफट छलांग मार देता हूँ. कौन बोल लिया? हेलो हेलो
1: जी जी हेलो.
0: हाँ जी हेलो, कौन बोला भाई?
1: मैं हामिद बोल रहा हूँ भाई.
0: हामिद बोल रहे हैं, क्या हाल है हामिद मियाँ?
1: जी जबरदस्त भाई, आप कैसे
0: हैं? मजा में मियाँ, एकदम झकास चल रहे हैं अपन. ये बताओ कि फेसबुक इंस्टाग्राम पे बोलने वाला झूठ सबसे बड़ा झूठ कौन सा है? हैं?
1: यही कि मैं कल रात जल्दी सो गया था.
0: हामिद बोलते हैं कल रात जल्दी सो गया था, बीच में बोले नहीं आप, मैं कहा शायद भाभी आ गई सामने, कल रात जल्दी. चलो आपका जवाब लॉक कर लिया मैंने. हामिद भैया कहते हैं सबसे बड़ा बोलने वाला झूठ उनको जो लगता है वो ये है कि मैं कल रात को जल्दी सो गया था. गुड इवनिंग फन एशिया रेडियो वॉल्यूम लेस योर वॉल्यूम टू द टी. कौन बोल रहा है जी?
2: नमस्कार मारुन जी, मैं श्रीनाथ बोल रहा हूँ, कैसे आप?
0: श्रीनाथ भैया कैसे हैं?
2: और जहाँ तक मैंने देखा मार्विन जी, इन सोशल मीडिया में सबसे बड़ा बोला जाने वाला झूठ है सच, यानी सब कहते हैं ट्रू ट्रू ट्रू
0: ट्रू,
2: जब ट्रू होता ही नहीं है,
0: सारे लगे होते हैं वेरी ट्रू, आई एम विद यू वेरी ट्रू. ठीक है श्रीनाथ भाई, ये भी जवाब आपका भी आ गया मेरे पास. बस और क्रिएटिविटी की खिड़कियां बंद है क्या? खोलो खोलो दरवाजे, पर्दे करो किनारे. आई एम आस्किंग यू कि इंस्टाग्राम फेसबुक वगैरह जब आप देखते हो तो कौन सा झूठ सबसे ज्यादा वहां बोला जाता है? जो देगा क्रिएटिव आंसर, दो विनर चूज करूंगा. मिराज हुका लाउंज और खाने का प्लेस है, डाइनिंग शाइनिंग बार शार सब कुछ है. $20 ऑफ योर $50 डाइनिंग बिल. गुड इवनिंग फन एशिया, हु इज दिस?
3: हे दिस इज देवेंद्र.
0: देवेंद्र हाउ आर यू माय ब्रदर?
3: आई एम गुड सर, हाउ आर यू?
0: सर सूर नहीं है सर, हमारा तो वैसे ही सर में चोट लगी हुई है बहुत ज्यादा. अच्छा देवेंद्र भाई, वन झूठ दैट यू थिंक पीपल आर फुल ऑन मेकिंग ऑन इंस्टाग्राम फेसबुक.
3: आई जस्ट मेड इट ओवर द कॉल, आई आस्क यू, यू आस्क मी हाउ आर यू, आई सेड आई एम फाइन, सो पीपल से हे हाउ आर यू, आई एम फाइन, सो आई बिलीव मोस्टली दैट इज अ लाई.
0: देवेंद्र भाई यू वेंट डीप, इट्स आई लाइक देवेंद्र भाई का आंसर. गुड इवनिंग फनीशिया, कौन बोल रहा है भाई?
4: ऑरस, मेरा नाम है ऑरस.
0: ऑरस
4: यस,
0: आर एस भाई बताइए आपके हिसाब से सबसे ज्यादा बोलने वाला झूठ?
4: फेसबुक, सब फेसबुक पे चूतिए हैं, पता नहीं क्या.
0: सबसे बड़े तो आप ही निकले सरकार, ऐसी बातें थोड़ी करते हैं पब्लिक में। खैर अब मैं आपका क्या कर सकता हूँ, आपकी गलती, आपकी बातें, आप ही जाने। गुड इवनिंग, लास्ट कॉलर फॉर दिस सेगमेंट, अपना नाम बताइए।
5: मेरा नाम है साकिब।
0: साकिब साहब, क्या झूठ देखा आपने?
5: जी
0: जी जी तो झूठ नहीं, जी तो सच है। आपने झूठ क्या सुना है ये बताइए।
5: झूठ ये सुना है कि बहुत अच्छी लग रही हो तस्वीरें, बहुत अच्छी लग रही
0: हो, बहुत अच्छी लग रही हो। चले जी, मैं चला हूँ एक छोटे से कमर्शियल ब्रेक पे। यू गाइज डोंट गो एनीवेयर बिकॉज आई बी राइट बैक ऑन द अदर साइड ऑफ द ब्रेक। बताता हूँ कौन जीता है जी ये गिव अवे। आई हैव अ लॉट ऑफ आंसर्स। थैंक यू सो मच।
6: This is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen. Official tax and finance partner, AG FinTax. Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja. In association with Passion Health Primary Care.
7: Beautiful home, Ravi. $1 million. Wow.
8: Thank you. Well, Sana and me just got lucky as Hussein Panjwani helped us with the purchase of our first home. He practically walked us through the entire process. Ever since, with his guidance and support, I've become a pretty savvy real estate investor myself. Unka radio show sunata and then consulted with him for all my financing needs. Now my real estate portfolio has grown into many single family homes, apartment complexes, agricultural land. Oh, harap, ye $1 million property bhi.
9: Hi, this is Hussein Panjwani. Dream Home will help you grow your real estate portfolio. Remember, we just don't promise, we deliver.
10: For details, visit dreamhomemortgage.com or call Dream Home Mortgage 972-245-5626 or email info@dreamhomemortgage.com. Some restrictions apply. Equal housing lender, NMLS 334616, Division of Brazos.

0: Dream.com or call Dream Home Mortgage 972-245-5626 or email info at dreamhomemortgage.com. Some restrictions apply. Equal housing lender. NMLS 334616. Division of Brazos National Bank.
1: कहाँ गया? कहाँ रखा था? सुनो ना, मेरा वो वाला सेट कहाँ है?
2: कौन सा?
1: अरे वो गोल वाला, थोड़ा ट्रेडिशनल, उसमें पोलकी भी है।
2: अरे सारे तो सेम है।
1: नहीं, वो श्री कृष्णा से जो लिया था ना हमने, ये देखो ये वाला।
2: ओ हाँ, ये तो अलग है।
3: अलग तो होगा ही, श्री कृष्णा ज्वेलर्स से जो है। From timeless gold and radiant diamonds to heritage polkis, discover Texas's largest handcrafted jewelry collection now at Main Street in Frisco. Shri Krishna Jewelers, crafted for moments that matter. Visit shrikrishna.com.
4: देसी फ्लेवर्स भी और टेक्सास के फेवरेट्स भी, अब सब कुछ मिलेगा एक ही जगह HEB में। सोना मसूरी राइस, नानक पनीर, पाले जी बिस्किट्स और बहुत कुछ, वही ऑथेंटिक स्वाद जिसके साथ आप बड़े हुए हैं। और साथ ही HEB के एक्सक्लूसिव टेक्सन फेवरेट्स जो आपको यहाँ पसंद है। अब एक ही शॉपिंग ट्रिप में ज्यादा काम निपटाइए और इस समर जरूर देखिए HEB के नए DFW स्टोर्स मिड सीरीज अर्विंग और मर्फी में खुल रहे हैं। तो आज ही अपने नजदीकी HEB पर जाएं और खरीदिए अपने ट्रेडिशनल्स और टेक्सन फेवरेट्स। HEB, हियर एवरीथिंग इज बेटर।
5: In one moment, an accident can change everything. When it does, you don't need sympathy, you need strength. Attorney Omar Khawaja, the official injury partner of Funasia Network, fights to get you every dollar you deserve. No upfront fees, no empty promises, just results. And if you don't win, hey, you don't pay. Call now for your free consultation at 833-GET-OMAR or visit attorneyomar.com. Omar Khawaja, your legal lifeline.
6: Same order again? Same pizza, same taste, same story? Time to upgrade your cravings, Dallas. Because Fun Pizza Kitchen just dropped a bold new Mexican-inspired menu. And trust us, this is not your regular slice. Fiesta Veggie, Pollo Loco, Senor Cameron, different names, crazy flavors. Once you try these, your old order might just get ghosted. Fun Pizza Kitchen, new flavors, new obsession.
7: अजी सुनते हो?
8: अजी नहीं, एजी सुनते हैं।
7: The OG of Tax Planning, AG Fintax. सुनेंगे आपके financial concerns, देंगे smart solutions. Every Friday 9:45 AM, only on Funasia Radio.
9: भूख लगी
10: है या बस कुछ एक्सेप्शनल खाना है?
11: स्ट्रीट स्टाइल चाट्स, रिच अवधी फ्लेवर्स एंड दैट क्लासिक बटर चिकन यू कीप गोइंग बैक टू, ऑल अंडर वन रूफ एट Page 3 ईटरी। ऑनेस्टली ये सिर्फ खाना नहीं है, इट्स व्हाट योर मूड इज एक्चुअली क्रेविंग।
3: अ क्विक बाइट, अ परफेक्ट लंच एम्बियंस एंड एन इवनिंग दैट जस्ट फ्लोज इनटू द नाइट। यू डोंट गो जस्ट एनीवेयर, यू गो टू Page 3, हब 121 मैकिनी।
12: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं।
13: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है।
14: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं, जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं। तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो।
15: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहाँ एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है। करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट।
14: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com।
16: वीकेंड का प्लान अभी तक नहीं बना? बस 90 मिनट नॉर्थ ऑफ डैलस, चौकटाव कैसीनो एंड रिसोर्ट ड्यूरेंट में हर विजिट बन जाता है एक विनिंग एक्सपीरियंस। पोकर हो या ब्लैक जैक, एक्साइटिंग स्लॉट्स हो या फिर 20 अमेजिंग रेस्टोरेंट्स में जबरदस्त डाइनिंग, और अगर ब्रेक चाहिए तो लग्जूरियस स्काई टावर और रिलैक्सिंग स्पा आपका इंतजार कर रहे हैं। तो सिर्फ लकी फील मत कीजिए, लकी बन जाइए। चौकटाव कैसीनो एंड रिसोर्ट ड्यूरेंट, एंटरटेनमेंट, लग्जरी और एक्साइटमेंट सब एक ही डेस्टिनेशन में। Please play responsibly. Must be 21 years or older to game.

Absolutely, Bindas Bolo Ji. Naam Marvindas Bolo. Welcome back to your evening drive time show at the 6 o'clock hour of the Bindas Show, only on Fun Asia Radio, bringing the community together. And kudos to the Fun Asia team. Kitna zabardast entertainment aap ye leke aate hain, from the RJs to the events to everything else that they promote. Ek bari Fun Asia ke liye taali zarur baja dijiyega yaar. And you know, before we went to the break, we asked a question, a contest khel rahe the. Mazedar tha ki bhai Facebook, Instagram pe bole wale jhoot kaun se hote hain. Ek bande aaye the, unka naam tha RS, और उन्होंने सी से कुछ बोला जो कि उनका कटता रहता होगा, केक वगैरह उसकी बात कर रहा हूँ. बट ऐसे लोगों को एक दरख्वास्त है मेरी कि हमें पता है यार, कुछ लोग अंदरूनी बीमार होते हैं और कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आपकी लाइफ में चल रही होती है, बट वाई टू ब्रिंग दैट ऑन टू अ प्लेटफॉर्म विच इज़ फॉर फैमिलीज, वाई टू ब्रिंग इट ऑन टू अ प्लेटफॉर्म विच इज़ फॉर जॉय, फन. हाँ, टेंशन रिलीवर भी है, बट उस तरह से नहीं यार. सो माई रिक्वेस्ट टू एवरीबडी दैट हर्ड दैट जेंटलमैन से वट ही सेड, अपोलोजाइज फ्रॉम हिज साइड. मैं तो माफी मांगने में कभी शर्माता नहीं भैया, बीवी है मेरी, आदत हो चुकी है. नॉनदलेस आई एम जस्ट टेलिंग यू यार, इट्स अ प्लेटफॉर्म फॉर यू ऑल. कम से कम ये सोचा करो कि किसी का भाई, किसी की माँ, किसी की बहन, किसी के बच्चे ये शो सुनते हैं. सो लेट्स रिफ्रेन फ्रॉम वॉट वी आर द बेस्ट एट, है ना. कई लोग हम में से बहुत अच्छे हैं नेगेटिव साइड पर जाने के लिए, गलत बातें प्रमोट करने के लिए, गंदगी फैलाने के लिए. उसको वहीं तक रखो ना यार, दूसरे घर पे क्यों फेंकने का. एनीवे, कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, क्वेश्चन ये था जनाब कि फेसबुक और इंस्टाग्राम पे सबसे बड़ा बोलने वाला झूठ क्या है. बहुत सारे लोगों ने जवाब दिया. हामिद भाई कहते हैं कि कल रात में जल्दी सो गया था. श्रीकांत भाई बोलते हैं, जो लोग लिखते हैं ना ट्रू ट्रू वेरी ट्रू, ये भी झूठ है. देवेंद्रा भाई बोलते हैं फाइन, आई एम फाइन. लोग फोन करते हैं क्या हाल है, अंदर से फटी पड़ी है पर बोल रहा है फाइन. अच्छा, साकिब भाई बोलते हैं बहुत बहुत अच्छा, कहता जी किसी के कमेंट पे लिखते हैं बहुत अच्छा, अंदर से कह रहे थे हटा सावनी हटा. अजहर भाई कहते हैं, जो लोग कहते हैं ना नो फिल्टर, मैंने तो ऐसी फोटो डाली है, झूठ. फिर बोलते हैं भरत भैया, आज आए अजय भैया के पास बाद में आते हैं. शैला जी बोलती है आई वोक अप लाइक दिस, कहती है हटा, मैं औरत हूं, मुझे पता है ऐसे कोई नहीं उठ सकता. सो मेनी वंस देयर, बट आई थिंक द वंस दैट रियली टुक इट ऑफ वाज द फैक्ट दैट देवेंद्रा भाई यू सेड फाइन. And that is such a true statement. हम लोग एक दूसरे को बोलते रहते हैं कॉल पे, हाँ हाँ आई एम फाइन आई एम फाइन, when we're actually not. So Devendra, you are one winner for me. If you are listening to me, give me a call 972-235-5555. And then gorgeous and single and Raj Domingo. Okay, एक और ने बोला था, रमेश भाई बोलते हैं कि लोग अक्सर लिखते हैं पिक्चर्स पे gorgeous, gorgeous, gorgeous. अब ये तो ब्यूटी इज इन द आई ऑफ द बीहोल्डर ना, तो ये बात भी ठीक है. बट द सेकेंड विनर दैट आई थिंक जो मेरे को अच्छे लगे वो थे हामिद भाई, जिन्होंने बोला कल रात में जल्दी सो गया. क्योंकि लेट्स फेस द फैक्ट यार, हम जाते हैं सोने पर हमारे हाथ में वो जो फोन है वो सोने कहाँ देता है कम वक्त. टेकिंग यू टू द नेक्स्ट ट्रैक ऑन फन एशिया एंड आई एम वेटिंग फॉर योर टू कॉल्स मैन. एक मैं इंतजार कर रहा हूँ हामिद भाई, इफ यू आर लिसनिंग टू मी गिव मी अ कॉल. देवेंद्रा भाई, इफ यू आर लिसनिंग टू मी कॉल द स्टूडियो लाइन. I'll take your information and get you your $20 off your $50 bill at Miraj Hookah Lounge right here in McKinney.

0: In 1957, Elvis Presley was one of the top stars in America already. And with the coming off, tracks or movies like Love Me Tender, which was in 1956, it was the film Jailhouse Rock that is regarded as the most successful early film. Presley was a controversial figure, of course, back in that day with his provocative performances and the choice of some of the words that he used. But Jailhouse Rock is notable for the dance sequence to the title song, which was Jailhouse Rock. And it was today's date, September 24th. 1957. Use a wooden jail and rock. Everybody let rock. Everybody in the I'm going to head to a short commercial break, but before that, let me tell you, if you're ever involved in a sip or slip or fall accident, give a call to Attorney Omar. On the website, he's available at attorneyomar.com.
1: Are you looking for a smarter approach to reducing taxes while building and preserving wealth? MyTime Equity, a registered investment advisory firm led by CPA Sudhir Pai, offers active portfolio management, structured notes, tax and financial planning, real estate strategies, AI and late-stage pre-IPO opportunities, and other alternative investments. Learn how a personalized strategy can help you pursue your financial goals. Visit MyTimeEquity.com or call 972-330-2771.
2: MyTime Equity is a fee-based registered investment advisory firm. This advertisement is for informational purposes only and does not constitute investment, legal or tax advice. Investing involves risk, including the possible loss of principal.
3: Moments don't fade. They echo like a melody that never leaves you. And in those moments, what you wear becomes a part of that melody. One of the most trusted jewelers with over 40 stores in India is now in Dallas. PMJ Jewels. Timeless craftsmanship, unmatched elegance, and stunning bridal collections. Now in Main Street, Frisco. PMJ Jewels, India's finest, Dallas's newest.
4: Call 857-891-8942 today.
5: When the unexpected becomes inevitable, the real story begins.
6: इस वन की काली शक्ति है, और अगर कोई रात को वन में प्रवेश करता है, तो उसकी लाश भी नहीं मिलती.
7: Get ready for a brand new action-packed experience, full of emotion and suspense.
8: एक तरफ है वन देवी और एक तरफ है विकास.
7: The One, Force of the Forest,
9: a Hindi mythological folk thriller, directed by Arunab Kumar and Deepak Kumar Mishra, sizzling the big screen for the first time together, Siddharth Malhotra and Tamanna Bhatia.
10: On 25th September in cinemas near you.
11: अजी सुनते हो, सोच रही थी बेटे की शादी इंडिया में करे.
12: इंडिया में तो यहाँ जो फ्रेंड्स और रिलेटिव्स हैं, वो कैसे अटेंड करेंगे?
11: पर यहाँ सारे अरेंजमेंट्स मैनेज करना भी तो कितना मुश्किल होगा.
12: हेलो, तुम डैलस में हो, यहाँ कोई भी इवेंट करना सुपर इजी है, स्पेशली जब वैनेसा इवेंट्स का साथ हो.
11: सच में सब संभालेंगे?
12: अरे सब कुछ, वेडिंग हो, हाउस वार्मिंग, ग्रेजुएशन, यू नेम इट, दे डिलीवर. वेन्यू, फोटोग्राफी, हॉस्पिटैलिटी, सब कुछ एक ही जगह. सिग्नेचर इवेंट्स का डेकोर और खाना बाय द रेनॉल्ड बसेरा ग्रैंड ओनली.
13: कॉल हरी बसेरा ऑन 469-442-8770. Vanessa Events, your celebration partner.
14: Dad, property papers कहाँ हैं?
15: Laptop में.
14: Investment?
15: Google Drive.
14: Insurance? Passwords?
15: बेटा don't worry, मुझे सब पता है.
14: Dad, वही तो problem है, सिर्फ आपको पता है.
13: Your family shouldn't have to search for answers when you're not there to give them.
16: Hi, this is Deepti Verma with NRI Wealth. With proper estate planning, protect what you have built and give your family clarity and control.
13: Call 669-243-5799. That's 669-243-5799. Or visit nriwealth.com for a free 15-minute consultation. NRI Wealth. Don't leave a mess. Leave a plan.
17: शादी ब्याह का कोई मौका हो या कोई त्योहार, खूबसूरत लिबास खुशियों को दुगना कर देता है.
18: हर खुशी में आपके साथ मान्यवर मोहे, ट्रेडिशनल सेलिब्रेशन वेयर फॉर मेन, वुमेन एंड चिल्ड्रन, क्राफ्टेड विद एक्सक्विजिट ब्लेंडेड फैब्रिक्स. मान्यवर मोहे, लोकेटेड ऑन रीजेंट बुलेवार्ड ऑफ 635 ईस्ट इन इरविंग.
19: हुजूर, आपको चुनना होगा, हम या ये बिरयानी.
20: बेगम, मोहब्बत अपनी जगह, लेकिन बिरिस्ता की हैदराबादी बिरयानी अपनी जगह.
19: आखिर क्या है इस बिरयानी में?
20: दम में नरमी, मसालों में जादू और हर निवाले में नवाबी स्वाद.
21: Presenting Barista House by Prism Bar and Grill. Authentic Hyderabadi flavors and a truly Nawabi experience. North Indian favorites, delicious desserts and many more to explore. Denton's famous Barista House is now in Frisco. 6377 Custer Road, Frisco, Texas.
13: Happy hours, Monday through Friday from 3 p.m. to 7 p.m.
21: Barista House, richness of biryani bliss.
22: Hello,
0: टेक्सास परिवार, क्या आपको पता है देर इज अ फर्स्ट टाइम होम बायर प्रोग्राम अंडर फेनी एंड फ्रेडी फॉर कंफर्मिंग लोन्स दैट हेल्प्स यू टू गेट बेटर रेट्स बाय ऑलमोस्ट हाफ अ पॉइंट टू 1%. सो कॉल कीजिए कामना को एट 214-845-4189, क्योंकि आपका भरोसा ही मेरी पहचान है. NMLS 96641.
4: कुछ आवाजें सिर्फ एंटरटेन करती हैं और एक आवाज आपकी जिंदगी का साउंडट्रैक बन जाती है.
22: वही आवाज लेकर आ रही है एक रेवोल्यूशन.
23: 360 शोज ट्रू पेमेंट प्रेजेंट्स सोनू निगम लाइव इन डैलस.
24: तुमसे मिलके दिल का है.
22: सैटरडे सितंबर 26th 8:30 PM ऑनवर्ड्स एट द क्रेडिट यूनियन ऑफ टेक्सास इवेंट सेंटर एलन.
23: टिकट्स अवेलेबल एट टिकट मास्टर. फॉर मोर इन्फो कॉल 855-360 शोज. एक्सक्लूसिव मीडिया पार्टनर फन एशिया नेटवर्क. इश्क इश्क है, इश्क इश्क ये, इश्क इश्क है.

दुनिया में ना बड़ी तरह तरह के बाबे आए, जैसे कि निर्मल बाबा, कोई अब नॉर्मल बाबा, कोई नॉर्मल बाबा, और एक और थे, वो कहते थे तुम्हारे क्या दारू पीते हो ज्यादा, रस्ते में ठेका आता है, रास्ता बदल दो, कृपा आनी शुरू हो जाएगी। कहता गुलाब जामुन खाते हो, कहता नहीं, कहता गुलाब जामुन खाना शुरू कर दो, कृपा आनी शुरू हो जाएगी। ऐसी एक बाबा बैठे थे जी, और जब उनके ऊपर छापा पड़ा तो एक बंदा घुस गया उनके कमरे में। वहाँ बाबा जी बैठे देख रहे थे फैशन टीवी। तो लड़के ने पूछा, बाबा जी ये क्या कर रहे हो आप, ऐसी चीज़ें देख रहे हो? कहता बेटा मैं कसम खा कहता हूँ, मैं इनको नफरत की आंखों से देख रहा हूँ। अगर आप लोगों की भी जिंदगी में कोई समस्या चल रही है, बहुत दुखी हो, बहुत प्रॉब्लम है, तो खुद ही हैंडल कर लो, हमने भी तो करी है। ये वाले बाबा का ज्ञान बड़ा क्लियर कट साफ होता है यार। तुम्हारे दिल को क्या, आज क्या चाह रहे हो तुम? आज तुम्हें चिकन खाने का दिल कर रहा है, जाओ रस्ते में से लेते हुए जाओ, होको पे रुक जाना। आपको आज दाल खाने का दिल कर रहा है तो खुद जाके बना लेना। आपको आज कुछ मतलब जिंदगी में स्पाइस कम लग रही है, जाके बीवी को कुछ कह के देखना, मैं कहता हूँ सब पूरा हो जाएगा। कमाल तो तब हो गया जब एक मच्छर परेशान बैठा था, उससे पूछा गया कि मच्छर मच्छर तू परेशान क्यों है? कहता जी कमाल की बात है, कहता जी देखो चूहे दाने में चूहा होता है, हैं, और ये जो साबुन दानी होती है उसमें साबुन होता है, ये मच्छरदानी में इंसान क्या कर रहा है ब्रो?

Today was the day in 2014. 2014 mein September 24th was the day when Mars Orbiter Mission, which was India's first interplanetary spacecraft, Mangalyaan, successfully entered Martian orbit on September 24th, making ISRO the first Asian nation to reach Mars on its first attempt. Big kudos and congratulations to ISRO, and a proud moment for all the Indians back in the year 2014 on 24th of September. This part of history is brought to you by none other than SFL Worldwide, and they make your history look good. जी हाँ, जब आपको पूछा जाएगा ना अपने दोस्तों को, अपने फैमिली मेंबर्स को कहाँ से गिफ्ट भेजे, कब गिफ्ट भेजे, तो ये जो आपकी बहाने हैं ना कि वो तो किसी और कंट्री में रहते हैं, मैं बड़ी दूर रहता हूँ, ये सारे बहाने आपके लिए सॉल्व कर चुका है जी SFL Worldwide. They are a shipping company, and SFL simply stands for Ship for Less Worldwide. Now let me tell you कि आप अगर एक चिट्ठी भेजना चाहते हैं, usually आप USPS या FedEx या कुछ ऐसा यूज करते हैं, even on that simple plane चिट्ठी 30-40% का डिस्काउंट आपको मिलना ही मिलना है. दैट इज माई गारंटी. गो चेक इट आउट. एंड इफ यू आर शिपिंग एनीथिंग फ्रॉम अ होम, पूरे घर के सारे फर्नीचर, गाड़ी आपकी तक, पूरी दुनिया में कहीं तक, कहीं पर भी शिप कर सकते हैं. अगर आपको ख्वाहिश है, भाभी कह रही है कि यार वो इंडिया जैसा मंदिर चाहिए ना, वो बड़ा वाला घर में लगाना है ना पूजा का मंदिर, तो वो भी शिप करवाएंगे ये. झूलास फर्नीचर, एवरीथिंग दे डिलीवर. नाउ व्हेन द फेस्टिव सीजन इज कमिंग, आपको गिफ्ट्स भेजने हैं या गिफ्ट्स मंगवाने हैं, चाहे इंडिया से मंगवाने हो, वर्ल्ड वाइड कहीं भी भेजने हो, आउटफिट्स हो, मिठाई हो, नमकीन हो, सारी फेवरेट गुडीज आपके लिए SFL Worldwide लेके आता है. द नंबर टू कॉल देम फॉर एनी क्वेश्चंस, 1-800-691-2335, 1-800-691-2335, or just go on to the website, man, SFLWorldwide.com. और हाँ, मेरे लिए जलेबी मंगा लेना.

आई रे टेकन फ्रॉम द मूवी रंगीला रे। और रंगीला होना अच्छी बात है, पर रंग गीला हो गया अगर होली में तो परेशानी हो जाएगी बड़े भैया। इसलिए पैकेट को बंद रखना, खोलना नहीं जब तक आपने किसी पे लगाना ना हो। टेक्सास प्राइमरी केयर इज द नेम दैट आई वांट यू टू नो, बिकॉज इफ यू हैवंट डिसाइडेड योर पीसीपी येट, एक अच्छा फिजिशियन होना बहुत जरूरी है, अच्छा अटर्नी, अच्छा फिजिशियन और अच्छे दोस्त, ये तीन चीज़ें बहुत जरूरी हैं लाइफ में। मेरा अच्छा फिजिशियन है जी डॉक्टर मंदीप आचार्य, हु इज़ विद टेक्सास प्राइमरी केयर। ही इज़ बीन हेयर फॉर 13 ईयर्स विद दैट लोकेशन एंड इज़ गॉट अ सेकंड लोकेशन ब्रांड न्यू विच इज़ कॉल्ड लिनॉक्सी मेडिकल। बोथ ऑफ द लोकेशंस आर इन फ्रिस्को फॉर यू एंड आई एम टेलिंग यू, अगर आपको एक अच्छा डॉक्टर चाहिए, एक अच्छी प्रैक्टिस चाहिए, दीज आर द पीपल टू गो टू। चाहे इनकी सर्विसेज हों विच आई थिंक आर एक्सलेंट, आई डोंट सी देम इन मेजोरिटी ऑफ द यू नो पीसीपी लोकेशंस और अर्जेंट केयर लोकेशंस। दे हैव अर्जेंट केयर, दे हैव इन हाउस लैब टेस्टिंग, दे हैव in-house x-rays, in-house CT scans, in-house cardiac diagnostic and Himalayan MedSpa services for all that want to use a MedSpa. ये सब कुछ एक ही छत के नीचे मिलेगा आपको। 7 days a week they are open from 8 a.m. to 8 p.m. Walk-in is allowed anytime and you do not have to wait in line for anything. Make sure to remember this name, Texas Primary Care Clinic. And they have two locations, like I mentioned. Wonderful people to work with. Jis tarah se unka staff hai, they are excellent at what they do. I don't want to... Aap ye mat samjhiye ki this is an ad which is coming from Funasia. Yes, that's what we're doing. But I'm personally telling you, if you go there, you tell them that Marvin praises you and you'll find the reason why. Texas Primary Care Clinic in Frisco.

0: जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना।
1: लाइफ हो या हेल्थ, कब क्या हो जाए पता नहीं। 13 साल तक टेक्सस प्राइमरी केयर क्लिनिक ने जीता आपका ट्रस्ट, और अब वही ट्रस्टेड केयर अर्जेंट केयर सर्विसेज के साथ नए काइज़रवे लोकेशन पर। लुनॉक्सी मेडिकल फाउंडेड बाय डॉक्टर मनदीप आचार्य, एडल्ट्स और बच्चों के लिए प्राइमरी केयर, अर्जेंट केयर, एक्सरे, सीटी स्कैन, हार्ट टेस्टिंग और मेड स्पा, सब कुछ एक ही रूफ के नीचे। लुनॉक्सी मेडिकल अर्जेंट केयर ओपन 7 डेज अ वीक 8 AM to 8 PM, वॉक इन एनी टाइम 9191 काइज़रवे स्वीट 205 फ्रिस्को।
2: How may I help you?
3: Hello, मेरे relatives आ रहे हैं। Everyone's asking lunch में क्या है?
2: Fear not, we have the perfect solution.
1: The Flavor Lounge in Frisco brings you its all-new weekend lunch buffet. From flavorful Indian favorites to live counters and chef special, 25 plus dishes, welcome drink, chaat, appetizers, main course and dessert. Saturday to Sunday, 12 p.m. to 3 p.m. This weekend, let the Flavor Lounge do the cooking. If you hold H-1B, F-1, L-1 or any other non-immigrant visa status and are considering the path to permanent residency, contact the law offices of Seema Mehta. Attorney Seema Mehta and her dedicated team of professionals can help you attain permanent residency through the EB-5 Investor Program. For more information on the EB-5 Investor Visa Program, please call 214-432-2499. और ईमेल एट info@seemamehtalawfirm.com।
4: पनीर मंचूरियन का नाम तो सुना होगा, पर चिली पनीर बाओ कहानी में ट्विस्ट।
5: चिकन टिक्का पुरानी मोहब्बत, बट बुराडा चिकन टिक्का न्यू लव।
4: एंड पिस्ताचियो लैम्प चॉप्स,
5: फुल ऑन फ्लेवर का फ्यूजन।
6: That's Fusion Republic Indian Kitchen and Bar. Familiar Indian flavors with a fusion twist. Already loved in Richardson, now the flavor story moves to Irving. Enjoy an everyday lunch buffet with 25 items. Chaats, tandoor, biryani, fusion favorites and plenty more to discover. Fusion Republic now at 8080 Walton Boulevard, Irving. Familiar flavors, fabulous fusion.
7: It's true. Hum apni sadbuddhi se bahut si problem solve kar sakte hain. But sometimes even the best need a little guidance. With over 400 years of family tradition, through his extensive knowledge of astrology and palm reading, Pandit Ishwarji can help you with any difficulty in your personal or professional life, from relationship issues to negative energy removal. Call the most trusted astrologer, Pandit Ishwarji, 945-527-0897, or visit astrologerishwar.com.
8: Agar kisi cheez ko dil se chaho,
4: तो पहले चेक कर लो उस पे डील है या नहीं।
9: डील कहाँ?
4: सिंपल, पास्या पे। इंट्रोड्यूसिंग पास्या, डिस्कवर एक्साइटिंग डील्स एंड ऑफर्स एट रेस्टोरेंट्स नियर यू राइट नाउ। ओपन पास्या, सी व्हाट्स अराउंड यू, फाइंड अ डील एंड ग्रैब इट बिफोर इट्स गॉन।
1: डाउनलोड पास्या, दैट्स PAASYA टुडे, बिकॉज़ डील्स दूर नहीं पास है।
10: यार फेस्टिवल सीजन आ रहा है और मेरी वाइफ ने शॉपिंग लिस्ट भी दे दी है।
11: कितनी लंबी लिस्ट है?
10: बस 2 पेजेस। इंडियन ड्रेसेस, मिठाई, नमकीन और हाँ एक पूजा मंदिर भी।
11: अरे तो सब कुछ इंडिया से ही मंगवा लो, SFL वर्ल्डवाइड है ना। इंडिया में आपके डोर स्टेप से सामान पिकअप करके यहाँ सीधा आपके घर डिलीवर करते हैं। पूजा मंदिर हो, झूला हो या फर्नीचर, सामान छोटा हो या बड़ा, ओशन फ्रेट के थ्रू सब शिप हो सकता है।
12: दिस फेस्टिव सीजन इंडिया को अपने और करीब लाएं विद SFL वर्ल्डवाइड, शिपिंग एंड मूविंग सर्विसेज फ्रॉम इंडिया टू द USA एंड वर्ल्डवाइड। विजिट SFLWorldwide.com.
13: I am so stressed. Credit card bills, unsecured debts. What are we going to do?
14: कुछ भी नहीं, Oura Debt Relief will do it for us.
13: क्या मतलब?
14: Oura can help us save up to 50% on our total debt and the rest we pay in easy monthly installments.
13: But what if it doesn't work? We cannot afford to lose more money. हम खुद ही मैनेज कर लेंगे।
14: Oura Debt Relief is one of the leading debt settlement companies. They don't charge a single penny until our debt is settled and they have a 100% money back guarantee. Call तो करो 888-888-9914.
13: अब तो करना ही पड़ेगा मैडम।
15: Don't let debt ruin your life. Visit Oura.org or call 888-888-9914 and take control of your financial future.
16: Hi, this is Vinay Pathak and you're listening to me on Fun Asia Radio.

found a banger of a track and I thought क्यों ना share किया जाए. जबरदस्त mix लगा मुझे ताल से ताल and sedate. This is DJ Ankit Rohida जिन्होंने इसको mix किया and I think it's a lovely, lovely mashup and I wanted to share it with you lovely people. Welcome back after a break. It's 6:47 in the studio clock. It's September 24, Thursday evening. That means मेरी 3 दिन की छुट्टी है यार रेडियो से. और यार छुट्टी है तो इतना एक्साइटेड क्यों हो रहा है यार. बाकी काम नहीं करने करने पड़ते हैं भाई. बीवी ने भी बुलाया हुआ है कुछ कुछ करने को. खैर वो तो मेरी जिंदगी का पार्ट है. पार्ट ही पार्ट है जिंदगी अपार्ट है फिर भी पार्ट ही पार्ट है. कोई बात नहीं. आपको ये बता दूं कि घर लेना है आपने अगर नाउ यू हैव योर वेरी ओन नवनीता खेमका. जी हाँ 5 से 8 स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट फ्राइडे को जो आती हैं आपके लिए आ चुकी हैं जी विद केलर विलियम एज अ रियल्टर एंड शी इज गोना मेक श्योर दैट शी हेल्प्स यू राइट योर होम स्टोरी विद द बेस्ट ऑफ द होम चॉइसेस दैट शी कैन मेक फॉर यू. मार्केटिंग नॉलेज उनके पास पूरी है. क्रिएटिव मार्केटिंग करती हैं एंड शी इज बीन इन रेडियो सो शी नोज हर वे हाउ टू मार्केट प्रोडक्ट्स एंड ऑफ कोर्स हेल्प यू सेल योर प्रोडक्ट्स योर प्रॉपर्टीज एज वेल. पर्सनलाइज्ड गाइडेंस के साथ नवनीता इज कमिटेड टू मेकिंग योर रियल एस्टेट जर्नी स्मूदर. एवरी होम हैज अ स्टोरी राइट योर्स विद हर. गिव हर अ कॉल टुडे 347-449-4242. सोनू निगम कमिंग टू टाउन. आई विल टेल यू आफ्टर दिस. इस गाने में सोनू जी हैं दिखाता हूँ कहाँ.

इतना बढ़िया गाना, इसमें डक डुक क्यों, मतलब बतकें पानी काय को लेके आनी यार। सोनू निगम की आवाज सुनो ना, कितना प्यारा है। ये बीच में क्वैक क्वैक क्वैक की क्या जरूरत होती है। नंदलेस, सोनू निगम इज कमिंग फॉर यू टुमारो विद हिज शो जिसका नाम है रेवोल्यूशन, द वन एंड द ओनली सोनू निगम लाइव इन कॉन्सर्ट एक्सपीरियंस रेवोल्यूशन, व्हिच इज दिस वेरी सैटरडे। दो दिन है आपके पास, दो भी क्या, एक दिन बचा है। इफ यू हैवन गॉटन योर टिकट्स येट, आई एम टेलिंग यू गेट देम राइट अवे बिकॉज दिस इज गोइंग टू बी अ सोल्ड आउट इवेंट एंड यू डू नॉट वांट टू मिस आउट ऑन दिस लवली लवली शो। इतने सारे गाने जो हम सब जानते हैं, वर्ड बाय वर्ड वी रिमेंबर दोज ट्रैक्स, वी कैन सिंग देम टुगेदर। आइए मेरे साथ गाइए, सोनू जी के साथ गाइए, विद द टीम ऑफ फन एशिया गाइए। सैटरडे सितंबर 26th 8:30 PM क्रेडिट यूनियन ऑफ टेक्सास इवेंट सेंटर इन एलन। मेक श्योर टू गेट योर टिकट्स राइट अवे बिकॉज दिस इज गोना गेट सोल्ड आउट। टिकट कहां पे है, ticketmaster.com इज द प्लेस। 855-360 शोज इज दैट फोन नंबर। सोनू निगम कमिंग लाइव फॉर यू टुमारो, मेक श्योर यू हैव गॉटन योर टिकट्स, बिकॉज अगर मिस कर दिया तो बाद में मत कहना भैया बताया नहीं था।

Texas Star Rehab is one place that I would recommend as well after Texas Primary Care. मेरे नाम में मतलब मेरे दो क्लाइंट हैं जिनको मैं आपको पर्सनली भी रेकमेंड करना चाहता हूँ. दैट्स टेक्सस प्राइमरी केयर एंड दूसरा टेक्सस रिहैब. एंड टेक्सस स्टार रिहैब इज द नेम ऑफ दिस लोकेशन. टेक्सस स्टार रिहैब एंड परफॉर्मेंस सेंटर, इनकी दो लोकेशन हैं. वन इज इन द हार्ट ऑफ इरविंग राइट ऑन 635 एंड बेल लाइन, एंड देयर एंड इन फ्रिस्को यू विल फाइंड सॉल्यूशंस टू योर पेन. आई नो कि आपके पेरेंट्स जैसे जैसे ओल्ड हो रहे हैं बोल रहे हैं यार गोडा मेरा जवाब दे रहा है, मेरी नीज, माई एल्बोज आर क्रैकिंग अप, माई बैक इज ऑलवेज स्टिफ एंड ऊ आउच की आवाज़ें आपको आती हैं, तो इसके लिए एक सोल्यूशन है. एंड दैट्स इट फॉर यू ऑल्सो. अगर आपको लग रहा है कि यू नो यूर इन योर 40s योर 50s योर फीलिंग कि आपके जॉइंट्स में प्रॉब्लम आ रही है, यू हैव शाइटिका इशू एंड अदर्स, टेक्सस स्टार रिहैब एंड परफॉर्मेंस सेंटर कैन हेल्प यू गेट अवे फ्रॉम ऑल दोज विदाउट any pain medication. You've heard it right, without any pain medication, with the therapies that are there available, jaise ki physical therapy, sports rehabilitation, pelvic floor therapy, massage therapy and more, with personalized one-on-one care. And they do give you that one-on-one care, especially if you've had a surgery in the past or you're looking to do any surgery which is related to your joints. This is the place that I would recommend for your post-surgery rehab. They take excellent care of you guys, one-on-one attention dete hain. And I think the cherry on the top is the practitioner who owns this practice. His name is Rushi. He's also a full-time physiotherapist, serving people like the sports stars that you see in cricket industry and majority of the American sports. He's also the physiotherapist for MLC Cricket. With that, it is my time to say bye-bye, good night. But remember the website, texasprimarycare.com. Is that website? texasstarrehab.com is that website. texasstarrehab.com is that website where you will find all the information. With that, it is time for me to say bye-bye, good night, adios, sir, but with a promise that if God gives me life, us super wale ne zindagi di. Monday subah phir sham ko hogi phir se mulaqat, 5 to 7 on your favorite station, Fun Asia Radio, with your favorite evening drive time show, the most heard show in drive time in the United States. Aa chuka hai ji aapki service ke liye, and that is your Bindaas show. जाते जाते ये जरूर कहूंगा कि यू आर द मास्टर ऑफ योर वर्ल्ड. एंड व्हाई डू आई से दैट? बिकॉज आपकी जो वाइफ, आपके बच्चे, आपके यू नो फ्रेंड्स, फैमिली, योर टेस्ट, योर हैप्पीनेस, योर जॉय, योर हॉबीज, एवरीथिंग रिवॉल्व्स अराउंड यू बीइंग वेल. अगर आप हेल्दी हैं, आप अपने आप को फिट रखते हैं, you don't have to look like a bodybuilder, but you just have to make sure that you're eating right, you're doing things right for you, because let's face it, this is the only body we have, we cannot replicate it, this is the only life we have, at least that's what we know. Yahi pata hai, iske alawa to hume pata hi nahi aage kya hoga, piche kya ho gaya, does not matter. What matters is today, what matters is where you are, and you can start making those chote chote changes right away. Aapke agar taste buds acche honge na, तो आपको वो जो पराठा बड़ा पसंद है या कुलचे बड़े पसंद हैं उनका स्वाद तभी आएगा. अगर आपकी सेहत आपको एडवेंचर करने के लिए, घूमने के लिए अलाउ करेगी, तो ही दुनिया की नेचर्स को घूमने का मज़ा आएगा. और जब आप ये सारी चीज़ें कर सकेंगे तो आपके फैमिली को मज़ा आएगा, आपके बच्चों को मज़ा आएगा, आपकी वाइफ को मज़ा आएगा. सो एवरीथिंग इन योर वर्ल्ड अराउंड यू विद यू हैपन्स विद यू बींग द एपिटोम, यू बींग द सेंटर ऑफ इट ऑल. And do not ignore that center, that nucleus, that is you. With that, the biggest joke on mankind is that computers have started asking humans, prove that you are not a robot. Hata saavan ki ghata. Mere baad ippi the hippie.

0: playing the best tunes in all of Dallas. Fun Asia Radio, 104.9 FM.
1: This is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
2: Official tax and finance partner, AG FinTax.
1: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
2: In association with Passion Health Primary Care.
3: एक और लड्डू ले लो।
4: थोड़ी और बिरयानी।
3: अरे अमेरिका जाके थोड़ी मिलेगा।
5: अब सिर्फ सूटकेसेस ही नहीं, वेट, कोलेस्ट्रॉल और शुगर भी एक्स्ट्रा बैगेज बन के साथ आ गए।
6: इंडिया ट्रिप के बाद या कभी भी अपनी हेल्थ को गेस वर्क पर मत छोड़िए। स्केड्यूल योर एनुअल हेल्थ चेकअप एट पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर। अलॉन्ग विद ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर, कोलेस्ट्रॉल एंड वेट चेक्स, दे ऑल्सो ऑफर डिप्रेशन एंड एंग्जाइटी स्क्रीनिंग, अल्कोहल हेल्थ असेसमेंट, फाइब्रो स्कैन, विटामिन